नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 20 जून 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। ओडिशा में वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोनों नेता एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही है। पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे। कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और देश में निर्मित 3 युद्धपोत दुनागिरी, अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवर ब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि तय फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी नागरिक का तय किए गए फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार प्राथमिक है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जाएगी। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। एक दुखद मोटर दुर्घटना के क्षतिपूर्ति मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। अपने 5 वर्षीय पुत्र को पिता द्वारा स्कूल ले जाते समय कथित दुर्घटना में बच्चे की मौत हो गई थी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रगति के साथ साथ भारत के हितों का भी विस्तार होगा और विविधता बढ़ेगी। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए एक बड़ी विजय बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की बात की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। श्री गाइस थॉमसन को कार्यबल का अगला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का निर्णय हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में 4th स्थान पर रहे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: Yeah. ये है विविध भारती वंदन वार।

चिंतन। संस्कृत का एक श्लोक है, अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। अर्थात जो आलस करते हैं उन्हें विद्या नहीं मिलती, जिनके पास विद्या नहीं होती वो धन नहीं कमा सकते, जो निर्धन हैं उनके मित्र नहीं होते और मित्र के बिना सुख की प्राप्ति नहीं होती। ये था चिंतन। अब भक्ति संगीत।

ध्वनि तरंगों की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। झरोखा लिखा जोखा आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। अब से कुछ देर बाद आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस कान आज भाग 225। संगीत सरिता कार्यक्रम में चल रही है श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार है वायलिन वादक पंडित SL कंडारा। आज तीसरी कड़ी होगी सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर।

8:15 पर सुनिएगा त्रिवेणी। सुबह 8:30 पर चित्रलोक, सुबह और शाम 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम होगा जो केंद्रित होगा निर्देशक बासु भट्टाचार्य पर।

त्रिवेणी दिन में 2 बजे, 2:15 पर दोपहर समाचार, 2:30 पर सदाबहार नगमे, दिन में 3 बजे मनचाहे गीत कार्यक्रम होगा, 3:30 पर नाट्य तरंग के अंतर्गत आप नाटक सुनेंगे मृत्युहीन प्राण। मृत्युहीन प्राण नाटक का पहला भाग आज सुनवाया जाएगा, मूल बांग्ला नाटक आलोक भट्टाचार्य का, हिंदी अनुवादक दीप नारायण मिठौलिया, प्रस्तुतकर्ता सुदर्शन कुमार, कोरियोग्राफर टेरेंस लुईस से बातचीत का तीसरा भाग सुनवाया जाएगा बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में 4:00। शाम 5 बजे छाया गीत, 5:30 पर तराने नए पुराने, 6:35 पर सुनिएगा संध्या रंजन, 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार तीसरा भाग। जाने माने अभिनेता अमरीश पुरी द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम शाम 7 बजे, 7:45 पर जिज्ञासा। रात 8 बजे हवा महल के अंतर्गत सुनो कहानी श्रृंखला में कहानी स्वामिनी का तीसरा भाग, ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, वाचन ममता सिंह का, प्रस्तुति हर्षवर्धन गवई की। 8:15 पर सुनिएगा चित्रलोक, 8:45 पर समाचार, 9 बजे आपके लिए। रात 10 बजे छाया गीत, 10:30 पर ढलती जाए रात, और रात 11 बजे आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। तो ये था लेखा जोखा आज दिन भर के मुख्य कार्यक्रमों का, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने रामचरितमानस गान, आज भाग 225।

भरत तथा कुलगुरु वशिष्ठ के साथ अयोध्या तथा जनकपुर से आए सभी लोग चित्रकूट में 4 दिनों से निवास कर रहे हैं। श्री राम को देख सभी नरनारी अत्यंत हुलसित हैं। सबकी यही इच्छा है कि वे श्री राम को साथ लिए बिना वापस न लौटें। उन्हें वन में छोड़कर जिन्हें घर नगर में रहना अच्छा लगे, समझ लेना चाहिए कि विधाता उनके विपरीत हो गया है। यदि देव अनुकूल हो तभी राम के निकट वन में निवास करने का सौभाग्य मिल सकता है। एक दिन माताओं के पास समय देख राजा जनक का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या ने आदर सहित उनका सत्कार किया, उन्हें उचित सम्मान से आसन दिए। दोनों टोलियों के व्यक्ति पुलकित किंतु शिथिल हैं। उनकी आंखों में हैं प्रेम और शोक के

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी।
1: सभी संगीत प्रेमियों का पुनश्च स्वागत है और स्वागत है जाने माने संगीतज्ञ वायोलिन वादक पंडित एस एल कंडारा जी का। पंडित जी, वायोलिन का विहंगम संसार ये शीर्षक भी आप ही का दिया हुआ है
2: जी।
1: वायोलिन की व्यापकता की जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि फिल्म संगीत में कितना अधिक इसका इस्तेमाल हुआ है।
2: बिल्कुल जयंत जी, बहुत सही बात कह रहे हैं आप। और इस बाजे की व्यापकता को आप देखिए कि पाश्चात्य संगीत में गज के बाजों में इसकी प्रमुखता सिद्ध हुई
1: जी।
2: और बड़े बड़े कंपोजर्स ने इस पे काम किया और बहुत अच्छा काम हुआ। और उनको देख के हिंदुस्तान में भी ये बाजा जब आया
1: जी,
2: तो हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर्स थे क्लासिकल और वेस्टर्न भी, जुबिन मेहता का मैं नाम लेना चाहूँगा कि उन्होंने भी इस बाजे का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया अपनी सिम्फनी में। और फिल्म म्यूजिक की बात करें आप तो फिल्मों में तो इसका लाजवाब इस्तेमाल हुआ है। एक ज़माना था 50-50 वायलिन इस्तेमाल होते थे फिल्म स्टूडियोज़ में, और उस ज़माने में इतने अच्छे अच्छे इस पे पीसेस बने, इतना अच्छा अच्छा काम हुआ कि आपको मैं बयान नहीं कर सकता। श्रोताओं को आप एक पीस जरूर सुनाएं लेकिन फिल्म का

0: जो कि हृदयनाथ मंगेशकर जी ने कंपोज किया हुआ है
1: जी, आशा जी की आवाज में होगा।
0: एग्जैक्टली, मेरे ख्याल से झूठे नए ना बोले सांची बतिया।
1: जी जी, ये वो गीत है और इस गीत में जो ग्रुप वायलिन बजा है
0: जी,
1: आप उस झलक की बात
0: उसकी बात कर रहे हो। बिल्कुल,
1: तो उस गीत की ये झलक जहाँ खास तौर से ग्रुप वायलिन बजाया गया है, पहले अपने श्रोताओं को सुनाते हैं फिर उस पर।

0: क्या बात है, मजा आ गया पंडित जी। लग रहा था कि बस इसे सुनते ही चले जाएं, मगर इसकी विशेषता के बारे में आप बताइए।
1: इस गाने में, इस गीत में जिस तरह से हृदयनाथ मंगेशकर जी ने वायलिन का इस्तेमाल किया
0: जी,
1: मेरे ख्याल से 25-30 वायलिन जरूर होंगे, क्योंकि मैं तो जब गाना रिकॉर्ड हुआ तब उपस्थित नहीं था, तो उसका अंदाजा ही लगा सकते हैं कि कितना सारे वायलिन उसमें बजे हैं और किस दक्षता के साथ वो ऑर्केस्ट्राइजेशन हुआ है।
0: जी हाँ जी।
1: फिल्म में अच्छे अच्छे काम हुए हैं इस बाजे के साथ, और ये वहाँ से अगर शुरू करें आप, रोशन साहब के ज़माने से, मदन मोहन जी के ज़माने से, या नौशाद साहब के ज़माने से एक गीतों में इस वाद्य की उपस्थिति आपको प्रभावित करेगी। और बहुत अच्छे अच्छे पीसेज हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने बनाए हैं
0: जी,
1: इस वाद्य को लेकर। एक गीत मुझे याद आता है, वैसे तो कई सारे गीत हैं जिनका जिक्र करना संभव नहीं यहाँ पे, लेकिन नौशाद साहब का एक गीत आप बजा सकते हैं जिसमें बहुत संजीदा किस्म के पीस उन्होंने इस्तेमाल किए हैं
0: जी।
1: कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई,
0: वाह,
1: लब थर थरा रहे थे मगर बात हो गई।
0: बहुत ही खूबसूरत गाना है
1: जी,
0: आइए सुनते हैं।

0: पंडित जी, ये तो हुई ग्रुप वायलिन की बात
1: जी।
0: जब समूह में वायलिन बजता है, सोलो वायलिन का भी बड़े खूबसूरत ढंग से इस्तेमाल हुआ है फिल्म संगीत में, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे?
1: देखिए, सोलो वायलिन को लेके भी इसमें अच्छे अच्छे पीसेस लगाए हैं लोगों ने, और प्यारे लाल जी, लक्ष्मीकांत जी
0: जी
1: जो पुराने संगीत निर्देशकों में रहे, प्यारे लाल जी का तो एक स्कूल ही था, फिल्म म्यूजिक सिखाते थे वो, मतलब फिल्म वाले लोग सब उनके शागिर्द थे वायलिन को लेके। और प्यारे लाल जी के पिताजी, शायद उनका नाम राम प्रसाद जी था, वो बहुत प्रचलित थे पूरे बंबई में गुरु के रूप में सिखाने में, और प्यारे लाल जी खुद अच्छा वायलिन बजाते थे, तो उनके हिसाब से कुछ उनमें उन्होंने कुछ पीसेस दिए हैं। जैसे एक शायद मुझे याद आ रहा, शोर फिल्म, अगर आपको याद आ रहा हो।
0: हाँ हाँ, मनोज कुमार निर्देशित।
1: जी जी जी।
0: और इसमें जो गीत है, एक प्यार का नगमा है।
1: एग्जैक्टली।
0: इसमें बहुत ही सुंदर वायलिन का पीस बजाया है प्यारेलाल साहब ने।
1: बिल्कुल।
0: तो क्यों ना ये गीत अपने श्रोताओं को सुनवाए।
1: बिल्कुल, श्रोताओं को सुनवाइए।

0: किशोर फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। पंडित जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का उल्लेख हो रहा है आने वाली अगली कड़ी में। प्यारेलाल साहब ने जहां जहां अपना वायलिन वादन जिन गीतों में इस्तेमाल किया है उसका हम विस्तार से जिक्र करेंगे, उसकी बात को आगे बढ़ाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: आज की ये कड़ी यही समाप्त हो रही है। श्रोताओं, हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: बिल्कुल, नमस्कार।
2: वायलिन का विहंगम संसार। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित एसएल कंडारा, आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

आइए सुने भूले बिसरे गीत। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। लता मंगेशकर के एक बेमिसाल गाने के साथ कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं। जिद्दी फिल्म का ये गाना, एक बहुत ही ऐतिहासिक फिल्म जिसके जरिए कई कलाकारों की शुरुआती यात्रा थी, और प्रेम धवन के बोलते खेमचंद प्रकाश की तर्ज इस गाने में। साल 1948 ये फिल्म बनाई थी शाहिद लतीफ ने।

चंदा रे जा रे जा रे, ये गीत आपने सुना। देवानंद और कामिनी कौशल जिद्दी फिल्म के सितारे थे और खेमचंद प्रकाश का संगीत था। इस फिल्म के बारे में ये जो कहा कि ये फिल्म कई सितारों के करियर की शुरुआती फिल्म थी। मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे, ये किशोर कुमार का गाना था जो उनका शुरुआती प्लेबैक था। अब इत्तेफाक की बात ये है कि अगला गाना है मुकेश का और वो उनका शुरुआती प्लेबैक है।

0: डॉक्टर सफदर आह का लिखा हुआ ये गीत था अनिल बिस्वास की तर्ज थी 1945 की फिल्म मुकेश की आवाज। जैसे कि मैंने कहा कि ये पार्श्व गायक मुकेश का पहला प्लेबैक था। दरअसल मुकेश का जो पहला गाना है वो ये नहीं है, फिल्म निर्दोष में 1941 में उन्होंने गाना गाया था, दिल ही बुझा हुआ है तो फसले बहार क्या, लेकिन ये प्लेबैक नहीं था क्योंकि ये गाना उन पर ही फिल्माया गया था। इस फिल्म के हीरो भी वही थे। दरअसल मुकेश और तलत महमूद ऐसे दो प्लेबैक सिंगर रहे हैं जिन्हें एक्टिंग का बहुत ज्यादा शौक रहा है और उन्होंने कुछ फिल्में भी की। यहां किशोर कुमार का नाम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि वो तो बाकायदा एक्टर, सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट क्या नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गए साल 1950 पर, चितलकर और साथी, गीत पी एल संतोषी का, संगीत सी रामचंद्र का।
1: hey, मैं हूँ एक खलासी, मैं हूँ एक खलासी, मेरा नाम है भीम पलासी, खलासी भीम पलासी, खलासी भीम पलासी, खलासी भीम पलासी, मैं हूँ एक खलासी, अरे मैं हूँ एक खलासी, मेरा नाम है भीम पलासी, खलासी भीम पलासी, खलासी भीम पलासी, खलासी भीम पलासी। मैं जर्मन

0: 1950 में आई फिल्म सरगम का ये गाना था। चितलकर और साथियों की आवाजें थी। पीएल संतोषी के बोल थे। पीएल संतोषी यानी प्यारे लाल संतोषी आज के जमाने के जाने माने लेखक निर्देशक राजकुमार संतोषी के पिता, और संगीत खुद सी रामचंद्र का था।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन?
3: कौन लाया, कौन लाया?
0: कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

0: 21 जून को है विश्व योग दिवस और इस बार की थीम है बढ़ती उम्र के साथ योग। विविध भारती लेकर आ रहा है एक विशेष कार्यक्रम। हमारे खास मेहमान हैं योगीराज भारत भूषण भारतेंदु, जो आपको बताएंगे कैसे योग बदल सकता है आपका जीवन।
1: बूढ़े बच्चे जवान सभी को करना चाहिए। पहला तो है श्वास से रिलेटेड, श्वास के एक्सरसाइज प्राणायाम तो सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑफिस वाले हैं तो उनके लिए 10 से 15 सूर्य नमस्कार अच्छे से हर पोज को मेंटेन करते हुए करें तो
0: काफी होता है।
1: मैटिनी
0: शो 20 जून सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

विविध भारती से आप भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुन रहे हैं और 1950 में आई एक फिल्म का गाना हमने ब्रेक के पहले आपको सुनवाया था। अभी हम 1950 में ही रहेंगे। फिल्म बाबुल का गाना अब हम आपको सुनवा रहे हैं। एसयू सनी की यह फिल्म नौशाद के संगीत के लिए जानी जाती है। शमशाद बेगम और साथियों की आवाजों में ये गाना शकील बदायूनी के बोल, दिलीप कुमार और नरगिस थे इस फिल्म में।

देवानंद और सुरैया ने एक साथ कई फिल्में की, उनमें से एक थी ये यादगार फिल्म। और अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और अमीर बाई कर्नाटकी की आवाजों में राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत। संगीत सी रामचंद्र का है, फिल्म का नाम समाधि। कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, और ये गाना अंग्रेजी के एक प्रसिद्ध गाने पर बना था, चिको चिको ओ पोर्टो रिको।

सावन फिल्म के एक गाने का ये उदास संस्करण है जो बहुत ज्यादा सुनाई नहीं देता। लता मंगेशकर की आवाज, प्रेम धवन के बोल, संगीत हंस राज बहल का था और ये था आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम।

0: जून को है विश्व योग दिवस और इस बार की थीम है बढ़ती उम्र के साथ योग। विविध भारती लेकर आ रहा है एक विशेष कार्यक्रम। हमारे खास मेहमान हैं योगीराज भारत भूषण भारतेंदु, जो आपको बताएंगे कैसे योग बदल सकता है आपका जीवन।
1: बूढ़े बच्चे जवान सभी को करना चाहिए। पहला तो है श्वास से रिलेटेड, श्वास के एक्सरसाइज प्राणायाम तो सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑफिस वाले हैं तो उनके लिए 10 से 15 सूर्य नमस्कार अच्छे से हर पोज को मेंटेन करते हुए करें तो
0: काफी होता है। मैटिनी शो 20 जून सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में हम हैं राही प्यार के।

0: की शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू हुई।

0: रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
0: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ठुकराया।
1: संगीतकार रवि के स्वरबद्ध के दो गीत आपने सुने। ये डोली फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में था। इससे पहले आदमी और इंसान फिल्म का गाना था, वो आशा भोसले की आवाज में था। हमें राही पैर के कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के पाथ।

0: जून को है विश्व योग दिवस और इस बार की थीम है बढ़ती उम्र के साथ योग। विविध भारती लेकर आ रहा है एक विशेष कार्यक्रम। हमारे खास मेहमान हैं योगीराज भारत भूषण भारतेंदु, जो आपको बताएंगे कैसे योग बदल सकता है आपका जीवन।
1: बूढ़े बच्चे जवान सभी को करना चाहिए। पहला तो है श्वास से रिलेटेड, श्वास के एक्सरसाइज प्राणायाम तो सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑफिस वाले हैं तो उनके लिए 10 से 15 सूर्य नमस्कार अच्छे से हर पोज को मेंटेन करते हुए करें तो
0: काफी होता है। मैटिनी शो 20 जून सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती से हम है राही प्यार के।

आंसू बन गए फूल फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना।

0: सबका प्यारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं।

21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: सबका प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग। स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: आया खुशियों का पैगाम, पीएम किसान।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली, पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
5: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
4: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे और कलकत्ता में रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। इसी अवसर पर वे 3 स्वदेशी युद्ध पोत INS दुनोगिरी, INS संशोधक और INS अग्रय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कृषि क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। संदीपन दास गुप्त के साथ काशफिन नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
4: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
7: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं था चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
8: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया के सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें NVIDIA और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
7: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर $40 से $45 अरब तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
9: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
7: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में सेबी ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। और अब खेल खबरें। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
10: धन्यवाद विशाल। टेलीग्राम पर केंद्र सरकार की रोक पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है टेलीग्राम पर प्रतिबंध सही। फुटपाथ पर पैदल चलना लोगों का मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय, दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों में है। इस खबर पर नवभारत टाइम्स ने पहला हक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, सुरक्षित फुटपाथ केवल सड़क सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं, ये पर्यावरण और लोगों के सेहत से भी जुड़ा है। पाकिस्तान अपने ही भस्मासुरों का शिकार, आतंकियों की है खुली पनाहगाह, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि अनुपमा सिंह का ये बयान अमर उजाला में है।
4: धन्यवाद फरहत। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रूपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। वरिष्ठ भारतीय नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। और सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आज त्रिवेणी की धाराएं मिलेंगी विवाह पर। एक बिटिया घर में जन्म लेती है और धीरे धीरे बड़ी होती है। माता पिता का दिल हर मोड़ पर उसकी बलाए लेता है। छोटे छोटे हाथों से रोटी बनाती बिटिया, गुड़ियाओं से खेलती बिटिया धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। बचपन की पायल की वो छुन छुन धीरे धीरे लुप्त हो जाती है और बिटिया के विवाह का समय आ जाता है। जिन गालों में अब तक दूध का उजाला भरा था, अब सिर पर चुनर डालते ही वो गाल सुर्ख लाल हो जाते हैं। सजती संवरती दुल्हन रस्म दर रस्म किसी और की होती चली जाती है। माता पिता के मन में अनेकों सवाल उभरने लगते हैं कि नया घर हमारी बिटिया को उतने ही प्यार से तो अपनाएगा ना, लाड़ों का वर ढूंढने में हमने कोई कमी तो नहीं रखी ना, हमारी बिटिया खुश तो रहेगी ना। ऐसे तमाम सवालात के बीच बारात आ जाती है।

विवाह के समय लोग कई सारी तस्वीरें खींचते हैं, पर माँ पिता और दुल्हन के मन की तस्वीर अगर कोई ले पाता तो जान जाता कि उनके मन में कितनी उथल पुथल चल रही है। कहीं उम्मीद की धूप है तो कभी अनजाने भय का कोहरा, कभी भीगी भीगी से जुदाई की फुहार है तो कभी आंखों में नमी, कभी अपने कलेजे के टुकड़े को विदा करते माता पिता कई सवालों से घिरे होते हैं। इन तमाम बातों के बीच बिटिया नए घर के लिए विदा होती है। जाते समय आशीष की पोटली भी उसके साथ जाती है, जिसमें होती है कई सारी सीख और नसीहतें। उस घर को अपना बनाने की सीख, मान और प्रतिष्ठा को सहेजने की सीख, सबको अपना बनाने की सीख। भावों की लहरों पर सवार होकर वो बाबुल का घर छोड़ देती है।

विवाह यानी एक जीवन का प्रारंभ, एक नया संसार। ये जितना स्त्री के लिए नया है उतना ही पुरुष के लिए भी होता है। दोनों के मन में कई सपने और कई अपेक्षाएं होती है। शादी के बंधन में दो परिवारों का मिलन होता है। खुशहाल शादीशुदा जीवन के लिए सभी के स्नेह और सामंजस्य की जरूरत होती है। ये बंधन बना रहे और आगे चलकर सुखद परिणाम दे, इसके लिए घर के अन्य लोगों का सहयोग भी अपेक्षित होता है, नहीं तो ये बंधन टूटने में देर नहीं लगती। समझदारी और सहजता के साथ साथ सात फेरों के इस बंधन को प्रेम से लबरेज रखा जा सकता है। हाँ, ये संभव है। हाँ, ये संभव है।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन,
2: कौन लाया, कौन लाया।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे चित्रलोक।

आइए सुने चित्रलोक। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। आवाजें सोनू निगम और अलका याग्निक की हैं पहले गाने में। जावेद अख्तर के बोल अनु मलिक की तर्ज है।

के। जावेद अख्तर का लिखा ये गाना कहता है, पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। और पंछियों से ये याद आया कि आज बर्ड मैन ऑफ इंडिया सालिम अली की याद का दिन है। 20 जून 1987 को 90 साल की उम्र में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी। सालिम अली बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने भारत में पक्षियों का जितना अध्ययन किया है, एक जीवन में कोई भला इतना नहीं कर सकता है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी से जुड़े रहे सालिम अली, और उन्होंने पक्षियों पर कई किताबें भी लिखी हैं। जर्मनी में जाके उन्होंने पक्षी विज्ञान की ट्रेनिंग ली थी और बर्लिन यूनिवर्सिटी में उनके गुरु बने इरविन स्ट्रेसमैन। 1930 के बाद जब वो भारत लौटे तो उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया था पक्षियों को लेकर, और उनकी कई किताबें जो हैं पक्षी विज्ञान पर हैं और बहुत ही मशहूर हैं। और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के लिए उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे हैं, बहुत सारे जर्नल्स भी लिखे हैं। उनका एक लेख है स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ संडे मॉर्निंग, बहुत ही मशहूर है। और इसके अलावा उनकी सबसे ज्यादा मशहूर किताब है द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, यानी भारत में पाई जाने वाली तमाम जो चिड़ियाएं हैं उनका बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अध्ययन किया था। जंगलों में अपनी दूरबीन और अपने बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स लेकर भटकते रहते और पक्षियों का अध्ययन करते रहते। ऐसे जुनूनी लोगों को सलाम जो पर्यावरण के लिए कर देते हैं सारा जीवन उनके नाम। रेखा भारद्वाज की आवाज, फिल्म का नाम ओ रोमियो।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: मनमाने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।

0: 21 जून को है विश्व योग दिवस और इस बार की थीम है बढ़ती उम्र के साथ योग। विविध भारती लेकर आ रहा है एक विशेष कार्यक्रम। हमारे खास मेहमान हैं योगीराज भारत भूषण भारतेंदु, जो आपको बताएंगे कैसे योग बदल सकता है आपका जीवन।
1: बूढ़े बच्चे जवान सभी को करना चाहिए। पहला तो श्वास से रिलेटेड, श्वास के एक्सरसाइज प्राणायाम तो सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑफिस वाले हैं तो उनके लिए 10 से 15 सूर्य नमस्कार अच्छे से हर पोज को मेंटेन करते हुए करें तो
0: काफी होता है,
1: काफी होता है।
0: मैटिनी शो 20 जून सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर। सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में ये गाना हम आपको सुनवाने के लिए।

0: पी के आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं चित्रलोक,
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कार्यक्रम के अंत में तेरे नाम फिल्म का गीत अलका याग्निक की आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अद्भुत यादें।

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है एक ऐसे निर्माता और निर्देशक पर जिसने अपनी फिल्मों में जिंदगी के यथार्थ को दिखाया।

बासु भट्टाचार्य का जन्म सन 1934 में कोलकाता में हुआ था। उनका परिवार कासिम बाजार पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। बहुत बचपन में जब बासु भट्टाचार्य ने सत्यजीत रे की फिल्में देखी तो उनका फिल्मों से लगाव बढ़ गया। खास तौर पर 1956 में आई फिल्म अपराजितों ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया था और उन्होंने ये तय कर लिया था कि जीवन में वो कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे कि फिल्मों में काम करने की स्थिति बन जाए।

बासु भट्टाचार्य जब मुंबई आए तो उनका मकसद था राज कपूर के साथ काम करना, क्योंकि आवारा और श्री 420 जैसी फिल्मों ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया था।

लेकिन मुंबई आते ही इत्तेफाक ये हुआ कि बासु भट्टाचार्य बिमल रॉय की फिल्म टोली में एज असिस्टेंट डायरेक्टर शामिल हो गए। सन 1958 में आई मधुमति और सन 1960 में आई फिल्म सुजाता में बासु भट्टाचार्य बिमल रॉय के सहायक निर्देशक रहे।

जाहिर है कि अब बासु भट्टाचार्य का फिल्म करियर धीरे धीरे अपनी दिशा ले रहा था। इसी बीच जाने माने गीतकार शैलेंद्र ने फिल्म बनाने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने चुनी एक अनमोल कृति, हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार और उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु की मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम।

फिल्म तीसरी कसम का निर्माण शुरू हुआ और इसके लिए बासु भट्टाचार्य को बतौर निर्देशक चुना गया। जो बासु भट्टाचार्य राज कपूर के साथ फिल्में बनाना सीखना चाहते थे, आखिरकार उनकी फिल्म यात्रा एक तरह से राज कपूर के साथ ही शुरू हुई और उन्होंने फिल्म तीसरी कसम में राज कपूर को डायरेक्ट किया। तीसरी कसम के बनने में कई परेशानियां आईं। इस फिल्म का निर्माण एक तरह से संघर्षों से भरा रहा था, पर यह फिल्म हिंदी की एक कालजयी फिल्म साबित हुई। फिल्म तीसरी कसम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी हासिल हुआ था।

देश विदेश में फिल्म तीसरी कसम की बहुत ज्यादा तारीफ हुई। इस बीच बासु भट्टाचार्य ने सन 1966 में ही एक और फिल्म बनाई, उसकी कहानी। मुख्य कलाकार थे अंजू महेंद्रू और दीना पाठक।

बासु भट्टाचार्य को ये समझ में आ गया था कि उनकी एक खास तरह की शैली है, फिल्में बनाने का उनका अपना एक खास मुहावरा है, और इसीलिए बासु भट्टाचार्य ने अपनी तरह का सिनेमा बनाया। मुंबई में फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए उन्होंने अपनी फिल्म बनाई अनुभव। साल 1971 में आई फिल्म अनुभव के मुख्य सितारे थे संजीव कुमार और तनुजा। बासु भट्टाचार्य की खासियत रही है वैवाहिक रिश्तों की जटिलता, और वैवाहिक रिश्तों के तनाव पर वो बहुत बारीक काम अपनी फिल्मों में करते रहे हैं। फिल्मों के जानकार ये कहते हैं कि बासु भट्टाचार्य ने जीवन में वैवाहिक संबंधों की पड़ताल पर एक ट्रायोलॉजी बनाई है, और 1971 में आई फिल्म अनुभव इसी ट्रायोलॉजी का यानी इस फिल्म त्रयी का पहला हिस्सा साबित हुई।

फिल्म अनुभव के गीत गुलजार ने रचे और इसका संगीत कनू रॉय का था। गीता दत्त की आवाज में इस फिल्म के गाने जैसे दिल को चीर डालते हैं।

सन 1972 में फिल्म अनुभव को दूसरी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ था। इस बीच बासु भट्टाचार्य ने एक फिल्म बनानी शुरू की डाकू, पर वो फिल्म पूरी नहीं हो पाई। अनुभव से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में बासु भट्टाचार्य संजीव कुमार की बजाय इस फिल्म में प्राण को लेना चाहते थे। उन्होंने काम भी शुरू कर दिया था, पर उन्हें लगा कि संजीव कुमार इस फिल्म के लिए बेहतरीन साबित होंगे और उनका यह विश्वास रंग लाया। फिल्म अनुभव एक बेमिसाल फिल्म मानी जाती है।

जैसा कि हमने कहा, बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की जटिलता के एक अनमोल फिल्मकार हैं। अनुभव के बाद वैवाहिक संबंधों पर उनकी एक और फिल्म आई, आविष्कार। आविष्कार बड़े सितारों से सजी फिल्म थी। इस फिल्म में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ने काम किया था। एक बार फिर संगीतकार थे कनू रॉय।

राजेश खन्ना को इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनय का फिल्म फेयर पुरस्कार हासिल हुआ था। राजेश खन्ना की करियर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सार्थक फिल्म मानी जाती है आविष्कार।

सन 1976 में बासु भट्टाचार्य ने फिल्म संगत बनानी चाही, हालांकि ये फिल्म पूरी नहीं हो पाई और सन 1979 में बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की पेचीदगी पर अपनी तीसरी फिल्म लेकर आए गृह

अनुभव, आविष्कार और गृह प्रवेश, ये तीन ऐसी फिल्में हैं जिनके जरिए बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की जटिलता की जांच करते हैं, उसकी पड़ताल करते हैं और उसके अलग अलग आयामों को सामने लाते हैं। संजीव कुमार उनके प्रिय सितारे थे, वही फिल्म गृह प्रवेश में नजर आए, साथ में शर्मिला टैगोर और सारिका। गुलजार ने इस फिल्म के गाने लिखे थे।

0: बासु भट्टाचार्य की फिल्में अपनी कहानी, अपनी जटिलता और अपने संगीत के लिए खास तौर पर याद की जाती हैं। बासु भट्टाचार्य ने बहुत ज्यादा फिल्में नहीं बनाई, लेकिन उन्होंने जो फिल्में बनाई वो अपने आप में संपूर्ण हैं। वो ऐसी फिल्में हैं जो जीवन के यथार्थ को दर्शाती हैं। सन 1986 में उनकी एक फिल्म आई पंचवटी। पंचवटी में दीप्ति नवल और सुरेश ओबेरॉय मुख्य सितारे थे। सार्थक फिल्मों की दुनिया में फिल्म पंचवटी एक महत्वपूर्ण फिल्म के तौर पर याद की जाती है। यहां एक बात और आपको बता दें, सन 1979 में बासु भट्टाचार्य निर्माता बने और उन्होंने सई परांजपे की फिल्म प्रोड्यूस की स्पर्श, नसीरुद्दीन शाह और शबाना आजमी के बेमिसाल अभिनय वाली फिल्म स्पर्श समानांतर सिनेमा आंदोलन की एक बेहतरीन फिल्म मानी जाती है।
1: सच, आपकी संस्था से जो मैंने पाया है वो मैं कभी बता नहीं पाऊंगी।
2: और आपका आना संस्था के लिए कितना फायदेमंद हुआ है ये मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत खुश है आजकल बच्चे, जैसे पहली बार उन्हें ममता मिली हो।
0: सन 1997 बासु भट्टाचार्य ने अपनी आखिरी फिल्म बनाई आस्था। मुख्य सितारे थे रेखा, ओमपुरी और दिनेश।

20 जून 1997 को इस असार संसार को छोड़कर एक लंबी यात्रा पर चले गए बासु भट्टाचार्य। बासुदा इस दुनिया से विदा हो गए, पर रह गया उनका सिनेमा, उनका वो सिनेमा जो मानवीय संबंधों की पड़ताल करता है। ये वो सिनेमा है जो अपनी तरह से निराला है और इसीलिए लोग इन फिल्मों को खोज खोज कर देखते हैं और एक फिल्मकार के रूप में बासु भट्टाचार्य को याद करते हैं। वैसे बासु भट्टाचार्य का सबसे बड़ा योगदान कुछ फिल्म समीक्षक तीसरी कसम को मानते हैं। तो अब आपसे विदा लेने से पहले तीसरी कसम में कही गई ये सीख।

0: पास जाना है।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी निर्माता निर्देशक बासु भट्टाचार्य पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
2: आज के फनकार।

0: जून को है विश्व योग दिवस और इस बार की थीम है बढ़ती उम्र के साथ योग। विविध भारती लेकर आ रहा है एक विशेष कार्यक्रम। हमारे खास मेहमान हैं योगीराज भारत भूषण भारतेंदु, जो आपको बताएंगे कैसे योग बदल सकता है आपका जीवन।
1: बूढ़े बच्चे जवान सभी को करना चाहिए। पहला तो है श्वास से रिलेटेड, श्वास के एक्सरसाइज प्राणायाम तो सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑफिस वाले हैं तो उनके लिए 10 से 15 सूर्य नमस्कार अच्छे से हर पोज को मेंटेन करते हुए करें तो
0: काफी होता है। मैटिनी शो 20 जून सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती,
3: गीतों भरी कहानी। आइए सुनते हैं निवेदिता श्रीवास्तव की लिखी गीतों भरी कहानी ज्वालामुखी। वाचन स्वर निवेदिता श्रीवास्तव का ही है।
4: ऑफिस जाने के लिए लैपटॉप बैग लंच बॉक्स संभालते हुए कार की चाबी लेने के लिए अनुभा ने हाथ बढ़ाया ही था कि दही शक्कर की कटोरी लिए अपनी माँ विभा को सामने देखते ही हंसी की सुनहरी चमक उनके चेहरे पर खिल उठी। अरे वाह माँ, आपको याद है कि आज मेरा नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है और मुझे आपके इस आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। माँ के पूरे व्यक्तित्व में ही जैसे एक अलग ही तरह की संतुष्टि व्याप्त हो गई। बिटिया, मुझे तो आज भी तुम्हारे जन्म की वो घड़ी याद है जब मैं पूरे समय यही गाती थी।

अनुभा भी खिलखिला उठी। माँ, अब मैं चलती हूँ, नहीं तो ये मुंबई का ट्रैफिक मुझे मीटिंग के लिए देर ना करवा दे। शाम को आप तैयार रहिएगा, हम लोग मरीन ड्राइव चलेंगे और उधर से ही प्ले देखते हुए वापस आएंगे। और हाँ, हम लोग उधर से ही डिनर करते हुए आएंगे, इसलिए आज किचन की पूरी छुट्टी और आपका आज रेस्ट डे है। आज आपके लिए पार्लर में मसाज बुक कर देती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। विभा मुस्कुरा उठी। बेटी, तूने तो मेरी दुनिया ही बदल दी, वरना। अनुभा ने माँ को गले से लगा लिया। माँ, मुझको वो गाना याद आ रहा है जो आप अक्सर गुनगुनाती थी, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। गुनगुनाते हुए ऑफिस से निकलने से पहले ही अनुभा ने माँ को फोन करके तैयार रहने की याद दिला दी थी। घर के गेट पर बजते हॉर्न और फोन पर लगातार बजती घंटी आज की शाम के लिए उसके उत्साह को जैसे रेखांकित कर गई। और माँ भी दरवाजों पर ताला लगाकर उसके बगल की सीट पर बैठ गई। माँ का बैठना था कि अनुभा सड़क के बेतहाशा बेलगाम ट्रैफिक से अपनी गाड़ी को पानी की तरह निकाल ले गई। मरीन ड्राइव पर कुछ बातें करते करते ही डूबते सूरज को देखती हुई विभा अचानक ही चुप हो गई। टोकने पर बोली कि सागर की लहरों के साथ बीत रही ये शाम उस शाम की याद दिला रही है जब हम सब साथ थे।

माँ के साथ ही अनुभा भी उन पुरानी छोड़ दी गई गलियों में पहुंच गई। बचपन से लेकर कॉलेज फेयरवेल तक के दिन हंसते खिलखिलाते मानो पंख लगाकर उड़ते चले गए थे। मम्मी पापा के साथ की बेशुमार खुशनुमा यादों से सज्ज ना जाने कितने पल उसकी यादों के आसमान पर चांद तारों से झिलमिला उठे थे। दुर्गा पूजा की छुट्टियों में घर आई अनुभा रोज ही अपनी किसी न किसी सहेली अथवा पुराने स्कूल के शिक्षकों से मिलने निकल जाती थी। बचपन के दिनों और शरारतों को याद करते करते समय कितनी जल्दी बीत जाता था उन सबको पता ही नहीं चलता था।

अक्सर ही अनुभा अपनी माँ विभा को भी ले जाना चाहती थी, परंतु वह तो कभी किसी काम का तो कभी किसी अतिथि के आने का बहाना बनाकर टाल जाती थी। उसको तो लग रहा था कि आजकल माँ कुछ अनमनी सी हैं, परंतु घर परिवार और उनके दोस्तों में भी सब पूर्ववत व्यवस्थित प्रतीत होने से कोई कारण समझ नहीं आने पर वह उसको अपने मन का भ्रम समझ अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हो जाती थी। एक शाम घर जल्दी वापस आने पर अनुभा ने देखा कि उसकी माँ विभा तकिए में मुंह छुपाकर अपनी मुखर होती सिसकियों को दबाने का प्रयास कर रही थी, पर उनके वेग से हिलता हुआ शरीर असलियत की चुगली दे रहा था। अनुभा से रहा नहीं गया और उसने माँ के कंधों पर हाथ रख दिया। माँ, क्या हुआ? आप इस तरह क्यों रो रही हैं? विभा खुद को समेटते हुए उठने का प्रयास करते करते जैसे टूटे हुए बांध सी बिखर गई। क्या करूं बिट्टू, मैं क्या करूं? लाख कोशिशों के बाद भी मैं उस लम्हे से निकल ही नहीं पा रही हूं। अनुभा एकदम चौंक गई और कुछ भी नहीं समझ पाने की स्तब्ध मनस्थिति में उनका हाथ थामे बैठी, बस सांत्वना देती पीठ ही सहलाती चली गई। मरुथल की वीरानी समेटे सखारापन उन दोनों माँ बेटी की आंखों से बहता हुआ ना जाने कहाँ जज्ब होता चला गया। बहुत प्रयास के बाद भी अनुभा कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके इन कुछ महीनों के ही हॉस्टल प्रवास में ऐसा क्या घट गया जिसने उसकी इतनी दृढ़ मना माँ को इतनी बुरी तरह तोड़ दिया है कि वह टूटे हुए कांच की किरचों जैसी बिखर गई हैं।

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: उसने खुद को संभालते हुए माँ का मुंह धुलवाया और उनको शांत करती वहीं पास ही बैठ गई। माँ, सबसे पहले तो आप शांत हो जाइए और धैर्य रखिए कि आप अकेली नहीं हैं। आपने अपने बच्चों को इतना सशक्त बनाया है कि वह चीजों को समझ और सुलझा सकें। आप स्वयं को संभालिए और सारी बातें बिना किसी झिझक के एकदम स्पष्ट बताइए कि समस्या है क्या। ऐसा क्या अघटनीय घट गया जो आपकी आंखों में इतने आंसू दे गया है? आपकी आंखों से बहते ये आंसू मुझको भी भिगो रहे हैं। विवाह के मन में जैसे विचारों के बवंडर उठ रहे थे, मानो वह सोच रही हो कि क्या बताएं और कैसे बताएं। कभी उससे अपना रिश्ता सामने खड़ा हो संकोच की बाढ़ खड़ी कर देता, तो कभी सामाजिकता चोटिल कदमों को और भी घाव मिलने की आशंका दे जाती। खुद की बेबसी का अनुभव करती उसने कुछ नहीं के भाव में सिर को हिला दिया, मानो वह उस पल को हटाना चाहती हो। शायद बेबसी की भाषा खामोशी के वीरान सन्नाटे में होते हुए भी बहुत कुछ अनकहा भी कह जाती है। अनुभा ने उसके हाथों को पकड़कर अपने विश्वास और सामर्थ्य की ऊर्जा सी उनमें भरी। नहीं माँ, ऐसे तो नहीं चलेगा, आपको मुझको तो बताना ही पड़ेगा। आइए बातें करते हैं और उससे ही आपकी इस पीड़ा का कुछ हल निकालते हैं। बेटी के स्नेहिल स्पर्श की ऊर्जा पाकर विभा जैसे दुगने वेग से फफक पड़ी। तू ही बता कि अब तुझको या किसी को भी बता के क्या होगा, और क्यों ही बताऊं, क्या कर लेगा कोई भी, क्या कर लेगी तू भी ये जानकर कि मेरा दम घुटता है इस घर में। मैं यहां एक पल भी नहीं रहना चाहती हूं, पर मैं अब उम्र के इस मोड़ पर जाऊं कहां, सिर्फ अपने लिए कोई अलग सा स्थान भी तो नहीं बनाया कभी। अब तो तेरे नाना जी और नानी माँ भी नहीं रहे कि उनके पास ही चली जाऊं। कुछ पल उखड़ती सांसों को अपनी चुप्पी से थामने का प्रयास करती हुई विभा फिर से सिसक पड़ी। जब मैं भी अपने लिए कुछ कर सकती थी या इस समाज में स्वयं को स्थापित कर सकती थी, तब तो मैं इस घर को संभालती रही और अब तेरे पापा के दिए इस धोखे को संभाल रही हूं।

तो मानो अचानक आए सैलाब में उसके सब्र का बांध टूट गया और वो पिछले महीनों की सारी बातें बताती चली गई। उसके पापा के वॉशरूम में होने के समय लगातार बजती फोन की घंटी और मैसेज के नोटिफिकेशन से किसी अनहोनी की आशंका से घबरा कर उसने उनका फोन उठा लिया था और सब देखते ही मानो उसकी विश्वास की दुनिया बिखरती ही चली गई। साथ में ही अपने फोन में सुरक्षित उसके पापा अरुण की उस दूसरी स्त्री के साथ की सारी फोटो और उनके फोन की चैट की स्क्रीनशॉट भी दिखाने लगी। ये सब सुनकर अनुभा एकदम स्तब्ध रह गई। स्वयं को मजबूत करती उसने माँ को समेट लिया। माँ, सबसे पहली बात यह है कि आप स्वयं में ही बहुत सशक्त हैं। आप न तो मजबूर हो सकती हैं और ना ही कमजोर। आप में तो इतनी सामर्थ्य है कि 2.5-3 किलो के वजन को स्नेह से अपने गर्भ में वहन करती रहीं और उस अबोध शिशु को अपने स्नेह और संस्कारों से इतना सामर्थ्यवान कर दिया है कि वो अपना आत्मसम्मान बनाए रखने के साथ ही दूसरों का भी सहारा बन सके। वह कुछ सोचती सी मानो एक पल में ही किसी निश्चय पर पहुंच गई। सबसे पहले आप खुद को बेचारी और बेसहारा समझना और मानना बिल्कुल बंद कीजिए, और कमजोर तो आप पढ़ ही नहीं सकती हैं। आप इस घर में नहीं रहना चाहती तो आप यहां बिल्कुल नहीं रहेंगी। क्या हुआ अगर नाना जी और नानी माँ नहीं रहे? आपकी बेटी, आपकी प्रतिछाया, मैं तो हूं ना आपके साथ, आपके पास हरदम। अनुभा ने अपनी हथेलियों में माँ की आंखों से बहने वाले आंसुओं को चुन लिया। आप अभी मेरे साथ चलेंगी और आपको आपके पैरों पर खड़ा करने की जिम्मेदारी और वादा मेरा है, पर माँ, मुझे एक बार पापा से भी सवाल करने ही हैं। वो अपने किए से मुक्त नहीं हो सकते। बस आज की शाम का समय मुझे दे दीजिए। विभा की पलकें एक बार फिर बह चली। अब जब कुछ बचा ही नहीं है तो क्या फायदा उनसे बातें करने का, और क्या बात करनी है? मेरे पूछने पर उन्होंने कह ही दिया है कि जो भी करना हो वह करने के लिए मैं स्वतंत्र हूं। अब वो अपनी मर्जी से जीवन जिएंगे। मुझको दिक्कत हो तो जहां जाना हो चली जाऊं, नहीं तो उनकी सेवा करती हुई यहीं पड़ी रहूं।

0: अनुभा ने रोती हुई विभा के कंधों पर हाथ रख दिए। आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि कुछ बातों के जवाब तो पापा को देने ही पड़ेंगे। आपको चाहे नहीं, परंतु मुझको तो चाहिए उनके जवाब। विभा ने अपनी सहेली दिवी को फोन करके बुलाया और अनुभा को उनके साथ उनकी सहेली शशि मौसी के पास भेज दिया और अपने पापा अरुण का इंतजार करने लग गई। अरुण ने देर शाम को ऑफिस से आते ही अपना बैग और लंच बॉक्स दरवाजे पर ही छोड़ दिया कि विभा आकर सब वहां से हटाकर सही जगह व्यवस्थित कर ही लेगी। फ्रेश होकर आने के बाद भी उसने बैग को दरवाजे पर ही पड़ा देख आक्रोशित होकर विभा को आवाज देने लगे, विभा विभा कहाँ हो तुम? तुमने सब सामान अभी तक हटाया क्यों नहीं और पानी तक ला कर नहीं दिया? अनुभा, जो पास के कमरे से सब देख रही थी, वहां आ गई। क्या हुआ पापा, इतनी तेज आवाज में क्यों बोल रहे हैं? अनुभा की बात से सकपकाते हुए से अरुण ने विभा के बारे में पूछा, पर उसने उसकी बात का जवाब न देकर पूछ लिया, आपसे कुछ बात करनी है, कुछ पूछना चाहती हूँ, आपके पास समय है क्या? अरुण चिंतित हो उठा, क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या तुमको? मुझसे तो कभी भी कुछ भी बात कर सकती हो, इसके लिए पूछने की क्या आवश्यकता है?
1: हाँ जी।

अनुभा उसके सामने इत्मीनान से बैठ गई। घर, परिवार, समाज सभी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभा चुकी स्त्री को यदि उसका पति धोखा दे तो उसको क्या करना चाहिए? अरुण ने एक सुकून महसूस किया और बोला, ये तो गलत है। उसके पति को ऐसा तो हरगिज नहीं करना चाहिए। ऐसा कौन मिल गया तुमको? अनुभा ने स्वयं पर नियंत्रण बनाए रखते हुए बोलती चली गई कि पति की गलत आदतों और समय समय पर टोकने के बाद भी जीवन की हर चुनौती पर, हर सुख दुख में उसका साथ देने पर, उम्र के इस ढलान वाले दौर में उसकी सहेली के पापा का किसी अन्य स्त्री से संबंध है, ऐसे में सहेली की माँ को क्या करना चाहिए? अरुण ने जवाब दिया, विश्वास की हत्या करने वाले ऐसे पति को तुरंत तलाक दे देना चाहिए। ऐसा धोखेबाज पति जिंदगी के किसी भी मोड़ पर और भी बड़ा धोखा दे सकता है। शायद तब तुम्हारी उस सहेली की माँ के पास संभलने का समय ही नहीं होगा। अरुण ने देखा कि अनुभा कुछ सोचती सी गुमसुम होकर बैठी रह गई। वह आकर उसके पास बैठ गया। बेटे, सहेली के बारे में सोचकर परेशान मत हो, क्योंकि परेशान होना तो किसी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। अनुभा उनकी ओर देखती हुई बोली, नहीं पापा, मैं सहेली के बारे में नहीं, उसकी माँ के बारे में सोच रही हूँ कि अपने जीवन के इतने अनमोल और खूबसूरत साथ देने के बाद भी उनको धोखा क्यों मिला? क्या ईमानदारी से घर का ध्यान रखना और परिवार के प्रति समर्पित रहना गलत होता है? आखिर उन्होंने अपने लिए कुछ करने की अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ा, तभी तो घर के सभी सदस्य इतने निश्चिंत होकर जिंदगी में खुद को कुछ साबित कर पाए। मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि वो गलत कहाँ थी।

अनायास ही अनुभा की आवाज में एक आक्रोश उभरने लगा था। पापा, ये सब देखकर मुझे लगता है कि मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए। नहीं जीना मुझे एक संशय के विश्वासघात के माहौल में। कहीं बाहर जाकर नौकरी न करने की एक बात छोड़ दें तो मेरी सहेली की माँ रूप, व्यवहार, गृह कौशल, सामाजिकता निभाने वगैरह सभी बातों में अव्वल थी, जबकि मैं तो ऑफिस में काम करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानती। तब मेरा साथ कोई क्यों देगा? अरुण तड़प कर उसके सिर पर हाथ फिरने लग गया। ऐसा क्यों बोल रही हो बेटा? तुम अकेली कहाँ हो? मैं हूं ना, तुम्हारे साथ मैं कभी कुछ गलत होने ही नहीं दूंगा। अनुभा शांत भाव से उसको देख रही थी। अमर होकर तो इस धरती पर कोई नहीं आया है, फिर जब आप नहीं रहे तब मिले धोखे का सामना मैं कैसे करूंगी? अरुण उसके मन की उलझनों को समझता हुआ बोला, बेटे कोई भी कभी भी एकदम अकेला नहीं होता, कोई न कोई अवश्य होता है साथ देने को। ईश्वर ना करे, परंतु यदि कभी ऐसा हुआ भी तब भी कोई ना कोई तो तुम्हारा साथ देगा ही, जैसा अभी मैं तुम्हारी सहेली की माँ का साथ दूंगा। लाओ मुझे उसके पापा को फोन नंबर दो, मैं बात करता हूँ। पूरे जीवन साथ देने वाली पत्नी के साथ वह इतना गलत काम कैसे कर सकते हैं? अनुभा ने एक सुकून की सांस भरी। हाँ पापा, आप जरूर बात कीजिए, मैं उनको कॉल करती हूँ। उसके नंबर मिलाते ही उसके फोन पर अरुण का ही नाम चमकने लगा। वह चौंक गया, अरे तुमने तो गलती से मेरा ही नंबर मिला दिया, उसके पापा को कॉल करो ना। अनुभा खड़ी हो गई। नहीं पापा, मैंने नंबर सही मिलाया है, मैं आपकी और मम्मी की ही बात कर रही थी।

चौंक गया। क्या कहना चाहती हो? तुम्हारी मम्मी ने कुछ कहा है क्या? अनुभा की आवाज में तल्खी आ गई। अभी भी आपने यह नहीं कहा कि यह बात गलत है या मैं क्या बकवास कर रही हूं, बल्कि आप यह प्रश्न कर रहे हैं कि मम्मी ने कुछ कहा है, क्या समझूं इससे? अरुण की आवाज लड़खड़ा गई। मैं तो चौंक गया था कि यह तुमको क्या हुआ है, कैसी बातें कर रही हो। इसलिए ऐसा कुछ नहीं बेटा, तुम मेरी बात तो सुनो। अनुभा के पूरे अस्तित्व से मानो घृणा क्रोध बनकर बरसती जा रही थी। आप झूठ मत बोलिए, मैंने आपके सारे फोटो और चैट सब देख लिए हैं। पड़ोसियों ने तो पहले भी एक आध बार इशारे में कहा था कि जब मम्मी कहीं शहर के बाहर होती हैं तो कोई आपके साथ ही घर आती थी, और तब आप कार बाहर खड़ी नहीं करते थे, कार सीधे अंदर पोर्टिको में ही खड़ी करते थे। और अरुण यह सुनते ही बौखला गया। क्या बकवास कर रही हो? तुमको होश भी है कि क्या बोल रही हो? वो भी अपने ही पापा को। कोई कुछ भी बोल देगा तो तुम सच मान लोगी? आत्मवंचना मानो उसके शब्दों में मूर्तमान हो उठी। आपसे ज्यादा गुस्सा मुझको आया था, और उन डांटी से लड़कर मैंने बोलना ही छोड़ दिया था कि वो आपके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं। पर आज अफसोस हो रहा है कि मैंने उनकी बातों पर भरोसा करके उसी समय आपका कॉलर क्यों नहीं पकड़ा। काश मैंने पूछा होता तो मम्मी को इतनी पीड़ा से नहीं गुजरना पड़ता।

अरुण को लगा कि जिस पल की आशंका से वह सब छुपाने का प्रयास कर रहा था, वही पल सामने आ खड़ा हो गया है। उसने स्वयं को स्थिरचित्त कर लिया। तुम्हारी माँ को कभी कोई कमी होने दी थी क्या? उसकी कौन सी जरूरत पूरी नहीं की? समाज में उसके प्रतिष्ठा में कभी कोई कमी नहीं आने दी? फिर वो आखिर चाहती क्या है? क्या कुछ पल अपने मन से नहीं जी सकता मैं? अनुभा चीख ही तो पड़ी थी, आखिर आ ही गई आपकी असलियत सामने। कुछ पल अपने मन से यदि ऐसा ही जीवन उन्होंने जिया होता, तब क्या करते आप और आपकी आधुनिकता? अरुण का क्रोध विस्फोट कर उठा। तुम होश में हो? अपने पिता से तुम कैसी बातें कर रही? तुम्हारी हिम्मत कैसे? अनुभा उनके सामने सीधी खड़ी हो गई। मेरी हिम्मत तो आप अब देखिएगा। और हाँ, जिस बात को आप सुन भी नहीं पा रहे हैं, उस सच के साथ मेरी माँ को अपना पूरा जीवन जीना है। इतना विश्वास दिलाती हूँ कि टूटने तो उनको बिल्कुल नहीं दूंगी, ना तो मैं और ना ही भाई। बस वो भी पहुंचता ही होगा। अनुभा की आवाज को दबाने के प्रयास में उसका पौरुषीय अहंकार मानो उसके मर्म को चोटिल करने के लिए चिंघाड़ उठा। जिस सामर्थ्य की धमकी दे रही हो, उसको पाने की फीस की रकम मैंने ही भरी है। अनुभा पलट कर उसके सामने खड़ी हो गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, यह सब बोलने का साहस और अभी भी आपको आप बोलने का संस्कार मम्मी ने दिया है। आप यह मत सोचिएगा कि हम यह घर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। हम वापस यहीं आएंगे और रहेंगे। अपना सामान समेट कर गेस्ट रूम को अपने हिसाब से ठीक कर लीजिएगा। वह क्रोध में पागल ही होता जा रहा था। हम घूमने जा रहे हैं, तुम लोगों को घर पर ताला बंद मिलेगा। अनुभा पीड़ा में भी हंस पड़ी। अब तो समझ जाइए कि मुझको ताला तोड़ना भी आता है और तोड़वाना

दरवाजे की ओर बढ़ते बढ़ते वह अचानक से उसकी ओर घूम गई। और हाँ, सुबह दादाजी और दादी माँ आ रहे हैं यहाँ, उनको सुनाने के लिए कोई कहानी तैयार रखिएगा। अरुण के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। तुम्हारे दादाजी और दादी माँ, उन लोगों से क्या कह दिया तुमने? उस पीड़ा में भी अपने पिता की हड़बड़ाहट देखकर अनुभा हंस पड़ी। कुछ खास नहीं, बस जो सच है वही कहा है। और यह तो आप भी जानते हैं कि माता पिता अवश्य वो आपके हैं, परंतु आपसे कहीं ज्यादा प्यार वो अपनी बहू यानी मेरी माँ से करते हैं। पिता की स्तब्ध करती शक्ल देखकर वह बोल उठी, आपको शायद गलतफहमी हो गई थी कि नाना जी और नानी माँ के ना रहने से माँ एकदम अकेली और असहाय हैं। उनके साथ हम सब हैं जो उनकी तरफ उठने वाली हर उंगली को तोड़ना भी जानते हैं और आपकी सच्चाई को खोलना भी। वह दृढ़ कदमों से बाहर निकल गई, पर अरुण की उलझने मानो उसको न जाने की अंधेरी कंदरा में ले जा रही थी।

ज्वालामुखी। अभी आप सुन रहे थे निवेदिता श्रीवास्तव की लिखी गीतों भरी कहानी उन्हीं के स्वर में। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग काजल भदरगे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

छूकर मेरे मन को, याराना फिल्म से अभी ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। अनजान ने इस गीत को लिखा था और राजेश रोशन की तर्ज थी।

0: द ग्रेट गैम्बलर इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजों में। आप सुन रहे हैं इस वक्त विविध भारती से चित्रपट संगीत।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत।

फिल्म पड़ोसन से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, आशा भोसले और सखियों की आवाजों में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा था, आर डी बर्मन की तर्ज थी।

मन दौड़ने लगता है। और ये गीत अभी आप सुन रहे थे रजनीगंधा फिल्म से मुकेश की आवाज़ में, योगेश ने इसे लिखा था, सलिल चौधरी का संगीत था। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम चित्रपट संगीत यहीं समाप्त होता है।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आप सुन रहे हैं मैटिनी शो। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं पालघर पीठाधीश्वर योगीराज भारत भूषण भारतेंदु। विश्व योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से विश्व योग दिवस के दिन पर। हमारे विद भारती के तमाम भारत के सभी श्रोताओं को योगीराज भारत भूषण की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।
0: क्या बात है। मुझे ये बताइए भारत भूषण जी कि इस बार की जो थीम है वो है बढ़ती उम्र के साथ योग। तो बढ़ती उम्र के साथ योग का क्या महत्व है, यहां से हम अपनी बातचीत को शुरू करते हैं।
1: बढ़ती उम्र के लिए ही योग के सानिध्य में जाना

0: बहुत ही महत्वपूर्ण है।
1: जी
0: जैसा कि हम सभी लोग पहले शतायु हुआ करते थे, सभी लोग कम से कम 100 साल तक उम्र होती थी, लेकिन जो हम लोगों की सोसाइटी, हम लोग जैसे जैसे बढ़ते गए, जो एक तरह से मिलावट होता गया लाइफ में, सोसाइटी में, हमारे खान पीन में, सब में, जिसके कारण लोगों की उम्र जो है दर पदर थोड़ा कम होता गया। तो ये जो अभी का जो मिशन चल रहा है हमारे देश में, माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 100 दिन का योग महोत्सव चल रहा है पूरे भारत में।
1: जी
0: तो जैसे 100 दिन का योग महोत्सव चल रहा है, तो हम लोगों का पूरा प्रयास है कि लोग शतायु हों, 100 साल जिए इस योग को सीख करके, तो उम्र को बढ़ाया जाए,
1: और स्वास्थ्य को भी बढ़ाया जाए,
0: बढ़ाया जाए।
1: है ना। अच्छा मुझे ये बताइए कि 40 पार के बाद के जो लोग हैं, जो 40 बरस पार करके अब थोड़ा आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उनके जीवन में योग कितना जरूरी है और वो अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच कितना समय निकालें कि वो रोज योग कर पाए।
0: देखिए रही बात जो 40 के ऊपर वाले उम्र के जो भी लोग हैं, हम तो सदा से ही पूरे भारत में ही योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो मैक्सिमम लोगों को पूछने पता चलता है कि आप अपने लिए कुछ करते हैं कि नहीं करते। तो जो आपने उम्र बताई कि 40 वर्ष के ऊपर वालों के लिए, तो उन लोगों के लिए समय नहीं रहता, बोलते हमारे लिए समय ही नहीं मिलता खुद के लिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि 40 के ऊपर वालों को 24 घंटे में अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना योग के लिए बहुत ही आवश्यक है।
1: ये जो थोड़ा सा है इसमें कितनी मात्रा है ये समय
0: थोड़ा
1: की?
0: सा मात्रा में कम से कम 20 मिनट,
1: जी कम से
0: जी
1: कम 20
0: कम से
1: मिनट
0: कम 20 मिनट
1: और अगर बहुत दिल से निकालें तो कितना हो जाएगा
0: दिल से
1: वो?
0: निकाले तो 45 मिनट, 1 घंटे कर लें तो सोने पे सुहागा है।
1: क्या बात है
0: जी
1: जी। तो क्या क्या करना चाहिए, जैसे 20 मिनट का समय है जिस व्यक्ति के पास, वो क्या क्या करे, और जो व्यक्ति थोड़े बड़े दिल वाला है 45 मिनट निकाल रहा है, वो क्या क्या करे?
0: देखिए, सबसे फर्स्ट जो पहला है,
1: जी
0: 40 ही नहीं, बूढ़े बच्चे जवान सभी को करना चाहिए, पहला तो है श्वास
1: जी
0: से रिलेटेड,
1: हाँ
0: श्वास के एक्सरसाइज प्राणायाम तो सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
1: जी
0: और 40 को देखा जाए तो उनको युवा में माना जाता है, यंग, हमारी जो पावर है, यूथ भी कह सकते हैं हमारे देश के, तो उनके लिए आप प्राणायाम के साथ साथ सूर्य नमस्कार बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 10 राउंड 15 राउंड सूर्य नमस्कार आवश्यक है। उसके अलावा आप स्टैंडिंग में है, सिटिंग में है, लाइन डाउन में है, इसमें बहुत से आसन हैं जो कि करके 40-45 मिनट में अपने को एकदम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। और इसमें ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ध्यान भी करना जरूरी है, मेडिटेशन,
1: जी तो मेडिटेशन हो गया, प्राणायाम हो गया। प्राणायाम
0: आसन,
1: में कौन कौन से प्राणायाम जो हैं वो बहुत जरूरी हैं? भ्रामरी, शीतली,
0: जी
1: है
0: जी जी
1: ना?
0: हाँ, प्राणायाम में शुरू में तो जैसे रोदन क्रिया कर लीजिए, भस्त्रिका करके
1: हाँ
0: अपने फेफड़े को,
1: सबसे पहले
0: लंग्स को क्लीन
1: भस्त्रिका करना
0: करते,
1: है,
0: कपालभाति,
1: सबसे पहले कपालभाति करनी
0: कपालभाति,
1: है। जी
0: देन उसके बाद में भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली, शीतकारी, उज्जयी, अंत
1: इतने
0: में
1: सारे कर रहे
0: ओम,
1: हैं?
0: हाँ अंत में ओम चैंटिंग कर लीजिए,
1: अच्छा
0: ये पूरा
1: ठीक है
0: पैकेज
1: ठीक
0: हो
1: है।
0: गया,
1: जी जी
0: ये
1: जी
0: महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, सभी के लिए कॉम्बो है।
1: ये जो आपने प्राणायाम बताए इतने सारे,
0: जी
1: इनका हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है और इनसे क्या चीजें बैलेंस होती हैं?
0: इनसे सबसे पहले तो जो शुरुआत है,
1: जी
0: कपालभाति से अपने फेफड़े की शुद्धि होती है,
1: अच्छा
0: जो दिन भर चलते हैं, पोल्यूशन है अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्लीन होता है, ये शुद्ध हो जाता है फेफड़ा। और भस्त्रिका है, उसकी कैपेसिटी बढ़ाती है, उसको मजबूत करता है, स्ट्रांग करता है, कैपेसिटी, उसकी क्षमता बढ़ाती है लंग्स को। और अनुलोम विलोम, ये नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा गया इसको,
1: अच्छा
0: हम लोग के शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं,
1: जी जी
0: जिसमें तीन प्रमुख नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, तो इन तीनों को बैलेंस रखने के लिए इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम अनुलोम विलोम कहा गया है,
1: जी
0: जिससे नाड़ियां सब बैलेंस रहती हैं।
1: जी
0: और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है भ्रामरी प्राणायाम, जो कि मस्तिष्क के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जैसे आप सुनते भी होंगे कि लोग बोलते हैं आज मूड अच्छा नहीं है, कभी होता है कि बहुत अच्छा मूड है, कभी ऑफिस का काम पेंडिंग है, किसी से तकझक भी हुआ है, लेकिन मूड अच्छा रहता, चलो जो होगा देखा जाएगा। और कभी ऐसा होता है कि सारे काम सब हुए हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मन उदास रहता है, पता नहीं क्या हो गया। तो ये मूड ऑफ और ऑन है, तो ये जो मूड अच्छा रखने के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो
1: अच्छा
0: हमारे सिर में पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं, भ्रामरी करने से उसमें एक सिक्रीशन टाइप का होता है, जिससे मूड अच्छा रहता है, मस्तिष्क में लुब्रिकेशन बनाते हैं, जैसे इंजन में मोबिल ऑयल होता है ना, इंजन में ऑयल बराबर है तो अच्छे से चलती है,
1: जी
0: इसी तरह

0: होता तो वहां से फिर वो श्री कृष्ण होता है,
1: जी
0: माइंड कूल रहता है।
1: क्या बात है।
0: फिर उसके
1: तो
0: बाद
1: प्राणायाम की बात हुई,
0: जी
1: ध्यान की भी बात करेंगे, लेकिन आपने ना सूर्य नमस्कार की बात की है।
0: जी
1: मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो शुरुआत करते हैं वो 12-25 है ना, 50 ऐसा करते हैं, लेकिन जो धाकड़ लोग होते हैं वो तो बहुत सारे सूर्य नमस्कार करते हैं। जो बंदा अभी अपने लिए जरा भी वक्त नहीं निकाल रहा है, वो शुरू करे तो कितने से करे कि वो अगले दिन के लिए खड़ा हो पाए?
0: देखिए, जो कभी नहीं किया है
1: जी
0: हाँ, तो उसको आप शुरू में एक राउंड से शुरू करिए।
1: अच्छा
0: योग का मतलब ही है जोड़ना,
1: जी
0: योग प्लस है जोड़ना। तो अपने शरीर में, अपने लाइफ में अगर स्वास्थ्य को लाना है, जोड़ना है, तो उसको धीरे धीरे धीरे धीरे स्वतः स्वतः, पहले एक राउंड मतलब दो स्टेप, लेफ्ट एंड राइट, जैसे 12 काउंटिंग का एक सूर्य नमस्कार होता है, 12 लेफ्ट लेग से 12 राइट लेग से। तो एक राउंड आप पहला दिन करिए,
1: अच्छा
0: फिर दूसरे दिन दो राउंड करिए, एक हफ्ते तक आप दो राउंड तीन राउंड ऐसे करिए, जैसे जैसे आपको अच्छा लगे, धीरे धीरे धीरे धीरे उसको
1: बढ़ाइए।
0: बढ़ाते
1: नहीं,
0: जाइए।
1: कई लोग जोश में आते हैं तो फिर किसी की कमर, किसी का कुछ
0: जी ये सही कर रहे हैं। तो
1: जी
0: जोश में आकर होश नहीं खोना है,
1: बिल्कुल
0: योग हम कर रहे हैं, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि हम योग कर रहे हैं,
1: जी
0: योग को धीरे धीरे जोड़ना है।
1: जी सामान्य रूप से कितने सूर्य नमस्कार सवेरे सवेरे कर लेना एक अच्छी जीवन शैली की निशानी है?
0: देखिए, जो ऑफिस वाले हैं, वर्किंग में हैं, तो उनके लिए 10 से 15 सूर्य नमस्कार अच्छे से हर पोज को मेंटेन करते हुए करें तो
1: काफी होता है।
0: काफी होता है।
1: अब मैं आपको आपके पसंदीदा विषय की तरफ लेके जाता हूं। ये जो सूर्य नमस्कार है, इसके फायदे बताइए कि क्या क्या हैं। इसको संपूर्ण योग कहा जाता है ना?
0: जी, सूर्य नमस्कार में कई आसन एक साथ हो जाता है
1: जी
0: हाँ? तो उससे क्या होता है कि आपको अलग अलग कई आसन करने की आवश्यकता नहीं, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड लेटने का भी हो जाता है। इसमें कई आसन हो जाते हैं, भुजंगासन से लेके पर्वतासन, ऐसे कई आसन उसमें हो जाते हैं, तो जिससे आपको अलग अलग आसन करने की आवश्यकता नहीं है। एक तरह से काम वो जो सूर्य नमस्कार किया जाता है, वो बेनिफिट आपको पूरा हेड टू टोज तक
1: मिल जाता
0: मिल
1: है
0: जाता है।
1: जी।
0: ये
1: तो
0: सबसे
1: ये एक
0: इम्पोर्टेंट है
1: सबसे इंपॉर्टेंट बात है,
0: सूर्य नमस्कार,
1: और पूरे दिन आप बहुत ज्यादा जोश में रहते
0: जोश
1: हैं।
0: में रहते हैं। और जिनको ये भी ध्यान रखना है कि इसी योग इंस्ट्रक्टर के सानिध्य में ही करें। कभी कभी क्या है, कोई प्रॉब्लम रहते हैं तो फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना है, जो दिक्कतें हैं
1: जी,
0: तो उसको उसके हिसाब से धीरे धीरे क्या करना है, कितना करना है, उसके हिसाब
1: और
0: से
1: आपकी
0: वो
1: जो शारीरिक परिस्थितियां हैं
0: उसके
1: वो
0: अनुसार।
1: बाकायदा ईमानदारी से
0: जी
1: बताना है कि
0: हाँ,
1: भाई ये
0: जिन
1: समस्याएं
0: जिनकी
1: हैं।
0: एज ज़्यादा है उनको ध्यान में रखना है
1: हाँ, मैं वही
0: इन
1: पूछने आ
0: सबको।
1: रहा था बिल्कुल, कि बुजुर्गों के लिए सूर्य नमस्कार, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 50-60 की उम्र या उससे ज्यादा की उम्र का है और वो करना चाहता है,
0: जी
1: तो वो क्या करे और क्या ना करे?
0: कि बुजुर्गों के लिए सूर्य नमस्कार, पहली बात तो किसी योग गुरु के सानिध्य में रह करके धीरे धीरे करें। बुजुर्गों में बहुत से हमारे ऐसे शिष्य हैं जो कि एज उनकी काफी है, लेकिन बहुत अच्छा सूर्य नमस्कार करते हैं।
1: जी,
0: क्यों कर लेते हैं कि वो शुरू से ही
1: नियमित
0: वो
1: रूप से करते आए
0: नियमित
1: हैं।
0: रूप से योग और सूर्य नमस्कार आसनाज वगैरह खूब अच्छे से करते हैं, तो बहुत अच्छे कर लेते हैं। लेकिन जो अभी नए हैं, जिन्होंने कभी किया नहीं, तो उनको बहुत ही ध्यान में रहकर उनको सभी जो आसन से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके उनको फिर अपने रूटीन में लाना है सूर्य नमस्कार को, और बहुत तनाव या प्रेशर दे करके जोश में नहीं करना है।
1: जी, मैं समझ गया।
0: जी
1: मुझे ये बताइए कि मनाही नहीं है ना बुजुर्गों को सूर्य नमस्कार करने के लिए?
0: कोई भी चीज़ इसमें ऐसा मना ही नहीं, लेकिन हर योग को, कोई अगर रोगी है, कोई व्याध से व्याधित है, तो उसको उसके अनुसार योग को करना चाहिए और योग गुरु की सानिध्य में करना चाहिए। बहुत सी चीज़ें जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको क्या नहीं करना है। पहले कोई व्याधि से ग्रस्त है तो उनको उस व्याधि में कौन से आसन नहीं करने हैं वो ध्यान रखना है, तो वो ना करते हुए फिर उसके बाद में क्या करना है वो करना चाहिए।
1: बिल्कुल। अच्छा, अब मैं इस बात की तरफ आ रहा हूं कि आजकल क्या हो गया है कि सब जगह कंप्यूटर हैं,
0: जी
1: लोग जो हैं वो अपने दफ्तरों में अपने लैपटॉप पर या अपने सिस्टम पर बैठे हैं
0: जी
1: और दिन दिन भर बैठे हैं। बीच में थोड़ा ब्रेक लिया है, चाय वाय पी, उसके बाद फिर बैठे तो पता चला पूरे दिन का बैठना जो है वो 12 घंटे 15 घंटे हो गया। ऐसे लोगों के लिए कौन कौन सी सावधानियां हैं और

0: उनको, क्योंकि देखते ये हैं कि किसी की गर्दन दुख रही है, किसी की कमर दुख रही है, किसी की कूल्हे दुख रहे हैं,
1: जी
0: टेल बोन की समस्या हो गई है, बहुत तरह तरह की जो
1: जी
0: लाइफस्टाइल की डिजीजेस हैं
1: जी
0: वो बढ़ रही हैं। तो ये ऑफिस वर्किंग पीपल के लिए आप खास तौर पर क्या कहेंगे?
1: देखिए, ऑफिस वर्कर्स ही नहीं,
0: जी
1: आज का जो समय चल रहा है यूनुस जी, लोगों का हर चीज़ पर्सनलाइज की तरफ जा रहे हैं। सबका अपना होना चाहिए, सब कुछ, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सबको अपनी चीज़ चाहिए, अपना मोबाइल, अपना गाड़ी, अपना घर, अपना कमरा, अपना लैपटॉप, सारे पर्सनल चीज़ें होती जा रही हैं। तो उसमें हमने योग को पर्सनलाइज किया है। जैसे ऑफिस में जो काम करते हैं उनके लिए ऑफिस योगा, स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट योगा, गृहिणियाँ जो अपने घर में रहती हैं, सुबह बच्चों का स्कूल है, हस्बैंड का ऑफिस है, सास ससुर उनकी सेवा करना है तो किचन में ज़्यादा समय रहती हैं, तो उनके लिए किचन योगा है, किसानों के लिए किसान योगा है, पत्रकारों के लिए पत्रकार योगा है, पुलिस वालों के लिए पुलिस योगा है, यंग्स के लिए योगा 2020 है। तो ऐसे ऐसे पर्सनलाइज हमने योग का पैकेज रखा है। तो जो ऑफिस में जो काम करते हैं उनका, क्योंकि कारण क्या है कि वो ज़्यादातर लैपटॉप पर रहते हैं, कंप्यूटर पर रहते हैं, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, वो उनको ख्याल नहीं रहता कि हमारा पोस्चर किधर है, क्या है, वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं। तो जिसके तनाव के कारण उनके शरीर में किसी भी पोस्चर में कोई भी कभी भी खिंचाव आ गया तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं
0: जी
1: ऑफिस वालों के लिए। तो ऑफिस वालों के लिए समय दूर से आते हैं तो उनको समय भी नहीं मिलता है, तो अपनी कुर्सी पर बैठ करके कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ टाइम टाइम पे 1-2 घंटे बीच में रेस्ट गैप ले करके वो योग करके, ऑफिस योग का करके वो स्वस्थ रह सकते हैं, उनको बैक का प्रॉब्लम नहीं होगा, स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा मेंटली, तो वो ऑफिस के लिए ऑफिस योगा बहुत ही
0: आपने इस तरह से वर्गीकरण
1: फायदेमंद है।
0: कर लिया है,
1: जी
0: अलग अलग लोगों के लिए
1: हाँ, जिससे
0: अलग अलग तरह
1: सब
0: के
1: सभी
0: योग जो
1: स्वस्थ
0: है
1: रहें।
0: तय कर लिए आपने।
1: जी
0: अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आपका तो बहुत बड़ा अनुभव है और आप न केवल कई बड़ी हस्तियों को सिखाते हैं बल्कि जनता के बीच योग की जो लोकप्रियता है उसको बढ़ाने का
1: जी
0: काम आप कर रहे हैं।
1: जी जी
0: विश्व योग दिवस तकरीबन 2015 से मनाया जा रहा
1: जी
0: है, बीते इन 11 सालों में आपने क्या देखा है? क्या योग की लोकप्रियता और इसके प्रति लोगों का रुझान अब बढ़ता जा रहा है?
1: अब कुछ बहुत ही बढ़ता जा रहा है, हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में योग के प्रति। और जब से कोरोना का समय आया है
0: जी
1: उसके बाद से लोगों में जागरूकता बढ़ी है, स्वयं अपने स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूक हुए हैं, और जिसका कारण है कि आज हम देखते हैं कि हर पार्क में लोग इकट्ठा होते हैं, जो योग कर सकते हैं योग करते हैं, टहलने का काम करते हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ें जो कि अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो करके लोग अपने स्वास्थ्य के लिए लाभ उठाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो लोगों की जागरूकता बहुत बड़ी है अपने स्वास्थ्य के प्रति, लोग
0: जी
1: अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छी लिविंग स्टाइल, और योग के प्रति, योग, ध्यान, प्राणायाम, साधना, इसके प्रति तो लोगों की रुचि बहुत ही बढ़ी है। और हम लोग अनवरत प्रयास कर रहे हैं कि घर घर योग, सभी रहे निरोग।
0: वाह। अच्छा, एक बड़ा जो लोगों का रुझान है वो है वजन घटाने की तरफ, क्योंकि अमूमन अब लोग ओवरवेट होते
1: जी
0: हैं,
1: जी जी
0: पर बहुत कोशिशें करते हैं और वजन घटता ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या बताएंगे कि केवल योग करना ही काफी है या उसके लिए एक संपूर्ण पैकेज होता है कि किस तरह से आप क्या खाए पिए, कैसे जिए कि वजन भी नियमित रूप से कम हो और एक संतुलित जीवनचर्या बन सके?
1: जी रही बात वजन कम करने की, तो आप देखते हैं कि अमूमन लोग चाहते हैं कि हम योग से बहुत कम समय में वजन को कम कर लें, तो ऐसा
0: चमत्कार
1: चमत्कार और संभव नहीं है,
0: जी।
1: क्योंकि जितने समय में जो वजन बढ़ा है,
0: हाँ, कई लोग तो बहुत जल्दी बढ़ा लेते हैं जंक
1: हाँ,
0: फूड
1: पाँच
0: खा
1: साल
0: खा
1: में
0: के।
1: 2 साल में, हाँ, इतने टाइम में बढ़ा है, तो उसको कम करने में भी समय लगेगा,
0: जी
1: और योग से जो वजन आपका कम होगा वो ज़्यादा दिनों तक मेंटेन रहेगा। तो योग ही नहीं, योग के साथ आपको अपने आहार विहार पर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, उसके साथ में वर्कआउट जो आप करेंगे योग का, सबसे अच्छा रिजल्ट आता है आपका सूर्य नमस्कार से, उसके साथ साथ सब जितने भी अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेडिटेशन से आप केवल फिजिकली नहीं, मेंटली भी बहुत

0: ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण फायदे होते हैं ध्यान से, क्योंकि
1: अच्छा
0: सब कुछ ब्रेन से ही संचालन होता है।
1: जी
0: हाँ, जैसे रोगों का शुरुआत होता है स्ट्रेस से होता है, लोगों को पता नहीं लेकिन स्ट्रेस हो गया तो कहाँ से होता है, ब्रेन से ही होता है, तो उसके बाद ही तरह तरह की बीमारियाँ मेनू की तरह जुड़ती जाती हैं। तो ध्यान बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेडिटेशन।
1: बिल्कुल। तो मेडिटेशन तो कहीं भी किया जा सकता है, चाहे वो आप अपने ऑफिस में हो,
0: कहीं भी कर
1: स्कूल में
0: सकते
1: हो,
0: हैं
1: कॉलेज में हो,
0: आप,
1: घर पे हो।
0: कभी भी कहीं भी कर सकते हैं मेडिटेशन,
1: जी
0: और हम लोग तो हमेशा मेडिटेशन में रहते हैं।
1: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपने आहार विहार की बात की, आजकल जंक फूड का चलन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लोग कहीं भी
0: जी
1: खड़े हो जाते हैं
0: जी
1: और
0: जी
1: सड़क के किनारे के किसी भी चीजों को खा लेते हैं, और फिर वो कहते हैं कि सेहत की समस्याएं होती हैं और वजन बढ़ रहा है वगैरह वगैरह। क्या योग करने वाले व्यक्ति की जीवनचर्या के तहत आप ये इजाजत देते हैं कि वो इस तरह से मजे से बाहर खाता पीता रहे?
0: देखिए, सब कुछ हमारे ब्रेन से ही सब कुछ संचालन होता है,
1: जी
0: मस्तिष्क से ही,
1: जी
0: और अपने को ध्यान में रखते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या खा रहे हैं, किस भाव से खा रहे हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप योग ध्यान से अपने जीवनचर्या को, आहार विहार को संतुलित किए हुए हैं, तो आप बाहर की चीज़ों को आप ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अपने सेहत के प्रति आप जागरूक हो रहे हैं। और रही बात बाहर की खाने की, तो आप अच्छे भाव से खाएंगे, तो भगवान शिव ने विष को भी धारण कर लिया था लेकिन वो उनको नुकसान नहीं किया, तो कहने मतलब कि जबरदस्ती जानबूझ के नहीं खाना पीना है, लेकिन कभी हो गया तो
1: जरूरत से ज्यादा नहीं।
0: जी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं।
1: जी, आज के नौजवानों का क्या रुझान आप देख रहे हैं योग के प्रति, और क्या कुछ ऐसे नौजवान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपना बहुत सारा नुकसान कर लिया था और उन्हें आप सही रास्ते पर लाए?
0: ऐसे बहुत से नवयुवक हमसे मिलते हैं, बहुत से मिले हैं जो कि बॉडी बिल्डिंग भी करते थे, और अनियमित दिनचर्या के कारण उनके फिजिकल सिस्टम भी चेंज हो गए थे, बेडोल हो चुके थे, लेकिन उनको सही मार्ग मिलने पर, जैसे हमसे मिलते हैं तो बोलते हैं गुरु जी आप जैसे 20 साल पहले थे वैसे ही अभी भी हैं। हाँ, तो उनको एक प्रेरणा भी मिलती है कि कोई भी जैसे योग फील्ड में है आप देखेंगे तो फिट ही रहते हैं,
1: जी
0: तो उससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। और युवा शक्ति भी, अब हमारी जेंजी जो आजकल जेंजी बोलते हैं, बहुत ही समझदार और बहुत ही होनहार बच्चे हैं, और वो सब चीज़ों को समझते हैं और हमसे आपसे ज़्यादा वो जागरूक हैं, और उनको क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरी है लाइफ के लिए, वो कर रहे हैं, सही दिशा में वो जा रहे हैं, अपने भविष्य को भी लेकर हमारे देश को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो बच्चों में और नवयुवकों में तो बहुत परिवर्तन आया है, और मैंने देखा है कि जिम भी करते हैं और योगा भी करते हैं, मेडिटेशन प्राणायाम भी करते हैं। तो
1: बिल्कुल। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, आज की दुनिया ऐसी है जहाँ स्क्रीन की तरफ रुझान बहुत ज्यादा है, इसलिए उनका जो ध्यान बहुत भटकता है पढ़ाई में, क्योंकि
0: जी
1: मोबाइल हाथ में है, अगर एक बार सोशल मोबाइल मीडिया में घुस गए तो कई घंटे चले जाते हैं और उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती। ये जो फोकस है,
0: जी
1: इसके लिए किस तरह के योग करने चाहिए, ये छात्रों की बात कीजिए आप।
0: सबसे पहले तो हम छात्रों की बात आती है, और मैं योगी ही योगी राज हूँ, तो हमारे जो छात्र हैं, चाहे वो जूनियर कॉलेज को हों चाहे कॉलेज के, पहला तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और उनसे आशा भी करेंगे, तो पहला कि जीवन में ब्रह्मचर्य को अपनाएं, जीवन का जो मूल है वो शक्ति का, वीरवान बने और शौर्यवान बने। और उसके साथ साथ जो मोबाइल की जो स्क्रीनिंग है, मोबाइल है लैपटॉप स्क्रीन का जो ज़माना चला है, तो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो हमारा योग और मेडिटेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज के इस स्क्रीनिंग से। तो उसके लिए भी मोबाइल चर कह लीजिए कि मोबाइल स्क्रीन को भी अपने लाइफ में जितनी आवश्यकता है सीमित करना है, और किस फील्ड में उससे हमें क्या लाभ है उसको जोड़ना है, और खुद से उनको समझ करके उनके लाइफ में क्या ज़रूरी है। स्टडी बच्चों को पढ़ना भी स्क्रीन के अलावा हो नहीं रहा है, तो जो इम्पोर्टेंट है जितना समय सीमित है उतना ही उसको उपयोग करें, और फिजिकली वर्क में भी अपने को ध्यान दें, खेल कूद भी करें, योग करें, प्राणायाम करें, वो बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: जी, एक और बहुत जरूरी बात और एक बहुत बड़ा वर्ग जिसकी बात मैं करना चाहता हूं, वह है हमारी महिलाएं। उनमें से कुछ हैं जो गृहिणियां हैं
0: जी
1: और बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो

0: काम करने जाता है, उनके जिम्मे बहुत सारे काम हैं। तो वो घर भी संभालती हैं,
1: जी
0: बच्चों को भी ध्यान देना है, और ऊपर से फिर अपना जो काम है वो भी नियमित रूप से करते रहना है। ऐसे में वो अपने स्वास्थ्य को अमूमन नजरअंदाज करती हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
1: पहले तो हम अपनी देश की नारी शक्ति को हम प्रणाम करना चाहेंगे कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी शायद ही कोई उठा सकता है। और रही बात उनको खुद की, अपने स्वास्थ्य की, तो हम तो कह रहे हैं कि मैक्सिमम जो हमारी गृहिणियाँ हैं, हमारी नारी शक्ति हैं, वो अपने पर ध्यान नहीं रखती हैं, ध्यान ही नहीं दे पाती, क्योंकि कितना उनका व्यस्त जीवन रहता है सुबह से शाम तक का। बहुत से हमारे नारी शक्ति हैं जो कि घर का भी काम करती हैं, ऑफिस का भी काम करती हैं, उनको भी हम कहना चाहेंगे कि 24 घंटे में 20 मिनट अपने लिए समय कैसे भी निकालें, क्योंकि इस शरीर से ही पूरा संसार है, इस शरीर से ही पूरा घर परिवार है, समाज है, सोसाइटी है, इस शरीर से ही है। तो अपने शरीर के लिए थोड़ा समय निकाल कर सुबह या शाम जब भी समय मिले, नहीं कुछ तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज 5 मिनट ध्यान शुरू करें, तो उससे क्या है कि उनको, महिलाओं को बहुत ज़्यादा चैलेंजेज होते हैं, तरह
0: जी,
1: तरह की
0: मन भी कई बार अशांत रहता है।
1: अशांत रहता है मन, और सब मन से ही सारी चीज़ें होनी है, और बहुत से ऐसी जो व्याधियाँ हैं कि उनको बहुत जल्दी परेशान करती है, गायनोलॉजिकल हुआ या इससे बहुत सी चीज़ें हैं, तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है जो योग, मेडिटेशन और
0: क्या
1: प्राणायाम।
0: महिलाएं सूर्य नमस्कार कर सकती हैं?
1: क्यों नहीं कर सकती, बहुत अच्छे से कर सकती हैं, करती हैं,
0: जी
1: लेकिन ज़्यादा एज के हैं उनको सावधानी रखनी पड़ेगी, और जो भी करें सीख करके योगा इंस्ट्रक्टर या गुरु के सानिध्य में करके करें, करती हैं सब, यंग हैं नारी शक्ति, तो सूर्य नमस्कार भी कर सकती हैं, 20 मिनट 25 मिनट करके पूरे दिन स्फूर्ति से काम कर सकती हैं।
0: लेकिन किसी इंस्ट्रक्टर की निगरानी में करना ज्यादा अच्छा
1: हाँ,
0: है।
1: सीख लें तो वो बेहतर है, क्योंकि
0: जी
1: योग अगर सही किया गया तो गुणनफल में फ़ायदा होता है,
0: जी
1: अगर गलत किए तो गुणनफल में उसका नुकसान भी हो सकता है,
0: जी
1: तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि गुरु के सानिध्य में रह करके सीख के करें।
0: चलते चलते आप हमारे श्रोताओं से विश्व योग दिवस पर क्या कहना चाहते हैं, और उसके बाद, क्योंकि आप बांसुरी भी बजाते हैं, तो हम सबसे अंत में आपका संगीत भी सुनेंगे। पहले विश्व योग दिवस पर आप अपनी बात कहिए जो हमारे श्रोताओं से आप कहना चाहते हैं।
1: हम अपने सभी विविध भारती के सभी श्रोताओं को हम ये कहना चाहते हैं, ये जो योग महोत्सव का जो पर्व चल रहा है हमारे देश में 100 दिन का, और 21 जून को हम लोग अंतिम महोत्सव का मनाएंगे, और ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि लोग 21 जून को ही ज़्यादातर लोग योग करते हैं, उसके बाद बहुत से लोग छोड़ देते हैं।
0: मतलब हर साल 21 जून को करते
1: 21 जून को
0: हैं
1: साल में एक बार ही करते हैं, पूरे जोश से सब बढ़िया टी शर्ट खरीदेंगे, बढ़िया ट्रैक वगैरह खरीद के
0: हाँ
1: योगा मैट भी खरीद लेते हैं,
0: हाँ
1: तो एक दिन करते हैं उसके बाद फिर रख देते हैं।
0: जी
1: तो हम अपने विविध भारती के तरफ से हम सभी श्रोताओं को, पूरे विश्व के सभी लोगों से आह्वान करना चाहेंगे, केवल 21 जून को ही न करें,
0: जी
1: पूरे वर्ष भर करें, हर दिन योग अपने जीवन में अपनाएं और स्वस्थ और सुंदर बने रहें, यही हमारी श्रोताओं से हमारा निवेदन है।
0: और
1: और
0: अब हम आपसे बांसुरी सुनना चाहेंगे।
1: जी, हम बांसुरी सुनाएंगे श्रोताओं को, और इस बांसुरी धुन के साथ में हमारे श्रोता आराम से बैठ जाएंगे, अपनी अपनी आंखें बंद करेंगे, तो थोड़ा सा मेडिटेशन हमारी बांसुरी की धुन पर, आंखें बंद करके श्वास लें, श्वास अंदर श्वास बाहर, अपने श्वास को देखना है
0: जी
1: और इस मधुर बांसुरी के साथ ध्यान करना है।
0: बिल्कुल।

0: बहुत ही मीठी बांसुरी की धुन आपने सुनाई और हमारे जो श्रोता हैं उन्होंने इस धुन के सहारे ध्यान जरूर किया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पालघर पीठाधीश भारत भूषण भारतेंदु जी, आप विविध भारती में आए और आपने योग के इतने सारे गुर हमें बताए और उसके महत्व पर प्रकाश डाला। फिर से योग दिवस की शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हमारे विविध भारती के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। आप विश्व योग दिवस पर यह विशेष प्रस्तुति सुन रहे थे जिसमें योगीराज भारत भूषण भारतेंदु से आपके इस दोस्त यूनुस खान ने बातचीत की और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जुबैर खान ने। इसी के साथ आज का मैटिनी शो यहीं खत्म होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में अपने पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंची। ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति के आगमन पर उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज अपना 68वां जन्मदिन मना रही हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी आज पहाड़पुर गांव पहुंचेंगे। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने गांव का दौरा करेंगी। वे पवित्र संथाली जहेरा और हो जहेरा उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही कौशल विकास केंद्र और पहाड़पुर स्कूल का दौरा भी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े जनसभा कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे ऊर्जा अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रूपये से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारी पुख्ता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज पश्चिम बंगाल दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन दावों को खारिज किया है जिनमें कहा गया था कि कुछ मीम्स को लेकर विरोध दर्ज कराने के लिए चीन ने भारत के राजदूत को तलब किया था। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ये दावा पूरी तरह से झूठा और निराधार है। अमेरिका और ईरान के बीच अगले दौर की वार्ता के लिए अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। ये वार्ता कल शुरू होनी थी लेकिन लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जारी संघर्ष के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। बाद में दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमरीका और ईरान के बीच होने वाली इस नई वार्ता में संभावित परमाणु समझौते पर चर्चा होने की उम्मीद है। विश्व भर में कल 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। संस्कृति मंत्रालय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और योग परंपराओं को दर्शाते हुए देश भर में 100 स्थानों पर विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

पराया धन, ये था फिल्म का नाम। किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे, आनंद बख्शी ने इसे लिखा, आर डी बर्मन की तर्ज थी। आज यादों की महफिल में आपको वो गीत सुनवा रहे हैं जहां कहीं ना कहीं इंतजार है, मुलाकात है।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल, और अंतराल पर जाने से पहले आप सुन रहे थे खानदान फिल्म से गीत। लता मंगेशकर की आवाज में नक्श लायलपुरी ने उसे लिखा और खयाम का संगीत था।

अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे विजय पथ फिल्म से। जमीर काजमी ने इसे लिखा था, अनु मलिक का संगीत। यादों की महफिल में आज वो गीत जहां कहीं इंतजार है, मुलाकात है और प्यार है।

0: फिल्म पाप से इस गीत को अभी आप सुन रहे थे, अनु मलिक ने संगीत दिया था।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा

0: कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

हरिहरन और सुखविंदर सिंह की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे ताल फिल्म से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और A.R. रहमान का संगीत। अगला गीत आपको सुनाने जा रहे हैं दिल्ली 6 इस फिल्म से। ऐश किंग की आवाज, प्रसून जोशी ने इसे लिखा, A.R. रहमान का संगीत।

विशाल मिश्रा और रूप कुमार राठौड़ की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे बॉर्डर टू से। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, अनु मलिक और मिथुन का संगीत।

अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे, समीर ने इसे लिखा, अंजाम फिल्म से इसे लिया गया था। इसके साथ ही ये प्रोग्राम यादों की महफिल यहीं संपन्न होता है।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। प्रोग्राम है सुरीला सफर और आज इस सफर में मैं रहूंगी आपके साथ अनुराधा। मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। जैसे कि आप जानते ही हैं कि आज के इस प्रोग्राम में एक इबारत या जिसे कहते हैं टेक्स्ट, उसे पोस्ट किया जाता है फेसबुक पेज पर और आपको शब्द चुनने होते हैं। साथ ही साथ ये बताना होता है कि उस इबारत में से जो शब्द हैं उनमें से कौन से गीत बन रहे हैं जो आज इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तो आपके प्यार भरे संदेश, प्यार भरे गीतों की लिस्ट हम तक पहुंच चुकी है और आपने शब्द भी बहुत सारे खोज लिए हैं। हालांकि इबारत बहुत छोटी थी लेकिन उसमें शब्द बहुत सारे थे, तो आपने वो खोज लिए हैं, मैं पढ़ चुकी हूं और शुरुआत करते हैं हमारे इस प्रोग्राम की। लेकिन उससे पहले हम उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, हम ये इबारत फिर से पढ़ देते हैं। इबारत कुछ इस तरह से थी, रिमझिम ये बारिश, बादल का समा, जमीन ने चुपके से छू लिया आसमान, रुनझुन सी आहट, एक सपना सा आया, एक लड़की की मुस्कान में दिल खो सा गया, हाथ में खिलता गुलाब और रोशन एक दिया और दिल का दीवाना कुछ कह ना सका, उस पल लगा जैसे यही है जहां, वो बारिश, वो जमीन, वो आसमान। तो ठीक है, आप बताइए मुझे कौन कौन से गीत इनसे आपको लगता है कि आज के इस लिस्ट में शामिल होंगे। और ये भी देखते हैं कि आपकी और हमारी गीतों की लिस्ट कितनी मिलती जुलती है। लेकिन ये बात तो जरूर है कि एक गीत ऐसा है जो बार बार कमेंट्स में आया है और जब भी बारिश की बात होती है, सावन की बात होती है, रिमझिम की बात होती है, वो गीत सबसे पहले जुबान पर आता है। तो उसी गीत से शुरुआत की जाए।

रिम झिम गिरे सावन। जी हाँ, लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत योगेश का लिखा हुआ, आर डी बर्मन की तर्ज और मंजिल फिल्म से अभी मैंने आपको सुनवाया। और सबसे ज़्यादा चाहने वाला, सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला ये गीत आपके कमेंट्स में भर भर के था। और भी गीतों की बारी आएगी, लेकिन आपके संदेश ले लेते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की छोटी सी सुंदर सी इबारत, जब रिमझिम बारिश बादलों और आसमान के बीच एक खूबसूरत एहसास जन्म लेता है, रिमझिम गिरे सावन, वो तो हम ले चुके हैं। बारिश याद दिलाती है बचपन की, जब बेफिक्र से बारिश के बादलों के साथ उड़ने को जी चाहता था। और प्रकृति में हर तत्व का संतुलन है, मौसम तब तक अधूरा है जब तक झमाझम बारिश ना हो जाए। लेकिन बारिश की कमी अभी थोड़ी लग रही है, थोड़ा इंतज़ार ज़्यादा करवा रही है बारिश, लेकिन आपके जो मैसेजेस हैं वो भी एक खूबसूरत बरसात लेकर आई है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि सबसे पहले तो मैं विविध भारती का वो फेमस गीत जो हर समय हर मौसम में बजता है, बहुत ही लाजवाब सुंदर गीत है, रिमझिम गिरे सावन, उसके बारे में लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता है, वो लिखते हैं कि बारिश शुरू नहीं हुई लेकिन विविध भारती के सुरीले सफर में बारिश और गीतों के बौछार की बारिश बड़े तेज हवा के साथ आगे चल रही है और ये सफर पूरा करना चाहते हैं हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। रिमझिम बारिश और भीगा आसमान छाएगा सुरीला सफर में। और एक और श्रोता हमारे हैं जिन्होंने लिख भेजा है कि आपकी इबारत ने सचमुच बरसात की बूंदों की तरह मन को भिगो दिया है। ये पंक्तियां प्यार, प्रकृति और संकोच के खूबसूरत मिलन की तस्वीर दर्शा रहा है। बारिश का मौसम और जमीन आसमान का जुड़ाव एक रूहानी माहौल बनाता है। शब्दों की ये रूहानी बुनावट और मोहब्बत का मुकम्मल एहसास दिल को छू लेने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, शुरुआत इस खूबसूरत गीत के साथ और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, बारिश की बात हुई है तो इसी से जुड़ा कुछ सवाल लेते हैं। जब बात बारिश की आती है, बरसात की आती है, पहली बरसात की आती है किसी खास के साथ, तो वो एहसास ही बहुत स्पेशल, बहुत खास होता है। तो आपकी कुछ पहली बरसात की यादें आप ताज़ा करना चाहें तो लिख भेजें, बहुत ही कम शब्दों में, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके संदेश पढ़ सकूं। तो बारिश के रूहानी एहसास, पहली मुलाकात या कुछ ऐसा जो बारिश में आपको याद रह गया हो, मुझे लिख भेजिए।

फिल्म दर्द से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। नक्श लालपुरी ने इसे लिखा और खयाम का संगीत था। बारिश बरसात से जुड़े आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच चुके हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि कल तो हमारे यहाँ इतनी रिमझिम बारिश हुई, सुबह 8 से 10 तक मूसलाधार वर्षा हुई और पानी चारों तरफ भर गया। एक तरह से रेनी डे ही हो गया और कोई कहीं ऑफिस ही नहीं जा पाया। अच्छा है ना, आपको छुट्टी मिल गई इसी बहाने। एक और श्रोता लिखते हैं कि जैसे ही ये पहला गीत बजाया हमने, वैसे ही बहुत मज़ा आ गया क्योंकि रिमझिम से यही गीत उन्हें सबसे पहले याद आता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, इसी गीत पर पिछली बारिश के दिनों में हम मुंबई आए हुए थे। मरीन ड्राइव और समंदर किनारे में और मेरी धर्मपत्नी एक छाता लेकर चल रहे थे। बारिश हो रही थी और इस गीत पर बेटी ने वीडियो भी बनाया था और हमारी हाइट भी लगभग वैसी है जैसी इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और मौसमी चैटर्जी की है। जी हाँ, ये छोटे छोटे से पल हमेशा याद रहते हैं और कहीं ना कहीं ये वीडियो बनाना, फोटोज़ खींचना, कहीं ना कहीं ये याद बहुत ही मीठी यादें रहती है और ऐसा ज़रूर करना चाहिए जब भी वक्त मिले। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि मंजिल फिल्म का गीत बजाकर बस एक आस जग रही है। यहाँ पर 44 डिग्री तापमान में झुलस रहे हैं और आसमान देखते हैं, बादल तो नहीं दिख रहे, बस आग बरस रही है। कहाँ से आपने ये मैसेज संदेश भेजा है हमें ये भी लिखिए और वहाँ का मौसम कैसा है हमें ये भी लिखिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि बूंदों से भिगोने वाली शानदार गीत से आपने आरंभ किया है और ये विविध भारती का बहुत ही फेमस गीत है, हमेशा बजता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बारिश हो या ना हो, लेकिन ये गीत सुनते ही बारिश के बूंदों से हम भीग जाते हैं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज तो मौसम और प्रकृति से संबंधित विषय पर ही चर्चा होगी और इन्हें लगता है कि बारिश, जमीन, खुशी, अपनापन ये विषय हो सकते हैं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि बचपन में गांव में जब वे थे तो पहली बारिश में खेतों से उठती सौंधी खुशबू मदमस्त मादक माहौल बना देती थी। जी हाँ, ये सौंधी खुशबू बहुत कुछ याद दिलाती है। तो आप मुझे लिख भेजिए कि आप कहाँ से हमें संदेश भेज रहे हैं, वहाँ का मौसम कैसा है, बारिश हुई है, कुछ छींटे बरसे हैं या फिर कैसा तापमान है, और आपकी बारिश से जुड़ी यादें ज़रूर मुझे भेजिए। लेकिन साथ ही साथ कई यादें बहुत अच्छी भी होती है और कई यादें थोड़ा सा परेशान भी कर देती है, तो आप इस तरह के किस्से भी लिख सकते हैं मुझ तक।

अमित कुमार की आवाज में गीत तेरी कसम फिल्म से आनंद बख्शी ने लिखा, आर डी बर्मन का संगीत था। और आपके बारिश में भीगे खत मुझ तक पहुंचे हैं, या यूं कहें मैसेजेस पहुंचे हैं, डिजिटल खत कह सकते हैं इसे, जो संदेश आप मुझ तक पहुंचा रहे हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिमझिम गिरती बूंदों और मिट्टी की सौंधी महक के बीच बारिश में हुई वो हमारी पहली मुलाकात आज भी जहन में ताज़ा है। अचानक आई तेज बौछार से बचने के लिए हम दोनों एक ही छोटे से शेड के नीचे आकर खड़े हुए थे, और एक तरफ आसमान से बरसता पानी था, दूसरी तरफ हमारे बीच की वो अनकही झिझक। हवा के ठंडे झोंकों के साथ जब हमारी नजरें मिली तो बिना कुछ कहे ही एक अनजाना सा जुड़ाव महसूस हो गया। बहुत ही खूबसूरती से आपने उस मुलाकात को लिखा है, और सचमुच एक कहानी जो है वो नज़र आ रही है, इस कहानी को और आगे बढ़ाया जा सकता है। बहुत ही खूबसूरत संदेश है ये। हमारे दूसरे श्रोता लिखते हैं कि आजकल बारिश सिर्फ नाम की होती है, रिमझिम बारिश नहीं होती, एक झटके में आंधी तूफान के साथ आती है और चली जाती है। हमारे श्रोता एक और हैं जो लिख रहे हैं कि ये कागज़ की कश्ती, ये बारिश का पानी, जब भी बारिश की बात आती है तो कागज़ की कश्ती चलाने का बचपन में अपना एक महत्व रहता था, वो उन्हें याद आता है। और गज़ल सुनना चाहते हैं, देखते हैं आज की लिस्ट में क्या क्या गीत शामिल हैं। एक और श्रोता हमारे हैं जो इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं हम सफ़र में चल रहे हैं, बेटी कार चला रही है और हेडफोन से सुरीला सफ़र का आनंद ले रहे हैं। हमारे एक श्रोता अपनी परेशानी, अपनी चिंता यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वैज्ञानिक लोग ना जाने किस किस चीज़ की भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं, और ऐसे में हमारे प्राण अटक जाते हैं। कई सालों बाद ऐसे होने जा रहा है और बरसात बहुत कम हो रही है, किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, और ये जो मानसून अटका पड़ा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, इससे खेती को बहुत ज़्यादा उस पर प्रभाव पड़ेगा और न जाने क्या होगा। देखिए कुछ चीज़ें हमें छोड़ देनी चाहिए भगवान के ऊपर, है ना, बस जैसे जो आ रहा है उसे उसी तरह के तरीके से उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बस यही है। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं सूरत गुजरात से, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बारिश नहीं हुई है और ऊपर से चिलचिलाती गर्मी है, आपके बारिश के गाने अलग हैं तो अब हम क्या करें। आप गीत सुनिए और आनंद लीजिए। हमारे को श्रोता कहते हैं कि मैं नागपुर महाराष्ट्र से लिख रहा हूँ, और यहाँ तक अभी बारिश का लेश मात्र स्पर्श तक नहीं है, मानो आसमान से आग बरस रही है। एक और श्रोता हमारे बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ लिखते हैं कि एक खत लिखा था बादलों को, भीगा भीगा सा जवाब आया अभी। बहुत ही खूबसूरत। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, और ये जो बारिश का मौसम है जिसने हमें दीवाना बना रखा है, उस पर ये गीत।

जापानी लगती। ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है और ये बारिश भी दीवानी लग रही है क्योंकि हमें बहुत सारा इंतजार करवा रही है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि पुणे में तो अब तक बारिश का नाम ही नहीं है और बाहर चिलचिलाती धूप है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन साथ ही एक दूसरे श्रोता लिखते हैं कि मौसम चाहे कैसा भी हो, सुरीला सफ़र में जो मौसम होता है वही आसपास हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता हमारे हैं जो लिखते हैं कि बारिश के दिनों में मेरी बेटी और मेरी देवरानी की बेटी दोनों छोटी थी, दोनों हाथ पकड़कर छत पर जा रही थी, उनको बारिश में भीगना है पर सब उनको मना कर रहे थे। वो छाता लेकर बड़ा सा और भीगती गई और बहुत देर तक आनंद लेती रही और थोड़ी देर के बाद छतरी बंद करके खूब भीगी और फिर खूब मज़े किए।

ये बचपना उनका देखकर हम सब हंस दिए। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के पुंज से लिख रहे हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पर मौसम बहुत सुहावना है, बारिश भी होती है, गर्मी भी होती है, लेकिन तापमान 27-28 के बीच ही रहता है। कुल मिलाकर प्रकृति का भरपूर आनंद लेते हैं। हमारे एक और श्रोता है जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ लिखी हैं, जाने कैसी ये बारिशों की मनमर्जियाँ हैं, कहीं जमकर बरसना कहीं बस अर्जियाँ हैं, है बेबस सब इनके आगे। मेरे गांव के आसमां से यूं तो रोज गुजर रहे हैं बिना बरसे ही बादल, न जाने कैसी ये बारिशों की खुदगर्जियां हैं। बहुत ही खूबसूरत संदेश है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी श्रोता लिखते हैं कि अभी तक संदेश नहीं लिख पाए क्योंकि कहीं बाहर थे और अभी घर पहुंचे हैं, अभी माँ ने भोजन दिया है और साथ ही साथ संदेश भी लिखेंगे। साथ ही एक और श्रोता है वो लिख रहे हैं कि मैं गा रहा हूँ, मेरी श्रीमती जी गा रही हैं, रेडियो के सभी श्रोता गा रहे हैं, विविध भारती गा रही है और ये सुहाना सफ़र में उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे एक और श्रोता है वो अयोध्या से हमें संदेश भेज रहे हैं कि यहाँ पर तापमान चढ़ा हुआ है, मई में एक दो बार बारिश हुई, जून का 20 दिन इंतज़ार में गुजर चुका है लेकिन बारिश नहीं हो रही है, कभी कभी एक दो बार आंधी की कुछ फुहारे पड़ी है, जून 9 के बराबर है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि लव स्टोरी फिल्म से ये जो गीत उन्होंने सुना, इसमें जब ये रिलीज हुई थी उसके बाद नायक और नायिका की लोकप्रियता कुछ इस कदर बढ़ चुकी थी, इतने लोकप्रिय हो गए थे वो, ऐसा जादू चल गया था कि लड़का लड़की शब्द आम बोलचाल भाषा का हिस्सा बन गया था और ये बहुत ही खूबसूरत गीत उन्हें लगता है उस दौर की मासूम मोहब्बत और कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर जाता है। हमारे एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि ये गीत बहुत ही पसंद आ रहा है उन्हें और अभी उनके शहर में बारिश नहीं आई है, बारिश के गीत तो बहुत सारे हैं और कुछ गीत उन्हें याद नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, आप गीत सुनिए जो हम आपको सुनवा रहे हैं और आनंद लीजिए इस प्रोग्राम का जिसका नाम है सुरीला सफ़र।

मैंने प्यार किया, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे थे आप ये गीत। असद भोपाली ने इसे लिखा और राम लक्ष्मण का संगीत था। हमारे श्रोता लोग जो हैं वो हमें मौसम के बारे में बता रहे हैं। जालंधर सिटी में तापमान 37 डिग्री है इस वक्त। एक और श्रोता है, वो लिखते हैं कि मेरे बेटी, दामाद, बेटा और नाती वैष्णो देवी घूमने गए हैं और सूचना मिली है कि वहाँ का मौसम बहुत ही हसीन, सुंदर और ठंडक से भरा हुआ है। जी हाँ, वहाँ पर गर्मी के वक्त भी बहुत अच्छा मौसम होता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि चिलचिलाती धूप में बारिश के गाने सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे फिजिक्स के एग्जाम में केमिस्ट्री के प्रश्न आ गए हों। हमारे एक श्रोता ने अपना किस्सा साझा किया है कि धुआंधार बारिश में एक बड़ी ही दर्दनाक घटना हो गई थी। वो नए नए डाक विभाग में सिलेक्ट हुए थे और नासिक शहर से थोड़ी दूरी पर एक गांव में उन्हें जाना था। बाइक से अप डाउन करते थे, बीच में एक नदी थी जिस पर एक पुल हुआ करता था और बारिश के दिनों में ऑफिस की छुट्टी होने पर वो निकल पड़े। ऑफिस की छुट्टी होने पर, अच्छा, जब ऑफिस ख़त्म हुआ तो निकल पड़े और ज़ोर से बारिश हो रही थी और पुल पानी पर चढ़ चुका था और ऐसे में जब वो क्रॉस करना चाह रहे थे उसे, तो बहाव इतना तेज़ आया कि बाइक समेत पानी में धकेल दिया गया पानी के बहाव ने उनको। और गनीमत है कि अच्छा तैराक होने के नाते वो किनारे तक पहुँच गए, लेकिन बाइक बह गई। जी हाँ, ये परेशानी तो होती ही है, लेकिन अच्छी तैराकी ने आपको बचा लिया। और सचमुच कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर इंसान को सीखना ज़रूरी होता है और होना चाहिए, शौक के तौर पर भी, और एक पैशन भी होता है जो ऐसी ऐसे जब सिचुएशन आती है तो ऐसे में हमको बचा भी लेता है। एक और श्रोता है, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी है कि शायद कोई ख्वाहिश रोती रहती है, मेरे अंदर बारिश होती रहती है। अहमद फराज की लिखी पंक्तियां हैं ये। एक और श्रोता है, वो कहते हैं कि 10 गीतों की लिखी हुई इबारत में से 8वें नंबर पर ये गीत शामिल हुआ है और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। और इस गीत में लता मंगेशकर ने ये पगला है, इन शब्दों को बहुत ही अलग अलग तरीके से गाया है और गौर से सुनने लायक है। जी हाँ, अजमेर से हमारे श्रोता लिखते हैं कि बारिश तो नहीं है, रिमझिम बारिश, हल्की फुल्की बारिश ही हो रही है और काले बादलों का समा है आसमान में बन रहा है और थोड़ी बहुत खुशी आती है पल भर की लोगों के चेहरे पर कि बारिश होगी, लेकिन काले बादल टाटा बाय बाय करते हुए निकल लेते हैं। इंदौर से हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिमझिम गाने सुनने के लिए बादल आ गए हैं, सुबह धूप थी लेकिन अभी अचानक मौसम में बदलाव आ गया है और ऐसा लग रहा है कि वो भी हमारा मौसम, हमारे जो प्रोग्राम है वो सुन रहा है और इसीलिए तब्दीली आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इस प्रोग्राम में, अगला गीत।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म बेताब से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और आरडी वर्मन की तर्ज थी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे हमसफर के साथ में पहली बारिश बाराखंबा गया था और वहां दोनों भीग गए थे। दोनों ने एक साथ चाय पी और सचमुच ही वो पहली बारिश मुझे हमेशा याद रहेगी। अभी उनकी हमसफर उनके साथ नहीं है, लेकिन विविध भारती का साथ सदैव ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि धूप ने धरती को कितना तपाया है, अब हर नजर ने बादलों को बुलाया है। खंडवा की राहों में बस यही अरमान है, बरसे मेघ झूम कर, यही सबका इंतजार है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत संदेश। सुरीला सफर का अंदाज बहुत कुछ बयां कर रहा है। इस खूबसूरत गाने के साथ शुरू हुआ आज का कार्यक्रम। सचमुच बारिश आने वाली है और हमारे यहाँ तो पहली बारिश हो चुकी है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है और प्रकृति को झूमते हुए देख मन भी बड़ा प्रसन्न हो जाता है। और ये हमें संदेश भेज रहे हैं इच्छावर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश का। एक और श्रोता लिखते हैं कि बारिश से मच्छर बहुत आते हैं रात को और दिन में मक्खियाँ, और दोनों में कंपटीशन लगा हुआ रहता है और इंसानों को परेशान करने का, तो इन सभी से ज़रूर बचें। बिल्कुल, जो भी ज़रूरी एहतियात है उसे बरतें और ज़रूर ज़रूर बचें इन सब चीज़ों से, क्योंकि बारिश तो है ही लेकिन साथ में बीमारियाँ भी इस मौसम में बहुत ज़्यादा आती है, तो अपना ध्यान रखें। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के जो गीत हैं ये लोगों को सुकून दे रहे होंगे, कहीं ना कहीं ऐसा उन्हें लगता है क्योंकि गीत उन्हें पसंद आ रहे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि भीगना तो तय है, चाहे बारिश में हो या गर्मी में। अभी दुकान पर काम करते करते हमारी बातें सुन रहे हैं वो, और बाहर घने बादल छाए हैं, दुकान के अंदर पसीने से भीग रहे हैं वो। 2019 की एक बात कहते हैं एक श्रोता, और उन्होंने लिखा है कि अगस्त महीने में पटना में इतनी बारिश हुई थी कि पूरा पटना बारिश से डूब चुका था, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। और सबसे ज़्यादा दिक्कत जो हुई वो पानी पीने की हुई। पीने का जो पानी था उसकी बहुत दिक्कत हुई, वो नहीं मिल पा रहा था और जहाँ तहाँ कैसे करके इंतज़ाम किया गया मोहल्ले में, और कोई गाड़ी भी नहीं आ पा रही थी उस वक्त। तो ऐसे में ये कुछ चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं परेशानी देती है। जी हाँ, इन सब का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि बारिश के फुहारों के साथ हंसी के सुरीले फुहारे तब निकले थे जब साथ में मेरी हमसफर थी और पैदल चलते हुए फोल्डिंग छतरी तेज हवा के कारण आधी ऊपर की तरफ हो गई थी। हम भीग भी रहे थे और हंस भी रहे थे। बहुत ही खूबसूरत संदेश। और अब ये गीत इस फेहरिस्त में।

मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में गीत बीवी हो तो ऐसी इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। समीर ने इसे लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। इसके साथ ही हम बढ़ चले हैं इस प्रोग्राम की समाप्ति की ओर। आपके मैसेजेस मुझ तक बहुत से आए हैं, मैंने कोशिश की है कि सबके मैसेजेस पढ़ूं, सबके संदेश पढ़ूं, लेकिन हमारे श्रोता लिखते हैं कि एक बार ओले बरस रहे थे, साइज भी उनका ठीक ठाक था, फोन से वो पिक ले रही थी और उनकी गर्दन पर एक ओला आकर गिरा जो कि बहुत पेनफुल था। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि उन्हें अपने जीवन साथी के साथ बाइक पर बारिश में भीगते हुए घूमना बहुत पसंद था, लेकिन अभी वो ऐसा नहीं कर सकती हैं। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि आपके गीतों के साथ बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्दी यहाँ पर बारिश भी हो जाएगी। जी हाँ, बहुत खूबसूरत संदेश है। और लेकिन अब समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। आपने आज का ये सफर तय किया अनुराधा के संग। इजाजत चाहती हूँ इस प्रोग्राम से जिसका नाम है सुरीला सफर।

आज त्रिवेणी की धाराएं मिलेंगी विवाह पर। एक बिटिया घर में जन्म लेती है और धीरे धीरे बड़ी होती है। माता पिता का दिल हर मोड़ पर उसकी बलाएं लेता है। छोटे छोटे हाथों से रोटी बनाती बिटिया, गुड़ियाओं से खेलती बिटिया धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। बचपन की पायल की वो छुन छुन धीरे धीरे लुप्त हो जाती है और बिटिया के विवाह का समय आ जाता है। जिन गालों में अब तक दूध का उजाला भरा था, अब सिर पर चुनर डालते ही वो गाल सुर्ख लाल हो जाते हैं। सस्ती समरती दुल्हन रस्म दर रस्म किसी और की होती चली जाती है। माता पिता के मन में अनेकों सवाल उभरने लगते हैं कि नया घर हमारी बिटिया को उतने ही प्यार से तो अपनाएगा ना, लाड़ों का वर ढूंढने में हमने कोई कमी तो नहीं रखी ना, हमारी बिटिया खुश तो रहेगी ना। ऐसे तमाम सवालात के बीच बारात आ जाती है।

विवाह के समय लोग कई सारी तस्वीरें खींचते हैं, पर माँ पिता और दुल्हन के मन की तस्वीर अगर कोई ले पाता तो जान जाता कि उनके मन में कितनी उथल पुथल चल रही है। कहीं उम्मीद की धूप है तो कभी अनजाने भय का कोहरा, कभी भीगी भीगी से जुदाई की फुहार है तो कभी आंखों में नमी, कभी अपने कलेजे के टुकड़े को विदा करते माता पिता कई सवालों से घिरे होते हैं। इन तमाम बातों के बीच बिटिया नए घर के लिए विदा होती है। जाते समय आशीष की पोटली भी उसके साथ जाती है, जिसमें होती है कई सारी सीख और नसीहतें। उस घर को अपना बनाने की सीख, मान और प्रतिष्ठा को सहेजने की सीख, सबको अपना बनाने की सीख। भावों की लहरों पर सवार होकर वो बाबुल का घर छोड़ देती है।

ले। विवाह यानी एक जीवन का प्रारंभ, एक नया संसार। ये जितना स्त्री के लिए नया है उतना ही पुरुष के लिए भी होता है। दोनों के मन में कई सपने और कई अपेक्षाएं होती है। शादी के बंधन में दो परिवारों का मिलन होता है। खुशहाल शादीशुदा जीवन के लिए सभी के स्नेह और सामंजस्य की जरूरत होती है। ये बंधन बना रहे और आगे चलकर सुखद परिणाम दे, इसके लिए घर के अन्य लोगों का सहयोग भी अपेक्षित होता है, नहीं तो ये बंधन टूटने में देर नहीं लगती। समझदारी और सहजता के साथ साथ सात फेरों के इस बंधन को प्रेम से लबरेज रखा जा सकता है। हाँ ये संभव है, हाँ ये संभव है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिला स्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू अपने 68वें जन्मदिन के अवसर पर अपने गांव में हैं। ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया।
1: उड़ीसा के आदिवासी इलाकों तक पहुंचने की एक अहम कोशिश के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मयूरभंज जिले में अपने गांव पहाड़पुर गई। प्रधानमंत्री ने पवित्र सांथाली जोहरा और जो जहरा पूजा स्थलों पर प्रार्थना की और स्थानीय आदिवासी समुदाय के लोगों के बातचीत के, जिससे उन्हें उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर और SLS मेमोरियल स्कूल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के दिशा में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ये दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनके गांव में उनका साथ शामिल हुए। इन कार्यक्रम से आदिवासी सशक्तिकरण, शिक्षा को बढ़ावा देने और समावेश विकास के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को पता चलता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब रायरंगपुर के डांडाबेस में उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहां प्रमुख क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
0: इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस समय प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: प्रवति परिदा जी, उड़ीसा के मंत्री गणेश जी खुंटिया जी, कृष्णचंद्र महापात्र जी, सांसद नवाचरण माझी जी, मनमोहन सामल जी, बैजन पांडा जी, अन्य महानुभाव भाई और बहनों, हमारा ओडिशा इन दिनों उत्सवों के आनंद में डूबा हुआ है। यहां का गण पर्व रज पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारियां भी पुरजोश चल रही है। मयूरभंज के बारीपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना की 3 जहाजों INS धुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा, सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। ये भारत की रक्षा जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया।
2: मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर आज अपनी भगवी ध्वजा के साथ खड़ा हो। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो औरंगजेब ने तो

0: कॉरिडोर बन रहा है और अब अंबाबाई का कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू हो गया।
1: इसके बाद गृह मंत्री इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसे विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे

0: संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग पर एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
2: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें, और इस बार के योगा के ऊपर ये डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उनको हम बहुत अच्छे की तरह से मैनेज कर सकते हैं, और ये प्रूव हो चुका है।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्लोवाकिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि स्लोवाकिया में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय दूतावास और अन्य संगठन राजधानी ब्रातिस्लावा और अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
3: स्लोवाक रिपब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारतीय दूतावास का मुख्य कार्यक्रम ब्रातिस्लावा शहर में आयोजित किया जाएगा। दूतावास मशहूर ब्रातिस्लावा कैसल में भी एक योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने बताया कि दूतावास परिसर में हर दिन 2 योग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, और अब पूरे स्लोवाकिया में सैकड़ों योग प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई स्लोवाकिया यात्रा के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से स्लोवाकिया में योग को और मजबूत करने के रास्ते खुलने की उम्मीद है। स्मृति एस पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाइब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
4: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
0: भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल नई सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रूपये से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं।

0: सरकार ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण,
2: ये है विविध भारती। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: मोहम्मद रफ़ी और नंदा की आवाज़ों में गीत अभी आप सुन रहे थे। जब जब फूल खिले फिल्म का नाम था। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।
1: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

गीता दत्त की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे प्यासा फिल्म से। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और एसडी बर्मन की तर्ज थी। आप इस वक्त सुन रहे हैं विविध भारती से प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

0: लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजों में गीत आप मधुमति फिल्म से सुन रहे थे। शैलेंद्र ने इसे लिखा था, सलिल चौधरी का संगीत था।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।
4: मैं

मेरे महबूब इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और नौशाद का संगीत था। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे यहीं संपन्न होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। पहली पेशकश आपको सुना रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। आंखें फिल्म से हमने से लिया है, रवि का संगीत है, साहिर लुधियानवी ने से लिखा।

0: कभी कभी।
1: फिल्म आंखें से लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को सुनना चाहा था इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री, जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत सीमा साहू, सूर्यकांत राकेश साहू, शुभम सावित्री साहू ने। साथ ही शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन, परवीन, रोजी, बिट्टू, साजदा और हिना ने। और उल्लास, माफ कीजिए, अहिल्यानगर केड़गांव से भाऊ साहब नवथर, अक्षय, चंदन, जय कुमार और रुचिता ने इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी।

0: सुरेश वाडकर की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे प्रेम रोग फिल्म से, संतोष आनंद ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, और इसे सुनना चाहा था ककराला बदायूं उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसरूर खान, मोहम्मद सरफराज खान, अमजद अंसारी और समस्त परिवार ने, उल्लास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति और चेतन ने, जाखोद राजस्थान से पूजा खटक, बिमला देवी शंभू दयाल खटक ने।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे याराना फिल्म से। अनजान ने इसे लिखा, राजेश रोशन का संगीत था। इसे सुनना चाहा था कपाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता, हिमानी, हर्षिता और अभिषेक ने। जसपुर उत्तराखंड से रियात हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, शमरीन परवीन और मोहम्मद रिहान, माहिरा नूर ने इस गीत को सुनना चाहा था। गंगानगर बीकानेर से कैलाश सैनी, गोविंदा और उत्तम सोनी।

मोहम्मद रफी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे धरती फिल्म से। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। इसे सुनना चाहा था रमाकांत शर्मा, मीनाक्षी रवि और अक्षय शर्मा ने जालंधर से, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, सुनीता शर्मा और माया कुमार ने।

कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाजों में गीत आप सुन रहे थे हम है राही प्यार के इस फिल्म से। इस गीत को सुनना चाहा था छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, केआर साहू, अश्विनी कुमार, गणेश राम ने, अमर सिंहपुरा बीकानेर राजस्थान से सिकंदर अली खान और उनके परिवार ने, और भिलई छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या हेमलता और डिम्पल देवांगन ने। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम मन चाहे गीत यहीं समाप्त होता है।

0: ये है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं आलोक भट्टाचार्य के मूल बांग्ला नाटक का हिंदी अनुवाद, मृत्युहीन प्राण। हिंदी अनुवादक दीप नारायण मिठोलिया, निर्देशक सुदर्शन कुमार। आइए आज सुनते हैं इस नाटक का पहला भाग।

0: सांझ होती जा रही है, इस पार्क में अकेले अकेले। लगता है सचमुच बेंजामिन का सिर फिर गया है। पता नहीं उसकी ऐसी कौन सी गुप्त खबर है जिसे वो मुझसे ही भिजवाना चाहता है। आखिर ये गुप्त खबर हो क्या सकती है? अभी तक किसी का भी कोई पता नहीं, और मैं यहाँ झूठ मूठ। चली ही जाऊं अब।
1: जिनी।
0: हाँ?
1: जिनी।
0: कौन? बेंच।
1: खामोश। आहिस्ता, इधर इस तरफ,
0: लेकिन
1: इस झाड़ी के पीछे।
0: आखिर मामला क्या है बेंच, इतना छिपा? मुझे तो डर लगने लगा है।
1: तुम्हारे डरने की कोई बात नहीं है जिनी, हमारे यहाँ पहुँचने की खबर पुलिस को पहले लग गई है, इसलिए प्रोग्राम में कुछ चेंज करने पड़े हैं।
0: बेंच, डर सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, तुम्हारे लिए भी है।
1: जिनी, तुम फौरन उस बेंच पर जाकर बैठ जाओ।
0: अच्छा।
2: जुडू, बात क्या है? इसी पार्क के पश्चिम वाले गेट की बाईं ओर उनकी मीटिंग होने की बात है। वक्त शाम के 4 बजे का था, पर अब तो सांझ हो चुकी है, कहीं कोई एक भी बदमाश नजर नहीं आया।
3: सर, फिलिप्स ने कहीं हमें गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी?
2: नहीं, फिलिप्स गलत इन्फॉर्मेशन देने वाला आदमी नहीं है। मुझे लगता है जुडू, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है शायद उसकी भनक उन्हें पहले ही लग चुकी है। सच, इन्हें गिने कुछ काले कुत्तों पर अभी तक हम काबू नहीं पा सके हैं। This disgraceful on our part.
3: उस बेंच पर कौन बैठा है? कोई लड़की है शायद, क्यों?
2: हाँ, वही तो देख रहा हूँ।
3: हाँ, बड़ी हिम्मत वाली मालूम पड़ती है छोकरी।
4: ए लड़की, यहाँ अकेली क्या कर रही हो?
2: लुक छिप कर कुछ प्यार मोहब्बत करने आई हो शायद? हाँ,
0: नहीं नहीं, मतलब यूं ही जरा घूमने आई थी, बस मैं घर ही जा रही हूँ।
2: ठहरो। कितनी देर से तुम यहाँ बैठी?
0: जी बस थोड़ी देर से, मतलब सांझ से।
2: सांझ से, बस जी थोड़ी देर से, और अब इस सांझ ठेले तक।
0: जी मैं घर जा रही हूँ।
3: तुमने यहाँ कोई मीटिंग होती देखी है?
0: मीटिंग नहीं तो नहीं देखी।
2: मीटिंग मतलब ऐसी कोई खास बात नहीं है, कुछ लुच्चे लफंगे छोकरों की जमात, और क्या।
0: नहीं नहीं, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं देखा यहाँ। अच्छा तो अब मैं चलूं?
2: हाँ हाँ, जाओगी?
0: जी।
2: जाओगी क्यों नहीं। अच्छा, क्या तुम कॉलेज में पढ़ती हो?
0: जी हाँ।
2: कविताएं पढ़ती हो? मान लो जैसे बेंजामिन मोलाइश की कविताएं पढ़ती हो?
0: हाँ पढ़ती हूँ, बहुतेरे पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा लिखते हैं।
2: उसे जानती भी हो?
0: बेंजामिन को? अब बेंजामिन को भला जानूंगी कैसे?
3: वो ऐसा कोई खास रिप्यूटेड कभी नहीं है शायद।
0: अच्छा तो अब मैं चलूं।
2: हाँ जाओ जाओ।
3: मिस्टर थॉमसन, बेंजामिन मॉलेज क्या बहुत ही डेंजरस एलिमेंट है?
2: आदमी के हिसाब से डेंजरस है कि नहीं मालूम, बट हिज पेन, उसकी कलम बंदूक से भी ज्यादा खौफनाक है, और कविताएं तो जबरदस्त खतरनाक।
3: ओह।

0: हाँ, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है, मृत्यु के अधरों छिपी है, सही शब्द नहीं सूझ रहा, मृत्यु के अधरों छिपी। हाँ माँ, माँ।
1: क्यों रे बेंट, क्या बात है, क्यों बुला रहा है?
0: माँ जल्दी से जरा इधर तो आना,
1: सूप उतार कर अभी आती हूँ, जरा रुक।
0: मुझे सही शब्द चाहिए ही, समय बहुत कम है, बस कुछ एक दिनों के बाद सोयोटो दिवस स्मरण का प्रोग्राम है, इसी बीच इसे प्रेस में भी देना है।
1: क्या बात है बेंच, क्यों बुला रहा था?
0: माँ सुनो, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधूरों छिपी है, ये मृत्यु के अधूरों छिपी है के बाद क्या शब्द होगा?
1: इसके बाद क्या होगा, अरे किसका क्या होगा?
0: माँ सुनो ना, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है, ये छिपी है के बाद क्या शब्द होना चाहिए?
1: मुझे नहीं मालूम, जाने क्या ऊटपटांग बके जा रहा है।
0: ऊटपटांग नहीं है माँ, सुनो, मृत्यु का मतलब नहीं है अंत सृजन का, मृत्यु में है सार्थकता सार जीवन का, मृत्यु देती प्रेरणा प्रतिकार करने की, जुल्म का अन्याय का संहार करने की।
1: चुप कर चुप कर, दीवारों के भी कान होते हैं।
0: नहीं माँ, अब चुप रहने से काम नहीं चलेगा, अब तो मजबूत गले से अपनी आवाज बुलंद करने का वक्त आ गया।
1: नहीं बेंच, ऐसी बातें मुंह से ना निकाल, देखता नहीं देश भर में दिन पर दिन कैसी कैसी घटनाएं घटती जा रही हैं।
0: मैं तो देश के बाहर नहीं हूँ माँ, घटनाएं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे हमें भी। खैर छोड़ो इन बातों को, पहले मेरी कविता के लिए जरा शब्द तो बताओ।
1: कविता के लिए शब्द?
0: हाँ।
1: अच्छी बात है, तो फिर अपनी लाइन और एक बार बोल।
0: सुनो, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है, इसके आगे?
1: मृत्यु के अधरों छिपी है श्वास जीवन की।
0: श्वास? कोई और शब्द बोलो माँ, कोई दूसरा शब्द बोलो ना।
1: संतरास।
0: संतरास? इस शब्द में जाने कैसी भीरुता मिश्रित नीचता की गंध है माँ, ये तो कायरों की निशानी है।
1: अधरों प्यास शब्द जोड़ता है। हाँ तो फिर इसे लिखो, मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की।
0: और राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल ठीक शब्द है माँ, सच माँ, माँ हो माँ, तुम कवि बेंजामिन मोलेस की सचमुच की माँ हो, एक बहुत बड़ी कवित्री, बहुत बड़ी माँ।
1: अरे छोड़ भी, पागल कहीं
2: वासी।
0: जीनी?
1: आ बेटी अंदर आ जा, बता क्या खबर है, तेरे माँ बाप सभी अच्छे हैं ना?
2: हाँ मौसी, सभी अच्छी तरह से हैं।

0: का सुनाने के लिए अभिलाष, संधि क्षण में पहुंचकर वे हुए घोर हताश। क्रूर निर्मम दानवी निर्लज्ज पंजों में जकड़कर सीसा उंडेला गर्म आंखों में। यह नहीं प्रतिवाद या संवाद की वेला, ये असह्य अन्याय हमने किस कदर झेला। रक्त रंजित राह पर बढ़कर करो जय घोष, सुप्त मन में रह न जाए उबलता आक्रोश। मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की।
1: वाह वाह, क्या बात है बेंच, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। यू आर नाउ अ पोएट एंड इन टाइम यू विल बी अ ग्रेट पोएट बेंच।
0: हाँ, वो पढ़ते हैं मेरी कविताओं को, इसीलिए तो मुझे छुप छुप कर भागते रहना पड़ रहा है।
1: हाँ
0: हाँ, हकीकत यही है। खैर, अच्छा बताओ, इकोनॉमिक्स का कौन सा चैप्टर पढ़ोगी?
1: कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ूंगी, पढ़ने नहीं आई हूँ।
0: अरे, पढ़ने नहीं आई हो तो फिर किस लिए आई हो?
1: किस लिए आई हूँ, क्यों आती हूँ, क्या तुम नहीं जानते?
0: नहीं,
1: कुछ भी नहीं समझते।
0: बताओगी नहीं तो समझूंगा कैसे?
1: सारी बातें मुंह से कही नहीं जा सकती बेंच, समझ लेनी पड़ती है। क्यों तुम्हारी बातें सुनने के लिए भागी चली आती हूँ? क्यों तुम्हारी कविताएं मुझे बेचैन कर डालती हैं? क्या तुम मेरी आंखों की भाषा पढ़ नहीं पाते?
0: जिनी, तुम्हारी दृष्टि मेरे सीने में एक अजीब लहर सी पैदा कर देती है, मेरी कविताओं को अनुप्रेरित करती है, पर केवल इस तरह की अनुभूतियों को लेकर झूठ मूठ समय बर्बाद करने का वक्त अभी नहीं है जिनी।
1: झूठ मूठ समय बर्बाद क्यों करेंगे बेंच? पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम एक दूसरे की अनुभूतियों को सच कहकर स्वीकार ही ना करें।
0: देखो, दिल की बात दिल में ही रहे तो ठीक है, क्या जरूरत है उसे बाहर सबके सामने खड़ी कर स्वीकृति जताने की?
1: बेंच,
0: तुम तो जानती हो मैं खतरनाक राहों का राही हूं। मेरी स्वीकृति का मतलब ही है तुम्हारे ऊपर अतिरिक्त खतरे का बोझ लाद देना। सो मैं वैसा कतई नहीं करना चाहता जिनी।
1: बेंच, तुम्हारे लिए डर से दिन रात मेरा कलेजा कांपता रहता है। भारी बूटों की आवाज कानों में आते ही मैं चौंक चौंक जाती हूँ।
0: मेरे लिए तुम्हारी छाती डर से कांपती है, तभी तो मेरा सीना हिम्मत से फूल उठता है जिनी।
1: जरा सावधानी के साथ चला फिरा करो, भेड़िए तुम्हारे चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। तुम ही तो मेरी आंखें हो बेंच, तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मैं बिल्कुल अंधी हो जाऊंगी, मैं बिल्कुल अंधी हो जाऊंगी बेंच।
0: जिनी हाथ छोड़ो, शायद मां आ रही हैं।
1: अच्छा, तो मैं जा रही हूँ मौसी, अब मैं चलती हूँ।
2: लिखाई पढ़ाई हो गई?
1: हाँ मौसी, हो गई।
2: अरे, थोड़ी चाय तो पी कर जा।
1: नहीं, आज रहने दो मौसी, कुछ जल्दी में हूँ, मैं चलती हूँ।
2: बड़ी प्यारी लड़की है,

0: सर बहुत ही भला लड़का है। जहां तक मुझे खबर मिली है बेंजामिन मॉलियस जैसा लड़का उस मोहल्ले में दूसरा और कोई है ही नहीं। लिखाई पढ़ाई स्वभाव चरित्र।
1: विल यू स्टॉप चिडू?
0: यस सर, यस मिस्टर थॉमसन। मैं तो
1: कुछ नहीं जानते तुम। उसकी लिखी कविताएं पढ़ी हैं तुमने?
0: नहीं, पर मैं
1: कविताओं का हर शब्द एक एक बुलेट है और उन सब का इस्तेमाल किया गया है श्वेत सरकार यानी हम लोगों के खिलाफ।
0: पर बात ऐसी है सर कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली
1: सारी
0: है।
1: गलत है। बेंजामिन मोलाइज भला लड़का है, उन ब्लैक स्वाइनों के लिए, हमारे लिए नहीं। इस बात को याद रखो।
0: यस सर।
1: तुम्हें पता है हमारे सबसे ज्यादा वफादार इन्फॉर्मर फिलिप सिलेपी का इन लोगों ने ही खून किया है।
0: अच्छा, इनकी इतनी हिम्मत, तब तो

0: फौरन उनके खिलाफ कार्रवाई ना करने से दूसरों का मनोबल टूट जाएगा सर।
1: यस, चारों ओर से कॉम्बिंग अभियान शुरू कर दो, कॉले कुत्तों का एक भी पिल्ला बच ना निकले।
0: ओके सर।
1: मेरा नाम थॉमसन है, स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के थॉमसन द टेरर को भला कौन नहीं जानता। हमारे लोगों पर हाथ उठाकर सोचा है बच निकलोगे बच्चों? सारा कुछ जलाकर राख कर डालूंगा। कमान चलो।
0: यस सर।

0: जेम्स, इतनी रात में भला कौन आया होगा?
1: मैं तो तुमसे कहना ही भूल गया बापू, आज जोहान्सबर्ग गणतंत्र फ्रंट की एक मीटिंग होगी यहाँ, लगता है वही सब आए हैं, देखता हूँ।
0: तो जेम्स तुम भी?
1: हाँ बापू, मेरे जैसे हजारों हजार लड़के अपनी जिंदगी को दांव पर लगाए जूझ पड़े हैं जिस स्वाधीनता की लड़ाई में, उस लड़ाई में मैं भी शरीक हूं बापू। आइए आइए मिस्टर जैकब। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार मिस्टर खापड़कर।
2: नमस्कार।
1: बेंस, अंदर आ जाओ ना।
2: माँ, हम तुम्हारे वही बेटे हैं, इस बार जीवन की आशा को लौटा लाए हैं, अटल विश्वास का एक कमल खिलाया है माँ।
3: ये क्या तुम्हारी कविता है बेंच?
2: नहीं, एंगोला के प्रसिद्ध कवि ऑगस्टिनो नेटो की है।
1: अरे तुमसे परिचय तो करवा दूं, ये मेरे पिता मिस्टर जोसेफ पिस्से हैं, और आप हैं हमारे संगठन शाखा के नेता टॉम्स जैकब।
4: नमस्कार।
5: नमस्कार।
1: और आप रॉबिन खापड़कर हैं, इनके जिम्मे ही नाटाल प्रदेश का नेतृत्व है।
4: नमस्कार।
5: नमस्कार। खापड़कर माने भारतीय वंश के?
1: हाँ बापू, ये भारतीय वंशोद्भूत हैं।
5: अच्छा अच्छा, बैठे आप लोग बैठे।
1: बाबू जी, बेंजामिन को तो तुम जानते ही हो।
5: अरे इसे वाला नहीं जानूंगा मैं। अच्छी तरह से जानता हूँ। यही तो है हमारा कवि सिपाही, जिसके कलम से फूट निकलती है काले लोगों के रुदन खून पसीने से लिखी कविताएं।
2: नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए, भला मुझमें इतनी ताकत कहाँ?
6: अरे भाई, किसकी ताकत कितनी है और वो कहाँ छिपी रहती है, इसे वो खुद भी नहीं जानता।
2: देखिए, अब इस तरह से मुझे ऊपर ना उछालिए मिस्टर जैकब, मैं तो मातृभूमि का एक मामूली अदना सा सेवक हूँ।
5: अच्छा भाई, तुम लोग बातें करो, मैं जरा चाय का पानी चढ़ा।
1: ठीक है बापू। बापू, पानी जरा ज्यादा ले लेना, और भी चार पांच जने आएंगे।
5: अच्छा।

0: आज भी नहीं आया बेंच। आज 5 दिन होने को आए और बेटे को घर लौटने की फिक्र तक नहीं। इधर शहर भर में पुलिस वालों ने उथल पुथल मचा रखी है। ईश्वर जाने बेंच क्या करता है, क्या सोचता है, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता।
1: मौसी, मौसी।
0: जिन्नी, आओ बेटी, आओ इस कमरे में चलो, आओ बैठो।
1: बेंच की कोई खबर मिली मौसी?
0: अरे मुझे कैसे खबर मिलेगी बेटी, मैं तो तेरे भरोसे ही बैठी हूँ। कोई खबर मिली?
1: मुझे तो कोई खबर नहीं मिली,
0: पर क्या
1: न जाने वो पूछो।
0: जिनी बता बेटी, क्या खबर है मेरे लाल की? बेंच कहाँ है, कैसा है?
1: ऐसी कोई बात नहीं है मौसी, जरूर ठीक ठाक ही होगा। वो एक मीटिंग।
0: मीटिंग? किसकी मीटिंग?
1: अफ्रीका नेशनल कांग्रेस की गुप्त शाखा की एक मीटिंग है, शायद बेंच वहीं गया होगा।
0: ये मीटिंग कहाँ है?
1: अब ये तो नहीं मालूम मुझे मौसी।
0: मीटिंग, गुप्त समिति?
1: हाँ।
0: इधर उस पुलिस जासूस फिलिप्स के खून होने के बाद से भेड़ियों की नजरें चारों ओर घूम रही हैं। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ होगा, कैसा होगा।
1: जरूर अच्छा होगा, ठीक होगा मौसी, निश्चित रूप से सही सलामत होगा। उसे कुछ नहीं हो सकता, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जरूर अच्छी तरह से होगा, जरूर राजी खुशी होगा, है ना मौसी?
0: तुम ठीक कहती हो बेटी, मेरा बेंच जरूर राजी खुशी है, राजी खुशी ही रहेगा। हाँ।

0: इस वक्त हमारी स्वाधीनता की लड़ाई जनयुद्ध में बदल चुकी है और यही वजह है कि स्वाभाविक रूप से हमारी जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई।
1: इसी सिलसिले में मिस्टर जैकब, मेरा ये निवेदन है कि आज अपनी गुप्त शाखा गठन के पूर्व इतिहास की जानकारी सबको दे दी जाए, क्योंकि हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, हालांकि उनके लिए भी ये सब कुछ जानना जरूरी है। मैं समझता हूँ इसी क्षण इस बात को भी निपटा लेना उचित होगा। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है?
2: बिल्कुल, मिस्टर रॉबिन खापड़कर का सुझाव एकदम सही है,
3: लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि हम स्वाधीनता संग्राम के मूल स्रोत से कहीं कट ना जाएं, खासकर आम जनता से कहीं दूर ना हो जाएं।
0: तो फिर सुनिए, सन 1952 में चंद काले लोग पैदल चलकर श्वेत आदमियों के खेलकूद के लिए सुरक्षित इलाके में घुसे थे, रंग भेद नीति के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। उस दिन की उस घटना ने धीरे धीरे आगे चलकर सारे राष्ट्र में अहिंसक प्रतिवाद का रूप ले लिया,
1: और उस प्रतिवाद के कंठों को दबोचने के लिए शार्पेविले की सरकार ने एक जघन्य तरीका अपनाया था।
0: हाँ, 700 राउंड गोली चली, 67 लोग मरे और 186 घायल हुए। उसके बाद ही केवल अफ्रीका की राष्ट्रीय कांग्रेस ने उमखंटो उइसिजुई अथवा राष्ट्रीय बख्तरबंद के नाम से एक सशस्त्र वाहिनी गठित करने का प्रस्ताव पारित किया।
3: कौन कौन कौन हो सकता है?
4: कौन है?
3: कौन कौन है? अरे, ये तो जोन्सबर्ग के नेता मिस्टर रोयंगा की आवाज है। जेम्स, जल्दी से दरवाजा खोलो।
2: अरे, कैसे हुआ ऐसा?
3: क्या बात है?
2: क्या हुआ? ओ, इतना खून!
3: खून ये क्या? किसने ऐसा किया?
5: पुलिस ने।
3: पुलिस ने?
5: ईश्वर, यहाँ आने के लिए निकला था, बाद में मालूम हुआ कि कर्फ्यू लग गया। चक्कर काट कर गलियों से आ रहा था कि अचानक देखा अफसर टॉमसन अपने दलबल के साथ सामने मेरी ओर चला आ रहा है।
2: ओह, तब तो उन्होंने आपको जरूर देख लिया होगा।
5: हाँ, देख ही लिया था, तभी तो चेस किया मुझे। मैं ऊंची दीवार फांद कर इस ओर भागाया, लेकिन इसके पहले एक गोली लगी मेरे पैर में।
2: पकड़ो पकड़ो, ठहरिए, पहले पहले मैं ये बैंडेज बांध दूँ।
3: बांधो बांधो। देखो, जैसे भी हो, रोयंगा को अभी इसी वक्त डॉक्टर मॉरिस के पास ले जाना होगा।
1: कंधे के सहारे चल सकेंगे ना?
5: जरूर चल सकूंगा।
3: तो फिर बस अब चलिए, और देर करना ठीक नहीं। आइए, पीछे वाले दरवाजे से निकलकर बाईं ओर नहर के रास्ते से चले जाइए। देखो, ईश्वर इनकी रक्षा करे। जेम्स, बेटे, अब हमें क्या करना चाहिए?
2: बाबू बाबू, दरवाजा जरा देर से खोलना।
3: अच्छा, आता हूं आता हूं आता हूं।
6: हैंड्स अप!
3: आप लोग
6: जुलूम अंदर देखो, ये जल्दी क्विक, कहां है ये सब?
7: तो आप ही जोसेफ पिस्से हैं?
3: जी हाँ सर।
7: ये कौन है? सर, वो लड़का है, क्या नाम है तुम्हारा?
3: जी, जेम्स पिस्से।
8: टॉयलेट का दरवाजा खुला है, लगता है उसी ओर से भागे।
3: आखिर मामला क्या है सर? कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा है।
7: हाथ नीचे कीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। बताइए, अभी अभी पैरों में गोली खाकर जो छोकरा आया था कहां गया?
3: यहां तो कोई भी नहीं आया सर।
7: शट अप! झूठा कहीं का। किधर है वो शैतान?
8: नहीं सर, उस तरफ कोई नहीं है।
3: मैं सच कह रहा हूं सर, यहां कोई नहीं है।
7: मैं भी तो सच ही जानना चाहता हूं। तुम्हारे दोस्त के खून के दागों ने हमें ठीक जगह पर पहुंचा दिया।
8: मिल गया सर।
7: क्या मिल गया?
8: जख्म पर पट्टी नहीं बांधी गई है, ये रही खून में सनी रुई, तभी खून के दाग और पीछे की ओर दिखाई नहीं पड़ रहे।
7: यू आर राइट
8: सर। इसके अलावा इस कमरे में इन दोनों को छोड़कर और भी कम से कम 5 जने थे। अभी कुछ एक मिनट पहले उन लोगों ने यहाँ बैठकर चाय की चुस्कियां ली हैं। ये देखिए, चाय के 7 कप पड़े जो अभी भी ठंडे नहीं हो पाए हैं।
7: तो मिस्टर जोसेफ पिस्से, अब जरा बताइए तो सही, आपने अपने उस मेहमान

0: का कहां चालान कर दिया
1: जी?
0: समझ तो रहे हैं, हम सब कुछ जान चुके हैं।
2: नहीं नहीं जी, मतलब हाँ सर, अभी थोड़ी देर पहले एक आदमी उधर।
3: हम लोग उसे बिल्कुल नहीं जानते सर।
0: मैंने तुमसे नहीं पूछा है।
4: ये आकाशवाणी है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल जिला हुगली के तारकेश्वर में आयोजित एक समारोह में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही कई अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही में माननीय प्रधानमंत्री इस अवसर पर किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त भी जारी करेंगे। आइए आपको सीधे कार्यक्रम में लिए चलते हैं। विवरण दे रहे हैं सिद्धार्थ कुमार सिंह और वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
5: श्रोताओं, आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज है पश्चिम बंगाल दिवस। और ये दिन 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की याद दिलाता है, जिसके तहत बंगाल के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना। और आज पश्चिम बंगाल दिवस के दिन देश के किसानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज पीएम किसान उत्सव दिवस भी मनाया जा रहा है, जिसके मुख्य कार्यक्रम का आयोजन तारकेश्वर में किया गया है। आपको बता दें कि तारकेश्वर, जो कि पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित है, इसे बाबा धाम या शिव का शहर भी कहा जाता है, जहां पश्चिम बंगाल दिवस के साथ साथ आज का दिन पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर अब से कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करेंगे। और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ सिंह, और मेरे साथ हैं मेरे साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
6: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, अ ग्रेट डे फॉर द स्टेट ऑफ बंगाल, अ ग्रेट डे फॉर द फार्मर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द कंट्री, अ विकसित बंगाल, अ विकसित भारत, अ डेवलप्ड बंगाल, अ डेवलप्ड इंडिया। The resolve to make the country a Viksit Bharat, a developed India by 2047, to make the lives of the people of our great nation safe, successful and sustainable, to help and assist our farmer brothers and sisters have the lives that they have always dreamt of. This is the mission of the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, who has made a vow to make India world-class, the India of our dreams and aspirations. Prime Minister Sri Narendra Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan scheme to the eligible beneficiaries on the 20th, that is today, which is also the West Bengal Day, because it was this day that the West Bengal state was founded. From Tarkeshwar, located in Hooghly district in West Bengal, the event will be organized by the Ministry of Agriculture, Government of India, with the support of the Government of West Bengal. An amount exceeding 18,880 crore will be transferred directly into the accounts of over 9.44 crore farmers in the 23rd installment. Over 2.18 crore women farmers will receive the benefit during the 23rd installment. Siddharth, truly a day to celebrate India of tomorrow, truly a day to celebrate the vow that the Prime Minister had made to the people of the nation that yes, India will be developed, India will be the India of our dreams, and we will never ever leave our farmer brothers and sisters behind.
5: बिल्कुल वैभव, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में जैसा कि संकल्प लिया है माननीय प्रधानमंत्री ने, और जिस तरह की बात चल रही है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। और आज जबकि अब से कुछ देर में माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करने जा रहे हैं, और आपको बता दें कि इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। और खास बात वैभव यहां की यह है कि इस किस्त से 2 करोड़ 18 लाख से अधिक महिला किसान लाभान्वित होंगी। तो ये एक वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं वैभव, या महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसमें भी एक बड़ा कदम है। और आपको बता दें कि जैसा कि पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, अकेले पश्चिम बंगाल में ही 45 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में 900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जा रही है, जिसमें राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के अंतर्गत कुल जो वितरण राशि यहां पर है वो 15000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी। और ये भी बता दें कि 2019 में योजना के शुभारंभ के बाद देश से भर में कुल वितरण राशि जो थी 4.46 लाख करोड़ थी और उससे ज्यादा हो गई। अब तक 22 किस्तों के माध्यम से लगभग 4,28,000 करोड़ रुपए देश के करीब 9.5 करोड़ किसानों के खाते में सीधे हस्तांतरित किए जा चुके हैं। तो वैभव, ये एक जहां एक ओर हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसान सशक्तिकरण की भी बात चल रही है, क्योंकि जैसा कि सरकार का उद्देश्य है कि प्राथमिकता हमारे प्रधानमंत्री की किसानों को आगे रखना, किसानों को लेकर इस विकास यात्रा को आगे रखना है।
6: Absolutely, Siddharth, to make the incomes of the farmers go double and triple. When the country develops, we have to take care of every person in the nook and corner of the country. The policy or the basis of the foundation of all the missions, which is Antyodaya. When we keep the last man in mind, we always keep the fact in mind that yes, we have to grow the country, we have to make the country develop, but we have to keep each and every person in the policy, in its execution. We have to take everyone along. And today's event, Siddharth, will be graced by the esteemed presence of course, the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi, and apart from him, the Governor of West Bengal, Sri Arun Ravi, the Chief Minister of West Bengal, winning a historic election, Sri Suvendu Adhikari, Sri Rajiv Ranjan Singh, the Union Minister of Panchayati Raj, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Sri Ashwini Vaishnav, Union Minister of Railways, Information Broadcasting and Electronic and Information Technology, Sri Shantanu Thakur, Union Minister of States for Ports, Shipping and Waterways, Sri Sukanta Majumdar, Union Minister of State of Education and Development of Northeast Region, Sri Samik Bhattacharya, Member of Parliament, among many other distinguished guests. And Siddharth, many schemes and many events have been organized across the state and the country in the district and block levels and gram panchayat levels with the support of the KVKs and local agriculture officers, celebrating the day of the release as PM Kisan Utsav Divas. Excitement across the people, farmers gathering at the event, continuous craning of the necks. They are all happy and they wish to see the Prime Minister and they wish to see the promises which the Prime Minister did come true.
5: बिल्कुल वैभव, जैसा आपने कहा कि यहाँ पर जो जनमानस है, माननीय प्रधानमंत्री जी अब से कुछ ही देर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे और यहाँ तारकेश्वर में गणमान्य अतिथियों के साथ विशाल जन समुदाय प्रधानमंत्री जी को सुनने और उनकी एक झलक पाने के लिए मानो उमड़ पड़ा है। और जिस तरह से बंगाल की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपना भरोसा व्यक्त करते हुए जिस तरह का विशाल मैंडेट दिया है, आज बंगाल की जनता अपने लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रही है। और जैसा कि हमने बताया कि आज इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल माननीय श्री आर एन रवि, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय श्री सुवेंदु अधिकारी, माननीय पंचायती राज एवं मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, माननीय रेल सूचना प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, माननीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री श्री तनु ठाकुर सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति यहां पर मौजूद हैं।
6: Absolutely, to see these ministers that the people are waiting for and the people have actually voted for these ministers who will now be gracing the stage. It's actually a very exciting day for everyone. It's not just the financial benefit that is being transferred. It's not just the fact that the PM had made a vow, he had made a promise, and that promise is being coming alive. That promise is, proving to be correct. But the fact that, yes, we are on a mission mode. We as a country, as a people, we are going towards the fact that we have to make this country develop. We have to make a Viksit Bharat till 2047. That's exactly the aim of the Honorable Prime Minister. More than 1 crore farmers are expected to connect to the main event via video conferencing at the Krishi Vigyan Kendra as the KVKs, ICAR institutes and universities, farmer producer organizations, agriculture mandis, PM Kisan Samriddhi Kendras, Prime Minister, Primary Agricultural Cooperative Society and State District gram panchayat level, village level functions. With the release of the 23rd installment, the total disbursement under the scheme will exceed 4.4 lakh crore since its inception on the 24th of February 2019. Siddharth, we have to agree to the fact that yes, everything that might be happening around the globe, This promise never loses its importance.
5: बिल्कुल. तो अब से कुछ ही देर में ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है. इससे पहले हम सुन लेते हैं अंग्रेजी में समाचार.

0: commanding lead. The score remained unchanged in the second half as Brazil controlled the match and secured all 3 points. And that is the end of this news bulletin.
1: जी हाँ श्रोताओं, हम लोग आपको दोबारा से तारकेश्वर लिए चलते हैं और इस समय आपसे कुछ ही देर बाद जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, सभी को बेसब्री से इंतजार है इस कार्यक्रम के शुरू होने का। और आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद खास है क्योंकि पश्चिम बंगाल दिवस हर साल 20 जून को मनाया जाता है। ये दिन 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की याद दिलाता है जिसके तहत बंगाल के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना। और तारकेश्वर का भी ऐतिहासिक महत्व रहा है। वैभव, अगर तो देखते हैं इसमें, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से 1947 में बंगाल विभाजन की रूपरेखा और निर्णय से जुड़ा है। ये 15 अप्रैल 1947 को तारकेश्वर में ही बंगई हिंदू महासभा का एक महत्वपूर्ण 3 दिन का अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पश्चिम बंगाल के गठन के लिए कदम उठाने के लिए आधिकारिक रूप से अधिकृत किया गया था और इसी ऐतिहासिक जनादेश के आधार पर डॉक्टर मुखर्जी ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा था। और आज पूरे पश्चिम बंगाल में ये दिवस पारंपरिक रूप से मनाया जा रहा है।
2: सिद्धार्थ, इन द ग्रेट वर्ड्स ऑफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, रेजिस्ट ऑप्रेशन एंड इफ नेसेसरी रिटेलिएट। These were the words of this great man who gave vision to the people of West Bengal that yes, we as part of India have to make India a Soni Ki Chidiya, that golden bird again. We have fought a long battle against the British Raj, against the colonial rule, and now it's time that we take things into our own hands and we make not just Bengal but the country great. And today's occasion, wherein we remember all those great years during the critical years of 1946 to 1947, Dr. Shyama Prasad Mukherjee exerted a powerful voice for safeguarding the interests of Bengal and its people. Strong public opinion emerged, demanding that the western part of Bengal remain within India. Tarkeshwar stands as a silent witness to that momentous chapter of history. On June 20th, 1947, this historic decision, as told by Siddharth, was taken, determining the future of Bengal, which later laid the foundation stone for the formation of West Bengal. This is a glorious history. This is a pride of heritage. This is a commitment to progress.
1: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने प्राइड की बात करी, तो इस वर्ष के पश्चिम बंगाल दिवस का विषय है पश्चिम बंगाल, विरासत, सद्भाव और विकास। राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि, सामाजिक एकता और विकासात्मक आकांक्षाओं को यह दिवस दर्शाता है। और अब से आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंग दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दिवस उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्म, विज्ञान, व्यापार एवं वाणिज्य, सामाजिक सुधार सहित अनेक क्षेत्रों में अपने अमूल्य योगदान से भारत के इतिहास को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल ने अनगिनत तरीकों से भारत की राष्ट्रीय चेतना को समृद्ध बनाया है। और जिस तरह की बात आज बंगाल के लिए बेहद खास है, और ये दिन उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला को एक नई दिशा दी वैभव। और बंगाल की जब भी बात होती है तो इस तरह से जिस तरह का पूरा बंगाल का हम देखते हैं कि वहां का साहित्य, वहां की कला, वहां की संस्कृति, और बंगाल अब विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है।
2: Absolutely, Siddharth. This is the promise with which the government has been formed in Bengal after years and years of injustice. Now we see that the government, and this will be a government which will be a government of a double engine. And today's function, Siddharth, is not just something that we are seeing for the first time. This is the 23rd installment. This is a direct transfer. We don't just see one promise, we see many promises together. We see an actual execution of the digital Bharat. We see no middlemen. We see direct transfers, financial benefits going into the hands of brother and sister farmers throughout the country. This is a place where an amount exceeding 907.21 crores will be transferred to over 45.35 lakh beneficiaries in West Bengal alone in the 23rd installment. Imagine the mammoth scale on which this PM Kisan Samman Nidhi is operating right now, and the mammoth

0: scale on which it is benefiting the farmer brothers and sisters in the country, along with the release of the 23rd installment, Siddharth, of PM Kisan Nidhi. The following schemes or the programs that will be launched will be Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, that is the restructured weather-based crop insurance scheme. The next one will be a digital agriculture mission. There will also be a national mission on natural farming, NNF, and the Pradhan Mantri Dhan Dhan Krishi Yojana, which was approved by the Union Cabinet in the July of 2025 and launched on the 11th of October 2025, an initiative aimed at accelerating agricultural growth in 100 districts characterized by low productivity, low cropping intensity, and limited credit flow. Imagine, we are taking so many steps. It's not just the credit flow that is going to the farmers, it's not just the money that is going to the farmers, it is also fertilizers, it is also the good quality of seeds, it is also the scientific research that is going on continuously in the country, which is helping the farmers gain momentum and be a part of this development journey.
1: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने बताया कि ये जो यात्रा है, ये ना सिर्फ योजनाओं की यात्रा है बल्कि किसानों को हर तरीके से सशक्त बनाने की यात्रा है. और आज प्रधानमंत्री जी कई केंद्रीय कृषि योजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं. इन योजनाओं में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत एग्री स्टैक, प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शामिल है. प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे हम PMFBY का नाम देते हैं, इसका शुभारंभ करेंगे, जिससे विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना का लाभ राज्य के किसानों तक पहुंचेगा. 2026-27 के दौरान इस पहल का उद्देश्य पश्चिम बंगाल राज्य में लगभग 14 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर लगभग 50 लाख किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करना है, जिससे लगभग 28,140 करोड़ रुपए के अनुमानित बीमित मूल्य की फसलों की सुरक्षा हो सकेगी और किसानों को पर्याप्त प्रीमियम सब्सिडी के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी. और इसके अलावा, जैसा कि वैभव हम जानते हैं कि डिजिटल जमाना है और जिस तरह से अभी ये सारी चीजें चल रही हैं, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत क्या होने वाला है, प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में एग्री स्टैक का शुभारंभ कर रहे हैं. इसके अंतर्गत उर्वरक वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली के अंतर्गत खरीद जैसी सत्यापित कृषि संबंधी सेवाओं के लिए एक एग्रीकल्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा. और ये पहल कृषि क्षेत्र में डिजिटल शासन को मजबूत करेगी और किसान केंद्रित सेवाओं के कुशल वितरण को सुगम बनाएगी. तो अब चीजें डिजिटली लोगों के पास पहुंच जाएंगी बहुत फास्ट.
0: एब्सोल्युटली, एज यू सेड, चीजें बहुत जल्द लोगों के पास पहुंच जाएंगी. And I want to say that it won't just be the procurement of things that will happen in a very smooth and a very functional way, but the whole line of credit. Once you get the raw material, which is of a good quality, which has been backed by scientific research, which has been done by great government institutions, huge amounts of money that has been invested into those, you get those raw materials into the soil, which is being continuously made fertile by more fertilizers, again, through natural and organic ways. Then you get the produce of those farms, you get them to the markets at a good rate, again, benefit to the farmers. And then when you get those rates, and when you have to improve, or let's say you have to develop your farms, you have to expand your farms, you get the credit facilities. So at each and every level of this whole line flow, you're getting support from the government. The kisan or the farmer brothers and sisters are getting support from the government, and that is exactly what should happen. That is the feeling, that is the concept of Antyodaya. When you include each and every person who is there in the nook and corner of the country, when you include everyone together in the development journey, that is exactly when you get a developed Bharat. That is exactly when you get a Vikasit Bharat.
1: बिल्कुल, विकसित भारत की बात आपने की है. और एक सरकार की एक जो नई पहल है, देश में जिस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज का निर्माण किया जा रहा है, जो मिडिल मैन की भूमिका है उसको खत्म किया जा रहा है, ताकि किसानों को सीधे मार्केट में एक अवसर मिल सके. आप ऐसा सोचिए कि वैभव, किसी गांव में बना हुआ कोई उत्पाद या देश के किसी सुदूर क्षेत्र में किसी किसान का जो प्रोड्यूस होता है या वो प्रोडक्ट होता है, उसको एक बाजार को उपलब्ध कराना सरकार की मंशा है कि देश में ज्यादातर जो कोऑपरेटिव्स को हम डेवलप करें, इस फॉर्म को डेवलप करें और ज्यादा से ज्यादा किसानों को इससे जोड़ें, ताकि एक एक जो व्यवस्था है वो डिजिटल रूप में उनको एक टेक्नोलॉजी मिले. जैसे आज आपने टेक्नोलॉजी की बहुत बात करी है,

0: जी हाँ, और इस समय हम देख पा रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का मंच पर आगमन हो रहा है और वो मंच पर पहुंच गए हैं और चारों तरफ से ये लोगों की आवाजें उनको अभिवादन करते हुए उनका स्वागत करते हुए लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है और
1: The Honourable Prime Minister on the stage sitting along with the Governor of West Bengal, Sri Arun Ravi, and the Chief Minister of West Bengal, Sri Suvindu Adhikari. People craning their necks now. The national anthem and the national song.

0: धन्यवाद.
1: Listen to that roar, Siddharth. Listen to those voices coming from Tarkeshwar. Look at those faces, happy faces, craning necks. So excited to see the Honorable Prime Minister. So excited to see their Chief Minister. And so excited for the fact that all the promises that were being made, that have been done, are now coming true, are now being seen, the face of execution. They know that all these things are coming true. And the Honorable Prime Minister getting up from his seat, along with the Governor of West Bengal and the Chief Minister of West Bengal.
2: जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री इस समय उनका स्वागत किया जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं इस समय और प्रधानमंत्री जी के साथ
0: अभिनंदन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी
2: जी माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री माननीय शुभेंदु अधिकारी जी
0: और सम्मान का प्रतीक है. पहले बाबा तारकनाथ जी की प्रतिकृति.
2: जी हाँ, बाबा तारकनाथ जी की प्रतिकृति उनको भेंट करते हुए और बंगाल में माँ दुर्गा का बहुत महत्व है और माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट देते हुए
0: और आइकॉनिक मिठाई रसगुल्ला यानी रसगुल्ला
2: और वह बंगाल का जो रसगुल्ला है वो तो पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है. उसको भेंट दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को.
0: जल भरा संदेश यानी संदेश के अंदर रस से भरा हुआ एक अनमोल मिठाई.
1: Siddharth, you should remember that this is not just a culmination of religion, it's not just a culmination of tradition, of legacy, of heritage, of sweetness, of all the things that now people are expecting from the government. The sweetness of those dreams and aspirations that the people have from the Honorable Prime Minister.
2: और वैभव उसकी मिठास यहाँ जो जन समुदाय है उसमें दिख रहा है. माननीय प्रधानमंत्री जी लोगों को संबोधित और इस समय मुख्यमंत्री महोदय जो है वो संबोधित करने के लिए आए हैं.
3: वंदे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी लौह प्रणाम. डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी लौह प्रणाम. भारत केसरी लह प्रणाम. स्वामी प्रणवानंद लह प्रणाम. सम्मानीय देशेर यशस्वी प्रधानमंत्री गोटा पृथ्वीर सबचेये जनप्रिय नेता जिनी 140 कोटी भारतवासीर हृदयेर अंतरेर आत्मीय जिनी निजे के प्रधानमंत्री बोलें ना प्रधान सेवक बोलें उनाके बाबा तारकनाथेर पुण्यभूमि तारकेश्वरे पश्चिमबंग दिवसे पश्चिमबंग सरकारेर पक्ष थेके आमी प्रणाम श्रद्धा एवं स्वागत जानाच्छि. আমাদের মধ্যে উপবিষ্ট আছেন এই রাজ্যের অত্যন্ত লোকপ্রিয় একজন রাষ্ট্রবাদী রাজ্যপাল, আমাদের সরকারের প্রধান পরিচালক সম্মানীয় আর এন রবিজি এবং জনতা জনার্দন.

0: अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे कृपया विभिन्न मंत्रालय की कुछ विशेष परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन तथा राष्ट्र को समर्पण करने की कृपा करें।
1: द रिलीज ऑफ द पीएम किसान Nidhi, the 23rd installment being done by the Honourable Prime Minister Sri Narendra Modi with a smile on his face and a confident handshake. Now, this has been released. Various beneficial scheme for the people of the country. Various schemes including infrastructure of railways, of roadways, of port developments, of fisheries, of highways. So many things together being released by the Honourable Prime Minister.
2: जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री ने कई सारी योजनाओं का शुभारंभ किया आज, और किस तरीके से लगातार यहाँ पे आप देख रहे हैं, और हम आपको बताना चाहते हैं कि इस रंगारंग कार्यक्रम के तुरंत बाद ये जो कई विकास जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं की शुरुआत की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने.
1: It relates to the goat production, the laboratories that are there. It relates to the ports that are being developed. It relates to the farmer producers that will be given a fair share in the market. All these things have been released now by the Honorable Prime Minister. The people craning their necks, happy to see the Prime Minister and happy to see the fact that the Prime Minister has delivered on each and every promise that he had made. And the one vision that is in mind is, of course, of Viksit Bharat, of a developed India by 2047.
2: Ji haan, Pradhanmantri, अभी लगातार कई सारी परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं, और अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की जो 23वीं किस्त का हस्तांतरण माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने रिमोट का बटन दबाकर किया, और इसके साथ ही ये किसानों के खाते में ये रकम पहुंच गई. आज 9 करोड़

0: 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए वो उनके खाते में पहुंचे हैं
1: एंड सिद्धार्थ More than 2 crore women beneficiaries are amongst those farmers who will be getting this direct transfer, this installment of PM Kisan Samman Nidhi. Imagine the level at which this scheme is now operationalized, is functional, is being executed. Imagine what is happening. And now the moment that everyone has been waiting for, everyone is now waiting for the fact that yes, the Honorable Prime Minister will speak his heart out and there he is on stage Prime Minister Modi
2: Mahadev Manch par virajman Rajpal RN Ravi ji yaha ke lokpriya aur urjawan mukhyamantri Shubhendu Adhikari ji anya sabhi mahanubhav और बंगाल के मेरे भाई और बहनों बाबा तारकनाथ और बंगाल की पुण्य भूमि पश्चिम बंग दिवस की ऐतिहासिक तारीख और इतनी बड़ी संख्या में आप सभी की उपस्थिति आज चुनाव और शपथ ग्रहण के बाद मुझे पहली बार आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है यहां के कण कण से एक नई खुशबू आ रही है ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है जैसे बंगाल का गौरव लौटने का आरंभ हो गया है आज का ये कार्यक्रम साक्षी है इन परियोजनाओं का शुभारंभ गवाह है कि हमारा बंगाल अपने नए भविष्य के निर्माण में जुट गया है बंगाल के लोगों के चेहरों की चमक गांव-गांव में खुशी और विश्वास का भाव मैं आपके इस आनंद में भागीदार बनने के लिए आया हूं आपका एक वोट एक चुनाव कितना कुछ परिवर्तन कर सकता है ये बंगाल में साफ साफ नजर आ रहा है परिवर्तन भालो लागे छे तो मैं इस अवसर पर बंगाल के लोगों को और सभी देशवासियों को इस आयोजन की पश्चिम बंग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं साथियों आज आप सभी की मैं स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए भी सराहना करना चाहता हूं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए जहां स्वच्छता होगी वही विकास भी उतना ही सुंदर दिखेगा मैं आपको स्वच्छता से स्वागत के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं साथियों इस बार पश्चिम बंग दिवस की ये तारीख और भी खास है आजादी के बाद बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए जो सपना देखा गया था, बंगाल की महान आत्माओं ने जो परिकल्पना की थी, आज एक तरह से पहली बार हम पश्चिम बंग दिवस पर उन सपनों को सच्चाई में बदलते देख रहे हैं। यह ऐतिहासिक तारीख पश्चिम बंगाल के विकास की प्रेरणा बने, हम एक नया और गौरवशाली इतिहास रचे। आज बीजेपी एनडीए सरकार में इसके लिए विकास के महाअभियान की शुरुआत हो रही है। साथियों, बंगाल में दशकों तक पहले लेप और फिर टीएमसी ने जो गड्ढे बनाए उन्हें भरने के लिए डबल इंजन सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं, रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में आज यहां सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूं। आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, गुलामी के दौर में हमारे बंगाल ने क्या कुछ नहीं सहा, कितने बलिदान दिए, कितने त्याग किए। 1946 में कोलकाता में हुई हिंसा, नोआखली के दंगे, कितने निर्दोष बंगाली मानुष, बंगाल के लोग उसकी भेंट चढ़ गए। भाइयों बहनों, बंगाल ने रक्तपात सहा, बंगाल ने अपनों को खोया, अपनी मातृभूमि के टुकड़े होते देखे, लेकिन बंगाल ने अपनी अस्मिता और पहचान को नष्ट नहीं होने दिया। इसी का परिणाम था जब पूरे बंगाल को भारत से अलग करने की साजिश हो रही थी, तब अलग पश्चिम बंगाल बनाकर उन मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया गया। हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति, यहां की मूल आस्था और परंपरा, तब अनेक संघर्षों के बाद बच गए थे और आज भी वो मूल्य, इस धरती के संस्कार आज पश्चिम बंगाल के रूप में न केवल सुरक्षित है

बल्कि जीवंत भी है। इसलिए पश्चिम बंग दिवस के रूप में हम केवल एक तारीख को याद नहीं कर रहे हैं, हम पूरे इतिहास को याद कर रहे हैं। हम हजारों साल पुरानी बंगाल की विरासत को नमन कर रहे हैं। साथियों, आज की पीढ़ी को हमें बार बार पश्चिम बंग दिवस की अहमियत बताने की जरूरत है। उस दौरान क्या हो रहा था, ये युवा पीढ़ी को जानना जरूरी है। जब पूरे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाए जाने की कोशिशें हो रही थी, तो कांग्रेस उन षड्यंत्रकारियों के सामने घुटने टेके पड़ी थी। और यही वो समय था जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। अप्रैल 1947 में उन्होंने ऐतिहासिक रिजोल्यूशन पास कराया। उन्होंने घोषणा की पूरा बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। इसके लिए बंगाली हिंदू होमलैंड मूवमेंट शुरू किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेघनाथ साहा, इतिहासकार आरसी मजूमदार, इतिहासकार जदुनाथ सरकार, सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय, बंगाल के ऐसे कितने प्रबुद्ध और प्रसिद्ध लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बने। जीडी बिरला जैसे उद्यमियों ने इसे आगे बढ़ाया। मतवा लीडर पीआर ठाकुर ने आगे आकर इस मूवमेंट को समर्थन दिया। अखबारों में लेख लिखे गए, इससे कहानियां लिखी गई। वंदे मातरम की भावना को एक बार फिर स्फुरित किया गया। बंगाल की जिस आवाज को मजहबी एजेंडों से दबाया जा रहा था, इस जन आंदोलन से वो स्वर फिर से मुखर हो उठे। इसी का नतीजा था भारत विरोधी लोगों को ये पता चल गया, पूरे बंगाल को भारत से तोड़ना नामुमकिन होगा। और पश्चिम बंगाल के रूप में ये हिस्सा मां भारती के साथ रह गया। साथियों, जिस भावना से पश्चिम बंगाल को बचाया गया था आजादी के बाद, उसी भावना पर इसे आगे बढ़ाने की जरूरत थी। लेकिन दुर्भाग्य से ठीक इससे उलट काम हुआ। पश्चिम बंग दिवस और इसकी भावना को भुलाने की कोशिश हुई। सियासी एजेंडों के कारण इतिहास का व्हाइट वॉश किया गया। भाइयों बहनों, विभाजन के समय जो कांग्रेस बंगाल को लावारिस छोड़ना चाहती थी, विभाजन के बाद उसने बचे हुए पश्चिम बंगाल में भी तुष्टीकरण के खेल खेलने शुरू कर दिए। पश्चिम बंगाल के इस इतिहास को दबाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक बने, इसलिए उनके योग

अभियान को नकारा गया, जिस भावना को लेकर उन्होंने बंगाल के लिए लड़ाई लड़ी थी, उस विचार को भी खत्म करने की कोशिशें होती रही। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे जिस धरती का ऐसी महान संतानों से नाता रहा हो, उस पर विदेशी विचारधारा थोपी गई। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी, दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और संवारने की जगह इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया गया। जो बंगाल भारत के विकास का नेतृत्व कर सकता था, वो आगे बढ़ने की जगह पिछड़ता चला गया। साथियों, आज पश्चिम बंग दिवस पर हमारा कर्तव्य है, हम संकल्प लें, अब इतिहास की वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी। अब पश्चिम बंग दिवस से प्रेरणा लेकर नया इतिहास रचा जाएगा। साथियों, दशकों के कुशासन ने पश्चिम बंगाल को मीलों पीछे पहुंचा दिया है। आप सबने देखा है, पुरानी सरकारों के समय में कैसे हालात हो गए थे। यहां से बड़े उद्योगों का पलायन हुआ, छोटे उद्योग धंधे ठप पड़ते चले गए, युवाओं का रोजगार छिनता गया, संसाधनों पर घुसपैठियों का कब्जा होता चला गया। जो पश्चिम बंगाल कभी अवसरों की भूमि होती थी, वो पलायन का केंद्र बनती चली गई। इसी माहौल में आपने एक संकल्प लिया, टीएमसी सरकार को पलटने का, उसे हटाने का। आपने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, रिकॉर्ड सीटों के साथ हमें विजयी बनाया। और आज पूरा देश देख रहा है कैसे तुरंत ही इसका नतीजा भी बंगाल को मिलने लगा है। जिन अधिकार से आपको बरसों तक दूर रखा गया, आज वो हक आपके द्वार तक पहुंच रहा है। मैंने चुनाव के समय आपको आयुष्मान भारत योजना की गारंटी दी थी। जब बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत का लाभ मिलना तय हो गया है, माताओं बहनों को अन्नपूर्णा योजना का सीधा लाभ मिलना शुरू हो गया है, हर घर स्वच्छ पानी पहुंचे, इसके लिए भी पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच जल जीवन मिशन को लेकर एमओयू साइन हो गया है। हमने चुनाव के समय बंगाल के युवाओं से वादा किया था, वो वादा पूरा करते हुए नौकरियों में आयु की सीमा में ढील दी गई है। महिलाओं को फ्री बस यात्रा का वादा भी पूरा हो चुका है। साथियों, सालों साल राजनीतिक दुश्मनी में जिन योजनाओं को रास्ते में ही लटकाया गया, आज उन सारी बंदिशों को तोड़कर जन कल्याण शिविरों के जरिए हर सरकारी योजना का लाभ

सीधे आप तक पहुंचाया जा रहा है। अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ आपके अधिकार पर फोकस है, बंगाल के विकास पर फोकस है, बंगाल और देश की सुरक्षा पर फोकस है। आपने देखा होगा सीमा पर फेंसिंग के लिए पिछली सरकारों ने जमीन ट्रांसफर का जो काम दशकों से रोक रखा था, नई सरकार बनते ही वो काम भी पूरा करने का काम शुरू हुआ है। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिक प्रगति की नींव फिर से बननी शुरू हो गई है। इस नींव के दो अभिन्न अंग है, ईमानदार और पारदर्शी शासन और दूसरा कानून का राज। पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरा देश आज इस बदलाव को देख रहा है। जिन्होंने आपको लूटा वो खुद आकर लूट के पैसे लौटा रहे हैं। बड़े बड़े लुटेरों को जेल भेजा जा रहा है, सिंडिकेट वाले जनता से माफी मांग रहे हैं, टोल नाकों पर अवैध वसूली करने वाले गुंडे नाके छोड़कर भाग गए हैं। बंगाल के लोग बिना रोक टोक के आ जा रहे हैं। एखन काट माने शेष काज शुरू होए गए छे। साथियों, जो बंगाल अभी तक खराब सड़कों और खस्ताहाल इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहा था, वहां अब वर्षों से लटके अटके प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ने लगे। आप देखिए, चिंगरी घाटा क्रॉसिंग पर कोलकाता मेट्रो की ऑरेंज लाइन का रुका हुआ काम पूरा भी हो गया है। हावड़ा में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से नए डिविजनल रेलवे अस्पताल की नींव भी रखी गई है। यहां इमरजेंसी सेवाएं होगी और गंभीर बीमारियों के इलाज की व्यवस्था होगी। पूर्व मेदिनीपुर में हौर और राधा मोहनपुर के बीच रोड ओवर ब्रिज, संकरेल संतरागाछी लिंक लाइन, ऐसे प्रोजेक्ट से यहां के लोगों को सुविधा होने वाली है। साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है। फसल बीमा योजना मुश्किल समय में किसान के परिवार को सहारा देगी। फसल को नुकसान होने पर किसान पर बोझ नहीं पड़ेगा। साथियों, अब पश्चिम बंगाल डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से भी जुड़ रहा है। एग्री स्टैक के माध्यम से किसान रजिस्ट्री बनेगी, गांवों के नक्शे और बोई गई फसल की जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी। खाद की खरीद, किसान क्रेडिट कार्ड, डीबीटी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जैसी सेवाओं में इससे आसानी होगी। साथियों, कृषि क्षेत्र में जो सबसे पिछड़े जिले हैं उन्हें आगे लाने के लिए सरकार ने पीएम धनधान्य कृषि योजना शुरू की है। इसमें पश्चिम बंगाल के 4 जिले पुरुलिया,

0: दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और जारगाम शामिल है। इन जिलों में खेती की उत्पादकता बढ़ाने, स्टोरेज की सुविधा बनाने और किसानों के लिए लोन आसान करने पर काम होगा। बंगाल में मछली पालन से किसान, मछुआरे, व्यापारी सब जुड़े हैं। इसे दक्षिण 24 परगना के फेसरगंज फिशिंग हार्बर की क्षमता बढ़ाई गई है। वीरभूम में आधुनिक फिश मार्केट बनाने का भी काम हुआ है। अब बंगाल थमेगा नहीं, बंगाल अब इतिहास रचेगा। ए बार बांग्ला थाम्बे ना, एखोन इतिहास गोरबे। साथियों, आज इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों के लाखों किसान साथी भी जुड़े हुए हैं, वहां के मुख्यमंत्री गवर्नर भी जुड़े हुए हैं, देश भर की सरकारों के मंत्री भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ लाखों किसान भी आज हमारे इस दिवस को मनाने में वो वहां भी भागीदार बने हैं। ये सभी किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। आज अपने इन सभी किसान भाइयों बहनों से मैं एक आग्रह भी करना चाहता हूं, और मेरे किसान भाई बहन मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, क्योंकि हमें अपने बच्चों को बर्बाद होते खेत नहीं देने हैं। हमें अपने बच्चों को उपजाऊ खेत देने हैं। हमें हमारी धरती माता को बचाना है। इस समय भारत सरकार खेत बचाओ अभियान चला रही है। इसके तहत मिट्टी की सेहत बचाने, केमिकल खाद का इस्तेमाल कम करने और प्राकृतिक खेती अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में खेत बचाओ अभियान से जुड़े, खुद का खेत बचाने का संकल्प करें, आसपास के किसानों को खेत बचाने के लिए प्रेरित करें, और हम सब मिलके हमारी धरती मां की रक्षा करें। वो हमारी मां है। हम केमिकल से हमारी मां को मारने का पाप नहीं कर सकते हैं। हमें हमारी धरती मां को बचाना होगा। साथियों, भारत 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। विकसित भारत के संकल्प का सबसे बड़ा आधार है पूर्वी भारत का विकास। इसके लिए हम मिशन पूर्वोदय पर काम कर रहे हैं। इसमें बंगाल की भूमिका बहुत बड़ी है। बंगाल की प्रगति से पूर्वी भारत की गति बढ़ेगी। भाइयों बहनों, विकास के इस अभियान में हमें एक और बात का ध्यान रखना है। विकास की पहली शर्त है, जिसे हमें कभी भूलना नहीं है, और वो है शांति, सौहार्द और सामाजिक स्थिरता। हमें बंगाल की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक ताने बाने को और मजबूती देनी है। हमें सबको साथ लेकर चलना है। साथियों, कल देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाना है। इस बार मैं बंगाल में ही योग दिवस का हिस्सा बनूंगा। स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसे योगियों की भूमि, यहां से जो संदेश जाएगा उससे पूरे विश्व का मार्गदर्शन होगा। मैं चाहूंगा इस बार बंगाल कोने कोने में योग दिवस के आयोजन हो, आप सब योग करें, योग दिवस का हिस्सा बने। इसी अनुरोध के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जब हम उत्साह और उमंग के साथ पश्चिम बंगाल दिवस मना रहे हैं तो मेरा आप सबसे आग्रह है, अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए और हम सब मिलकर के आज ये बंग दिवस मनाएं। सबके मोबाइल फोन की लाइट चालू हो, मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Moving towards a future, towards a Viksit Bharat, developed India by 2047, we hope and pray that the resolve and the vow of the Prime Minister bears fruit and we see all those great results in our lives, in the lives of the country, in the lives of everyone to be there in the future.
2: धीरे धीरे कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। अब समय है आपसे विदा लेने का। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में प्रस्तुति सहयोग दिया श्री एस वाई खान ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्री प्रमोद कुमार। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह अपने साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव के साथ आपसे अनुमति लेता हूँ। नमस्कार।

102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। शाम के 5:32 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है बहनों के लिए कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।

नमस्कार मेरी प्यारी सखियों, कार्यक्रम लक्ष्मी के आज के इस अंक में आप सभी श्रोतिया सखियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हूँ मैं आपके साथ आपकी अपनी रेडियो सखी अर्चना। मनो स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम लक्ष्मी में, जहाँ सिर्फ होंगे हम और आप। सबसे पहले ये चंद लाइनें खास आपके लिए। चांदनी की चादर ओढ़े, तारों की बारात लिए, ढेर सारी उम्मीदें, प्यार और मुस्कान लिए, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस कार्यक्रम में। बहनों आप सब कैसी हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगी, बच्चों के साथ छुट्टियां एंजॉय कर रही होंगी। तो बहनों मैं समझ सकती हूँ कि इस समय बच्चों की छुट्टियों में जहाँ एक ओर हमें टिफिन बनाने और बच्चों की पढ़ाई में थोड़ा आराम मिला है, वहीं बच्चों की शरारतों ने भी हम बहनों का जीना हराम कर रखा है। क्योंकि बहनों इस समय हमारे घर में मेहमानों का भी आना जाना बढ़ जाता है, और बहनों हम चाह लें अगर इसको ठीक करना तो हम टाइम का शेड्यूल बनाकर इन छुट्टियों को भी हम यादगार बना सकते हैं। और बहनों अब जबकि बहुत कम दिन छुट्टियां बची हैं, तो बच्चों को हमें देखिए बाहर घुमाने के लिए अवश्य ले जाना चाहिए, ताकि बच्चों में नई नई चीज़ों को देखने, जानने और प्रकृति से जुड़ने का भी समय मिले। और सबसे खास बात बहनों कि दादी नानी के घर भी बच्चों को जरूर ले जाएं, ताकि परिवार के महत्व को समझे बच्चे, संस्कार उनके अंदर आए। बहनों इन छुट्टियों में हमें अपने शरीर पर भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। और हमेशा हम हर काम तो कर लेते हैं देखिए, पर जब बात योग एक्सरसाइज की आती है ना, तो वक्त की कमी हो ही जाती है हम बहनों के लिए। और

0: रीजा वही बीमारी और उम्र से पहले भी बुढ़ापा, तो फिर क्या? बोलो कल तो है ना 21 जून, तो क्यों ना हम सब प्रतिज्ञा लें और कल से ही शुरू करें योग प्राणायाम और खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाएं। इतना ही नहीं बहनों, पता है मौसम बदलने के साथ होने वाली बीमारियों से भी हम बच सकते हैं योग के सहारे। तो चलिए डिटेल में सुनते हैं भेंटवार्ता के जरिए। शीर्षक है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक योग। भेंटवार्ताकार हैं खेल संघ के जिला सचिव श्री विनय कुमार श्रीवास्तव जी और उनसे बातचीत कर रहे हैं जगत नारायण जी। तो चलिए सुनते हैं हम योग के बारे में।
1: श्रोताओं, आज व्यस्तता के क्रम में जितना तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं और यह भी कहा जा सकता है कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो खाद्य सामग्रियां इस समय हैं जिसको सेवन करने से व्यक्ति के अंदर यूनिटी पावर कम होने की जो बातें आती हैं, जिसको सुदृढ़ करने के लिए योग की प्राथमिकता दी जाती है, जो कि एक योग के संदर्भ में श्लोक भी स्मरण आ रहा है कि योगे न चित्तस्य पदे न वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्राञ्जलिरान तस्मिन। जिन्होंने योग से चित्त का और पद से वाणी का और वैदक से शरीर का मल दूर किया, उन मुनियों में श्रेष्ठ महर्षि पतंजलि को हम लोग आज इस बैठकी के माध्यम से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। आज योग के विषय पर बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश योगासन खेल संघ सोनभद्र के जिला सचिव श्री विनय कुमार श्रीवास्तव जी का स्टूडियो में आगमन हुआ है।
2: धन्यवाद।
1: तो विनय जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग योग के बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि अक्सर करके यह बात आती है कि योगस चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त के विकृति को ठीक करने का काम योग है। आप किस प्रकार से देखते हैं योग को, कितना आवश्यक है आज जी?
2: नमस्कार स्टूडियो में बुलाने के लिए। योग हमारे लिए इस समय जिस तरीके से वातावरण चल रहा है, लोगों के रहने खाने का ढंग सब बदल गया है, उस तरह को देखने से लिए हमारे लिए योग बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसमें क्या है कि तरह तरह की बीमारियां आज की डेट में पनप रही हैं। लोग सही से बैठ नहीं पा रहे हैं, किसी को बैक पेन हो रहा है, किसी को नी में पेन हो रहा है, तो उस कारण से लोगों के अंदर प्रॉब्लम शुरू हो गई, क्योंकि आजकल लोगों के रहने का खाने का सिस्टम सब कुछ बदल गया है।
1: जी, जी, जी, जी।
2: लोगों के पास टाइम नहीं है, सुबह उठ रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, लैपटॉप पे बैठे हैं, कुछ मोबाइल पे लगे हैं। जब से ये मोबाइल की आदत लग गई लोगों में, तब तक लोगों ने खेल की भावना खत्म ही हो गई है उनके अंदर, कि हम कुछ खेलें जिससे हम एक्टिव रहें, तो वो सब चीजें खत्म हो गई हैं। तो
1: जी,
2: उसके इसीलिए योग हमारा शरीर के लिए बहुत अच्छा लाभदायक है। इससे हमारा शरीर लचीला बनता है, इससे हम दिन भर हमारे अंदर एनर्जी रहती है, जिससे हम दिन भर हमारा जो भी रूटीन वर्क है वो हम कर सकें।
1: यदि बात करेंगे हम लोग योग के लिए, तो निश्चित रूप से चूंकि कई प्रकार के योग किए जाते हैं, लेकिन उससे पहले शरीर को गर्म करने की बात आती है।
2: जी,
1: तो क्या कहना है, मतलब योग करने से पहले क्या करें?
2: योग जी, जैसे जब आप सुबह उठते हैं
1: जी,
2: तो सुबह उठने में क्या होता है, आपको आलस लगता है कि अरे यार कैसे उठें, क्या करें। तो उसमें क्या होता है, अब एक तो सबसे पहले आपको अपने अंदर ये दृढ़ निश्चय करना होगा कि हमें जिस टाइम पे उठना है तो उठना है। जब एक बार आप आलस करेंगे तो ऑब्वियसली वो एक दिन की आलस आपकी 2 दिन में बदल जाएगी, और फिर वो 3 दिन में, तो वो आप रूटीन वर्क में कभी आ ही नहीं पाएंगे। तो अपने अंदर पहले दृढ़ निश्चय करिए कि हमको सुबह उठना है तो उठना है। हमें अगर 1 घंटा हमें टाइम देना है तो हम 1 घंटा टाइम इसमें देंगे। आप योग करिए, थोड़ा ध्यान केंद्रित करिए, इससे आपका दिमाग थोड़ा शांत होता है। अब जैसे दिन भर आप काम करेंगे, ऑब्वियसली दिन भर इतनी टेंशनें रहती हैं, कहीं कुछ काम, तो उससे जब आप योग के माध्यम से जब आप चलेंगे तो आपको बहुत शांति मिलेगी। इसमें आपका काम भी बहुत अच्छे से होगा और दिन भर आप एनर्जेटिक रहेंगे, इससे आपको बहुत अच्छा फील भी होगा।
1: शुरुआत कहाँ से करें?
2: शुरुआत करने के लिए देखिए, आसन तो कई तरह से होते हैं, आसन करने के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कुछ खड़े होकर के करने वाले आसन होते हैं, कुछ बैठने वाले आसन होते हैं, कुछ आपके बैक में भी होते हैं, तो उस तरीके से कई आसन होते हैं। तो पहले हम एक या तो हम बैठने वाले आसन से शुरुआत करें या तो फिर हम खड़े होने वाले आसन से शुरुआत
1: यानी
2: करें।
1: कि योग करना है तो पहले आसन से शुरू करना
2: हाँ,
1: होगा,
2: आसन
1: व्यायाम से शुरू करना
2: हाँ,
1: होगा।
2: पहले आप हाँ पहले आप उससे शुरुआत करेंगे, पहले आप बॉडी को वार्म अप करिए,
1: जी जी
2: गर्म करिए
1: जी।
2: उसके लिए आपको अपनी जगह पे रह करके बॉडी को वार्म अप करना है। क्या होता है कि जब आप सो करके उठते हैं तो बॉडी में एकदम आलस आता है, तो उस आलस

0: तो वो क्या करते हैं, नॉर्मल जैसे उनको वॉक करते हैं, वो वॉक करने के बाद वो बैठ करके भी आसन कर सकते हैं। जैसे अब 60 साल की एज हो गई,
1: जी जी जी
0: ऑब्वियसली वो इतना दौड़ नहीं सकते, तो उनके लिए बैठने वाले आसन ज्यादा फायदेमंद होते हैं।
1: जी जी जी
0: बैठ करके वो आसन करें, वज्रासन हो गया, सिद्धासन में बैठें, तो उस तरीके से बैठ करके वो आसन को अच्छी तरीके से कर
1: या
0: सकते हैं वो।
1: बैठ करके पैर सीधे करके सीधे की
0: हाँ
1: अंगुलियों को
0: हाँ
1: हिलाना,
0: पद्मासन करें, पैरों को
1: पैरों को
0: हिलाएं,
1: हिलाना। जी जी
0: फिंगर को
1: जी
0: आप उसको मोड़ें, आपको एड़ियों को उसको पहले क्लॉक वाइज
1: गोल,
0: करें,
1: जी
0: फिर
1: जी
0: एंटी क्लॉक वाइज करें, तो उससे आपका बॉडी आपका नॉर्मल हो
1: फिर
0: जाएगा।
1: उसी प्रकार हाथ का, उसी
0: जी
1: प्रकार
0: जी
1: गर्दन का, फिर
0: हाँ
1: उसी प्रकार
0: वार्म
1: शरीर
0: अप
1: का।
0: कई तरीके से होते हैं
1: अच्छा,
0: आप।
1: इसमें जैसे हो गया कि श्वास प्रश्वास वाली जो बातें आती
0: जी जी
1: हैं, तो इससे क्या कुछ लाभ हो पाता है? जी
0: नहीं होता है श्वास से। अब क्या होता है कि अब जैसे श्वास लेते हैं तो आपका ऑफिस जी, अब सुबह उठते हैं, अब कुछ लोग क्या करते हैं, ब्रश करने के बाद भी उनके मुंह से स्मेल आती रहती है,
1: जी
0: तो उसमें अब उसमें लगता है कि हमने ब्रश तो किया फिर भी हमारे मुंह में स्मेल आ रही है। तो उसमें आप आसन करने के लिए आप शीतलीकरण भी कर सकते हैं। शीतलीकरण में आपको जीभ को रोल करके सांस को खींचना है और फिर उसको अपने सीने तक लाकर उसको रोक करके जितना देर आपकी सहनशील शक्ति है आप उसको रोकें, फिर उसको उसको फिर छोड़ दें उसको। तो इस तरीके से आप कम से कम 2-3 बार इसको करिए,
1: श्वास
0: तो
1: प्रश्वास हो गया।
0: जी ये
1: जी
0: सांस
1: जी
0: पे
1: जी
0: आपको और अच्छा, आपको ये जब आप रेगुलर करेंगे तो आपको इसका बहुत फायदा मिलेगा, लेकिन अगर आप 1-2 दिन करके छोड़ देंगे तो आपको इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा।
1: जी
0: योग
1: बहुत।
0: एक ऐसा माध्यम है जिसको आप निरंतर करते रहेंगे तो आपकी बॉडी हमेशा फिट रहेगी।
1: आप ही लोग के जो योग सिखाने वाले हैं, कभी कभार सीखने को मिलता है कि योग के कई प्रकार होते हैं, जिसे अष्टांग योग आते हैं, ये क्या है अष्टांग योग सर?
0: अष्टांग योग, इसमें क्या होता है, अष्टांग योग में आपके 8 नियम होते हैं जो इनको देखना होता है। जैसे आपका यम हो गया,
1: जी
0: यम में आपके अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, इन सब का पालन होता है, तो उसमें दूसरों के प्रति हमारे व्यवहार को अनुशासित करना होता
1: जी
0: है।
1: जी जी जी जी
0: उसके बाद दूसरा आपका था नियम आता है। नियम का मतलब होता है कि हम सुबह समय पे उठें, समय पे अपने सारे कार्यों को करें।
1: जी
0: तीसरा आपका आता है आसन। आसन का मतलब होता है शारीरिक मुद्राएं
1: जी
0: जो आप स्थिर बैठ करके आप लगाते हैं, आसन करते हैं, उनको बोलते हैं। फिर चौथा आपका आएगा प्राणायाम। इसमें आपका श्वास की गति को नियंत्रित करना कि
1: जी
0: कैसे आप कितना देर आप श्वास रोक सकते हैं। जैसे जब पानी में जाते हैं लोग तो सांस रोक करके तभी वो अंदर डाइव कर सकते हैं,
1: जी
0: नहीं
1: जी
0: तो वो
1: जी
0: कर ही नहीं पाएंगे। उसके बाद फिर आपका आएगा प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है बाहरी विषयों को अपनी इंद्रियों हटाकर भीतर की ओर मोड़ना। आंख, कान, नाक, इन सबको आपको प्रत्याहार में ये सब यूज होते हैं,
1: जी जी जी
0: इंद्रियों का नियंत्रण इसको बोलते हैं।
1: जी
0: फिर आपका आएगा धारणा। धारणा का मतलब होगा एकाग्रता, जिसमें आप अपने ध्यान को केंद्रित करिए, एक जगह पे रखिए, कुछ देर उसको सोचिए। एक एक जगह पे आप रहेंगे, एकाग्र चित्र पे रहेंगे तो वहां पे आपका मन एकदम शांत रहेगा।
1: जी जी
0: फिर
1: जी
0: आपका आएगा ध्यान। ध्यान में बिना किसी रुकावट के लगातार मन में उसी विषय को प्रवाह में बनाए रखिए, ध्यान में रखिए, लगातार कंसंट्रेट करिए, तो वो आपका
1: किसी एक
0: ध्यान
1: बिंदु पर
0: में,
1: टिकाए
0: हाँ
1: रहना।
0: किसी
1: जी
0: एक बिंदु पर आपको ध्यान केंद्रित होता है, आपके दोनों भाव के बीच में
1: जी
0: जो
1: जी
0: पॉइंट होता है इसको
1: जहाँ
0: ध्यान
1: जो
0: बुंदी
1: जहाँ
0: कहते हैं।
1: चंदन लगाते
0: जी
1: हैं। हाँ
0: जहाँ
1: जी
0: चंदन लगाते हैं उस ध्यान बिंदु को आपको उसी पे रखना है और वहीं पे एकाग्र होकर के आपको ध्यान करना है।
1: जी
0: फिर आपका आता है समाधि। समाधि का मतलब है यह अष्टांग योग में सर्वोच्च अवस्था है जिसमें आपको समाधि लगा करके बैठना है। समाधि में भी सिद्ध आसन होता है, सिद्ध आसन में लगा करके बैठ के एकदम सीधा, जिसमें पीठ की रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी हो, सीधी होकर के बैठें और फिर उस पर ध्यान को केंद्रित करें। जो
1: निश्चित
0: भी
1: रूप
0: आसन
1: से।
0: करें आप संरक्षण में करें, किसी से उसको राय लेकर के करें कि हमें
1: जी जी
0: कैसे
1: जी
0: करना है।
1: जी जी जी और ये भ्रामरी वगैरह का क्या लाभ?
0: हाँ
1: जी
0: भ्रामरी में भी होता है। भ्रामरी का हम मैं आपको करने का एक तरीका बताता हूँ। जैसे आप भ्रामरी में अपने दोनों अंगूठों को अपने कान में रखें,
1: जी
0: फिर दोनों हाथों को आप इसमें रखें, फिर सांस को एक समय तक खींचें जिससे कि आपको जहां तक आप ले सकते हैं,
1: जी

0: जी, ये मतलब
1: ये,
0: भ्रामरी है,
1: हाँ ये
0: तो इससे
1: भ्रामरी,
0: फायदा क्या है सर? जी
1: इससे फायदा देखिए आपका, जब आप इससे करके जब आप आते हैं वापस, जब आप आएंगे तो देखिए आपको बॉडी को बहुत रिलैक्स मिलेगा,
0: जी
1: आपका जो दिमाग है वो एकदम लगेगा कि जैसे दिमाग एकदम खाली हो गया है, अब इसमें नई ऊर्जा आ गई हम नए काम करने के लिए
0: स्मरण
1: आगे
0: शक्ति
1: बढ़े।

0: भी बढ़ेंगे।
1: जी हाँ
0: तो चूंकि बहुत श्रोता लोग सुन रहे हैं और आज जो है कि सबको आवश्यक है योग,
1: जी,
0: चलते चलाते क्या कहना चाहेंगे लोगों से? जी
1: मैं बस यही चाहता हूँ लोगों से, जैसे आजकल की जो दिन जितनी भी दिनचर्या है लोगों की, लोगों के पास समय नहीं है, लेकिन कम से कम आप अपने शरीर के लिए थोड़ा सा समय निकालें, थोड़ा सा योग करें, ध्यान केंद्रित करें, मेडिटेशन करें, जिससे क्या होगा कि आपकी बॉडी को ही फायदा मिलेगा, ना कि किसी और को मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि अब आप ये सोचे कि हमें बैठ के हम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, तो वो मेरे लिए फायदा है, लेकिन क्या होगा, एक टाइम आएगा जिसमें आपको प्रॉब्लम शुरू होंगी धीमे धीमे करके, कभी पीठ में दर्द, कभी पैर में दर्द। तो अगर आप योगा को अगर आप नियमित रूप से, आप चाहे 5 मिनट ही करिए, बैठ के भी करने वाले आसन होते हैं जिसमें आप बैठ के भी कर सकते हैं, और अगर आप खड़े हैं तो आप खड़े होकर के भी 5 मिनट आसन आप कर सकते हैं, उससे आपको पूरी लाइफ में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी लाइफ आराम से चलेगी।
0: तो श्रोताओं देखें, योग करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें कि नियमित करें, नियमित करेंगे तभी इसका फायदा पुरहर पा पाएंगे। आप अभी विनय कुमार श्रीवास्तव जी बात कर रहे थे, आप उत्तर प्रदेश योगासन खेल संघ सोनभद्र के जिला सचिव हैं। आप स्टूडियो में आए और इतना अच्छा जानकारी दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: अभी हम लोगों ने भेंट वार्ता सुनी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक योग, और भेंट वार्ताकार थे जिला सचिव खेल संघ के श्री विनय कुमार श्रीवास्तव, और उनसे बातचीत कर रहे थे जगत नारायण जी। तो अभी हम लोगों ने ये भेंट वार्ता सुनी।
3: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है, नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
4: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: पापा लाइए 3,000।
6: क्यों भाई?
5: मेरी पॉकेट मनी।
6: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
5: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
6: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
5: अपना मोबाइल लाओ।
6: ले ले।
7: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
8: हर लेन देन अब है आसान।
9: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात,
10: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
11: हेलो,
9: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
10: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए,
9: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
10: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
9: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री, 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
4: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
12: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
13: आया खुशियों का पैगाम, पीएम किसान।
14: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
2: बहनों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। और आज अब हम बात करेंगे एक खास विषय पर कि केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियां, शिक्षा से सशक्तिकरण तक महिलाओं की उन्नति। किसी भी देश की

प्रगति तभी संभव होती है बहनों, जब उसकी महिलाएं सशक्त, आत्मनिर्भर और सुरक्षित हों। पिछले 12 वर्षों में महिलाओं के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा और जागरूकता की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं ने समाज में बेटियों के प्रति सोच बदलने का काम किया। इससे न केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिला बल्कि लिंग अनुपात में भी सुधार देखने को मिला। जागरूकता अभियानों के जरिए भ्रूण हत्या जैसे अपराधों पर रोक लगाने का प्रयास हुआ। और इतना ही नहीं बहनों, इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना ने बेटियों के भविष्य को आर्थिक सुरक्षा देने का भी काम किया। बहनों, अब आर्थिक सशक्तिकरण की बात करें तो सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिसमें कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, महिला उद्यमियों को बड़े स्तर पर व्यवसाय शुरू करने में इससे सहायता मिली है। बहनों, यह भी है कि NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसमें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लाखों ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिला। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से संगठित किया गया और उन्हें रोजगार के अवसर दिए गए। और पता है बहनों, समूह में सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पशुपालन, मुर्गी पालन, हस्तशिल्प, छोटे उद्योग, दुकान चलाना, छोटा व्यवसाय शुरू करना, सब कुछ सिखाया गया। और इसके साथ ही समूह में काम करना बताया गया, मिलाकर बचत करना बताया गया, जरूरत पर लोन लेना, बैंक खाता खोलना और उसे चलाना, और मार्केटिंग और सामान बेचने के तरीके भी बताए गए। इसका मतलब है कमाई के तरीके, बचत की आदत और आत्मनिर्भर बनने का हुनर भी सिखाया गया, ताकि वह अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। अब हम स्वास्थ्य और पोषण पर आए तो स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता देते हुए योजनाएं लागू की गई हैं। पहली प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तो इसमें सबसे पहले महिलाएं लकड़ी, कोयला, उपलों पर खाना बनाती थी और घर में धुआं भर जाता था, जिससे स्वास्थ्य की समस्याएं उत्पन्न हो जाती थी, ये तो हम सभी जानते हैं। तो उज्ज्वला योजना के माध्यम से सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे वर्ग की महिलाओं को LPG कनेक्शन देकर उन्हें स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। और इस योजना के तहत गैस कनेक्शन, सिलेंडर, चूल्हा उपलब्ध कराया गया। इसके साथ ही सरकार द्वारा समय समय पर सिलेंडर पर सब्सिडी भी दी जाती है। तो आज हमारी बहनें इस योजना का लाभ उठाकर सुरक्षित वातावरण में खाना बना रही हैं। और बहनों, ये भी है कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, इसमें गर्भवती महिलाओं को आर्थिक रूप से सहायता मिली और अब भी मिल रही है। और एक है आयुष्मान भारत योजना, गरीब महिलाओं को मुफ्त इलाज की सुविधा। और इसके साथ ही साथ आज डिजिटल युग में महिलाओं की सुरक्षा के लिए तकनीक को भी सहारा लिया गया। बहनों, इसके अलावा कई राज्यों में सेफ्टी एप्स और CCTV निगरानी जैसी सुविधाएं भी बढ़ाई गई हैं, जिससे महिलाओं को सहायता मिल रही है। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ मिलकर पिछले 12 वर्षों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी बहुत सारे योजनाएं बनाई गई, जिसमें दुष्कर्म और छेड़छाड़ जैसे अपराधों के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान किया गया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून को और मजबूत किया गया। तो कह सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित और आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन देना है। अब बात जागरूकता और आत्मरक्षा की करें तो सरकार और विभिन्न संस्थाओं द्वारा महिलाओं को जागरूक बनाने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। स्कूल और कॉलेजों में आत्मरक्षा यानी कि सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, ताकि महिलाएं खुद की सुरक्षा कर सके। पिछले 12 वर्षों में आर्थिक और सामाजिक विकास की ओर देखें तो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, जिसमें जन धन योजना के तहत करोड़ों लोगों को बैंक के खाते खुले, जिसमें आर्थिक समावेशन को बढ़ावा मिला गया। और इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पक्के घर भी दिए गए हैं और अब भी दिया जा रहा है। अब बात करें जिसने हमारे देश की तस्वीर और सोच दोनों को बदलने का काम किया, तो बहनों पिछले 72 वर्षों में, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वच्छता अभियान की। 2014 में शुरू हुआ स्वच्छ भारत मिशन आज एक जन आंदोलन बन चुका है। इस अभियान का उद्देश्य था खुले में शौच से मुक्ति और स्वच्छ भारत का निर्माण। इन 12 वर्षों में देश भर में शौचालयों का निर्माण किया गया,
कई गांवों को खुले में शौच मुक्त घोषित भी किया गया। इसके साथ

ही लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए स्वच्छता ही सेवा अभियान भी चलाया गया और कचरा प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया। सूखा और गीला कचरा अलग अलग किया गया, रिसाइकिल और प्लास्टिक कम करने की दिशा में भी काम किया गया और नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा नदी की सफाई का भी प्रयास तेज हुआ और स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय निर्माण से बच्चों में स्वच्छता की आदत भी विकसित हो गई। तो कह सकते हैं कि पिछले 12 वर्षों में स्वच्छता के क्षेत्र में भी देश ने लंबी यात्रा की, लेकिन अभी भी हमें अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना है, संकल्प लेना है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। अब थोड़ा डिजिटल इंडिया पर यदि नजर डालें तो डिजिटल इंडिया अभियान के माध्यम से आज हम सेवाएं ऑनलाइन हो रही हैं, जिससे लोगों का समय और मेहनत दोनों बच रहे हैं। सड़क, रेल, बिजली जैसी सुविधाओं में भी तेजी से विकास हुआ है और इतना ही नहीं बहनों, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देखें तो महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर मिले, जिससे आत्मनिर्भर बन रही हैं हमारी बहनें। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियां हमें यह सिखाती हैं कि जब सही दिशा में प्रयास किए जाते हैं तो बदलाव संभव है। हमें चाहिए कि हम सब मिलकर देश के विकास में अपना योगदान दें और इन 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ करोड़ों लोगों के जीवन में सुधार हुआ है। और बहनों, अब देखिए हम बातचीत करेंगे कि महिलाओं का सुधार हो रहा है, सब चीजें अच्छी हो रही हैं, तो हमें थोड़ा सा ध्यान इस चीज पर भी देना है कि बच्चियों की जब शादी हो रही है तो कोशिश करें कि हम उसे बाल विवाह ना होने दें, क्योंकि आज भी बहुत सारे गांवों में बाल विवाह हो रहे हैं और बाल विवाह करने से हमारे बच्चियों के जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है, जिसके बारे में हम महिलाओं से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं समझ सकता है। सबसे बड़ी खास बात है कि उनकी शिक्षा रुक जाती है, जब शिक्षा रुक जाएगी तो जाहिर सी बात है कि उनका आने वाला भविष्य बहुत अच्छा नहीं होगा और वो आत्मनिर्भर बन नहीं हो पाएंगी, और आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगी तो जाहिर सी बात है कि उनका शोषण होना तो तय है और साथ ही साथ कम उम्र में शादी होने से देखिए घरेलू हिंसा की भी शिकार हमारी बहनें हो जाती हैं और हो भी रही हैं। तो बहनों, मैं तो यही कहूंगी कि जब भी हम कहीं देखें कि बाल विवाह हो रहा है तो उसे रोकने का प्रयास करें, और यदि लोग बातों से नहीं मानते हैं तो हम पुलिस का सहारा भी ले सकते हैं और प्रशासन हमारी ज़रूर मदद करती है इन सब चीज़ों में। तो देखिए सबसे खास बात है कि सबसे खास चीज़ तो ये है कि जब लड़कियों का बाल विवाह में शादी हो जाती है, मतलब बाल कम उम्र में शादी होती है, तो उनके जो है कि शरीर पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि लड़कियों की शादी, बच्चियों की शादी सही उम्र पे हो। तो बहनों, आज की बातचीत बस यहीं तक, अगले किसी कार्यक्रम में किसी अंक में हम फिर से आपके से मिलेंगे। तब तक के लिए अपनी रेडियो सखी अर्चना को दीजिए अनुमति। तो बहनों, नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। एफएम 102.7 पर ये आकाशवाणी का उभरा केंद्र है। आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से भोजपुरी समाचार।

नमस्कार, समाचारन के साथ ही हम सोनी निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के हुगली जिला में तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 23वीं किस्त जारी कैले। योजना के तहत 18,880 करोड़ रुपया से बेस

0: सीकर राशि सोझे 9,44,00,000 से बेसी किसानन के खाता में डीबीटी के जरिया से भेजल गई। एक किस्त से देश का 2,18,00,000 से बेसी महिला किसानों लाभान्वित भइली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज झांसी से एक कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़ले। एगो सोशल मीडिया पोस्ट के जरिया से वहां के कहने की ये राशि खाली आर्थिक मदद नहीं बल्क अन्नदाता किसानन के परिश्रम सम्मान और समृद्धि के प्रति सरकार के अटूट प्रतिबद्धता का मजबूत प्रतीक बा। जौनपुर के किसान मुरारी लाल यादव प्रधानमंत्री सम्मान निधि का किस्त जारी भइले पर प्रधानमंत्री का आभार जतवले।
1: आज प्रधानमंत्री द्वारा 23वीं किस्त जारी की गई किसानों को, उससे किसानों को बहुत फायदा मिलता है और खाद पानी या गेहूं का जो भी सिंचाई में काम आता है उसके लिए हम प्रधानमंत्री के सरकार के आभारी हैं। किसानों को बीज लेने के लिए, खाद लेने के लिए, जुताई वगैरह देने के लिए काम आ जाता है। जैसे छोटे मोटे किसान हैं उनको फायदा हो जाता है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ललितपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज के लेके 1,766 करोड़ रुपया लागत का 221 विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास कैले। इस मौका पर मुख्यमंत्री कहले कि ई विकास परियोजना बुंदेलखंड के साथे उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा, आधारभूत संरचना और जन सुविधा के नया मजबूती देत क्षेत्रीय विकास के नया गति दे।

0: प्रतिपादित हुई, तब मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर ऊर्जा संकट न पैदा हो इसके लिए कार्य किया गया, जनता को राहत देने का कार्य किया गया।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से बिहने होखे वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारी के तहत आज देश भर में मॉक ड्रिल कैल जा रहल बा। भिन्न ही 9 बजे शुरू भइल ई अभ्यास पूरा दिन चलत रहल। यह अभ्यास में 2.5 लाख से बेसी सुरक्षा कर्मी शामिल हवे। एकर उद्देश्य परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन तय कैल हवे। एजेंसी के हिसाब से नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरन और विदेश के 14 गो शहरन में आयोजित कैल जाय, जिसमें 22,79,000 से बेसी अभ्यर्थी शामिल हुई हैं। प्रदेश में परीक्षा में शामिल होखे वाले अभ्यर्थियों खातिर रेलवे और रोडवेज प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम कैल गए हो। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार बतौले कि लखनऊ मंडल में कुल 7 परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाइले का योजना हो। इसमें पर्याप्त कोच लगावल गए हवे और विद्यार्थियों के कोनहु तरह का असुविधा नहीं हुई। प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला फेरा, जिसमें मकानन के सूची बनावल और आवास जनगणना शामिल बा, 22 मई 2026 से 20 जून 2026 ले तय समय के भीतर 100% सफलता के साथ ही पूरा हो गई। यह कार्य का सफलता के राज्य खातिर एगो ऐतिहासिक उपलब्धि बतावल गई हो। राज्य भर में करीब 1.04 लाख गांव और 14,983 वार्डन के कवर करत 1,195 प्रभार क्षेत्रन में मकान सूचीकरण और आवास जनगणना आयोजित कैल गई। संपूर्ण अभियान 3,90,717 मकान सूचीकरण ब्लॉकन के जरिया से पूरा कैल गई। केंद्र सरकार 16 गो फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाई के बनवले, बिक्री और वितरण पर जुड़ते प्रभाव से रोक लगा दिले बा। ये फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर कैल गई विशेषज्ञ समिति के समीक्षा के बाद लिहल गई। समिति पावलस की इस सग्रो दवाई के संयोजन का पूरा चिकित्सीय औचित्य नहीं हो और एकरे उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकेला। प्रतिबंधित दवाई में त्वचा रोग, दर्द निवारण, ऐठन और कुछ एंटीबायोटिक दवा शामिल बा। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बिहने दुनिया भर में मनावल जाई। यह बरिस के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग हवे। जवान सज्जो आयु वर्ग खातिर योग के महत्व पर जोर दिला। संस्कृति मंत्रालय भारत के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और योग परंपरा के दर्शावत देश भर में 100 जगहों पर विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन करी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित कैल जाये। प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी में योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। एक साथ ही इस समाचार बुलेटिन पूरा भेल। नमस्कार।
2: FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का उभरे केंद्र है। शाम के 6:06 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: सब पंचन के राम राम। नैना बहन आपके भी राम राम।
1: बता सब बहन आप हो राम राम। और बताओ का हाल चाल बा।
0: देखा हाल चाल तो ठीक बा कह सकेला। जहाँ हम लोग कहें कि मौसम के जन उतार चढ़ाव हो रहा बा ना, एक वजह से देखा सर्दी जुखाम ते एक आम समस्या बन गल बा। तो इस समस्या का निदान के खातिर हम लोगों के कोशिश करे के चाहे कि जैसे काढ़ा बना करके पियल जाए तो थोड़ा सा सर्दी जुखाम से फुर्सत मिले। लेकिन रहल की देखा जब घाम होता तो ऐसा घाम होता कि जाना था कि एकदम कपारे का बारे उड़ जाये।
1: हाँ।
0: और जैसे बरसे लगा तो लगातार ठंडे लगे लगा था। तो फिर देखा ये बदलत मौसम में हम लोगन के अपन खान पान के दुरुस्त रखल बहुत जरूरी बा। और ठंडा चीज खाई जा हम लोगन, लेकिन जब घाम के समय रहता देखा कुछ लोगों ने जामुन कहे ना कि गर्मी में मिले तो गर्मी में खाए के चाहिए। तो हर एक चीज का एक समय बनावल
1: हा।
0: अगर दिन में खाए तो फायदा करी, रात में भी खाइए तो देखा नुकसान कर सकला। तो ये सब चीज छोट छोट बात बा देखा ये सब चीज के ध्यान रखल जाए। सबसे बड़ी चीज की अगर फल का सेवन करते तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखल जाए और स्वस्थ रहल जी तभी देखा मस्त रहल जी।
1: मस्त रहल जी। जब साफ सफाई के बात कैले हैं तो देखा कहल भी जाला कि जय साग सब्जी हो जाए फल हो के धो के खाई जा। उससे पहले देखा खुद की सफाई करी जा। जैसे का होला कि खाना खाए से पहले जरूर हाथ के धोई जा। कभी कभी का होला कि अपने तो आदमी धोई ले वाला लैका बचवा केहरो से खेल के आवा ना तो अपन खाए लगा ना।
0: लैका बचवा तो केहरो से खोल के आला अपने से उठा के लेके खाए लगा ना। तो थोड़ा सा हम लोग जैसे घर में बड़ बुजुर्ग जेबा थोड़ा बचपन लोगन के पे ध्यान देहल बड़ जरूरी बाटे। काहे कि देखा उनकर भविष्य ही काल के हम लोगन के मतलब देश के उनके कंधे पर रखे के जरूरत पड़ी। तो जरूरी बा कि उनकर स्वास्थ्य का ध्यान बिल्कुल रखल जाए और स्वच्छ देखा स्वच्छता जन बा कि अपन आसपास के वातावरण जैसे कूड़ा बा के हम लोगन कूड़ेदान में ही डालल जाए। बच्चों के भी सिखावल जाए और जन भी घर का कचरा निकले ना कि अपने दुआरे का साफ कर दिली बगले में पड़ोसी के दुआरे पे बहोर के रख दिली पता चल कि गैया चाहे कुकुर हाँ बिखेर दिल बिखेर दे गैया अरे कुकुर और बिलार पर लैटरिन करके अपन जन बाकी अपन तो निपट लेना लेकिन वो कचरा फैला देना तो उसे पूरा आसपास के वातावरण में गंदगी फैलेला।
1: बिल्कुल सही बात कह
0: ले। तो ये सब चीज छोट छोट बात बा जीरा बहन और देखा नैना बहन हम लोगों के ध्यान देवे की जरूरत बा।
1: तो सही बात कह लेनी है कि स्वच्छता के बाद अब देखा बरसात का समय भी आ रहा बा। तो जैसे अभी देखा कभी कभी पानी बरस दे थमा तो हमने लोगों के अभी ही सावधानी रख जा कि जैसे अपने चाहे दुआरे बा चाहे अंगने बा चाहे अपन ऊपर बा तो कोई ऐसा बर्तन बा जैसे कोनो डिब्बे खाली बा टायर खाली बा तो ओमें देखा पानी भरले से का होला कि मच्छर पनप जाले।
0: बिल्कुल और तमाम तरह का मच्छर से जनबे को लोग बीमारी फैलाला। तो जहाँ भी ऐसा लगे कि पानी चाहे कूलर के ढक्कन में बाल्टी के टूटल मोटल सीसी में भर जाता तो के साफ सफाई रखल जाए। देखा बदलत मौसम में ना तमाम तरह का बड़ बीमारी होला जैसे कि चेचक है चाहे चरम रोग है कई तरह का बीमारी होला। जैसे देखा कि अभी बदलत मौसम में चेचक के भी बात अभी हम करत थी तो चेचक के का कारण बा लक्षण बा और उपचार होकर कैसे कल जा सकेला ए विषय पर देखा डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता जो उनकी होम्योपैथ चिकित्सा अधिकारी हवन उनसे मुनई भैया बातचीत फरिया के करत हूँ आज पंचायती में उहे हम लोगन जानकारी शामिल कर ले है जा। तो का कहते तो सुनल जाए
1: चलो सुन ले बल जाए।
2: पंच भैया लोग देखा जैसे जैसे मौसम में परिवर्तन होला मौसम में उतार चढ़ाव होला ठंडी गर्मी बरसात ऐसने स्थिति में अपने अंचल में चेचक का भी प्रकोप बढ़ला। और चेचक का प्रकोप कैसे होता ओकर लक्षण का बा ओकर बचाव का बा आज एकरे बारे में हम लोगन जानल जाई। आज राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय बंजरिया से अपने बीच में डॉक्टर मनोज कुमार गुप्त साहब आल हुआ और आपसे ही आज हम लोगन जानब कि चेचक कैसे होनी और इनकर रोकथाम हम लोगन कैसे कह सकीला। डॉक्टर साहब नमस्कार।
3: नमस्कार पंच भाइयों।
2: डॉक्टर साहब आज आप अपने कार्यक्रम में आल हुआ तो आपसे हम लोगन जानल चाहब चूंकि चेचक यानी गांव में हम लोगन माता जी के नाम से
3: जी।
2: पुकारी ला
3: जी।
2: प्रचलन भी है और बड़ी मान्यता भी बा
3: जी।
2: तो चेचक का प्रकोप कैसे शुरू होला है अपन पंच भैया लोग कैसे जाना है कि ई चेचक।
3: देखिए पहले तो मैं बता दूं कि चेचक कब शुरू होता है ज्यादातर ऋतुओं के संधि काल के समय में जैसे गर्मी से जाड़े में जा रहा हो जाड़े से बरसात में जा रहा हो या फिर ठंडी से गर्मी में आ रहा हो मौसम जो संधि काल है उस समय वायरस जो होते हैं उनके प्रजनन के लिए बहुत ही उपयुक्त समय होता है। और जो चेचक है वो भी एक वायरल डिजीज है और सेल्फ लिमिटिंग है 5 से 7 दिन उसका कोर्स रहता है वो अपने आप चली भी जाती हैं ज्यादातर। तो ये वही समय होता है जिस समय ये बहुत तेजी से फैलती हैं।
2: अच्छा।
3: तो इसको जानने के लिए आपको देखना होगा कि अब इसका तो होने के लिए 10 से 20 दिन पहले इसका एक्सपोजर हो जाता है, और 10 से 20 दिन के बाद, यानी अगर आपको आज इस वायरस का एक्सपोजर हुआ है तो 10 से 20 दिन बाद आपको लक्षण दिखेगा
2: जी।
3: और सबसे पहले सर्दी, जुखाम, बुखार, सर दर्द और बदन दर्द, ये लक्षण आएंगे। तो इतने से तो पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है, जब तक कि दाना ना उभरे। जब दाना उभरता है तब लोगों को पता चलता है। इसके दानों की एक विशेषता होती है, इसके दाना जो है सेंट्रीफ्यूगल टाइप के होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब कि सेंटर से बाहर की ओर फैलते हैं, जैसे पहले चेहरे पर आएगा और पेट पर आएगा, फिर वहां से पूरे शरीर पर फैलेंगे। चेहरे में भी पहले आगे आएगा, फिर चारों तरफ फैल जाएगा। वैसे ही पेट में नाभि के पास पहले कुछ दाने दिखेंगे, फिर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाएगा। एक दिन के अंदर पूरे शरीर पे दाने निकल जाते हैं।
2: तो डॉक्टर साहब, इनकर अवधि का रहा है?
3: 5 से 7 दिन इसका कोर्स होता है
2: जी।
3: हाँ, किसी किसी में 10 दिन भी खींच सकता है, लेकिन ज्यादातर अमूमन 5 से 7 दिन होता है। और इस रोग की बड़ी सबसे बड़ी ये विशेषता है कि अगर आपको एक बार हो जाए तो 98% संभावना है कि जिंदगी में दोबारा नहीं होगा।
2: अच्छा।
3: लाइफ लॉन्ग इसकी इम्यूनिटी रहती है, जो इसका इम्यूनोग्लोबुलिन है, यानी जो इसके सेल्स जो बनते हैं प्रोटेक्टिव सेल्स इम्यूनिटी वाले, वो हमारे शरीर में प्रिजर्व रहते हैं हमेशा के लिए।
2: अच्छा।
3: और कभी भी अगर दोबारा अटैक होता है तो वो अपने आप एक्टिव होकर उस सेल्स को मार देते हैं, वायरस को मार देते हैं, जिससे ये दोबारा अपना इफेक्ट दिखा नहीं पाता है ज्यादातर। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि दोबारा नहीं हो सकता, लेकिन बहुत ही रेयर है।
2: अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज हम आपसे जानल चाहब कि दर दवाई तो हम लोग करबे करब, लेकिन पहले व्यवहारिक उपाय इनमें का कह सकीला हम लोग?
3: व्यवहारिक उपाय देखिए, ये एक एयरबॉर्न डिजीज है
2: जी।
3: यानी हवा से फैलता है। जैसे जिसको हुआ है उसको सर्दी जुखाम जब होगा तो छींकेगा, खांसेगा, तो वो उसके ड्रॉपलेट्स उसके मुंह से निकलेगा, उसके नाक से निकलेगा, और वो चारों तरफ एयर में फैल जाएगा
2: जी।
3: जो उस अन्य लोग उस वातावरण में रहते होंगे उनको भी फैलने की संभावना रहती है उससे। दूसरा चीज होता है टच से। जैसे जिस जो व्यक्ति इन्फेक्टेड है उसके इरप्शन यानी जो फफोले हैं, छोटे दाने हैं, उसके उसका पानी जहां जहां लगेगा वहां अगर आप टच करते हैं या फिर उस व्यक्ति को टच करते हैं तो भी आप सस्पेक्ट हैं कि आपको भी ये डिजीज हो सकती है। तो उसमें प्राचीन काल में हमारे यहाँ पहले से धार्मिक या जो भी कह लें कि लोग उनको अलग कर देते थे। तो अलग करने का उद्देश्य यही है। जैसे अब अभी समय आपके जो है कोरोना कोविड फैला हुआ था तो मास्क लगाते थे एक प्रोटेक्शन के लिए, वैसे ही उसमें अलग कर देते थे कि और अन्य लोगों से अलग हो जाएं और ये पूरे घर में ना फैले या पूरे क्षेत्र में ना फैले, इसीलिए अलग कर दिया जाता था। हाँ, सेपरेशन। तो ये सबसे पहला महत्वपूर्ण चीज है।
2: बिल्कुल सही बात कहत हूँ डॉक्टर साहब, ये माने एक व्यवहारिक उपाय है। अच्छा, खान पान में का व्यवस्था करें जेके चेचक हो जाता?
3: जिसको चेचक हो जाता है इसमें दाने मुंह तक निकल जाते हैं
2: जी।
3: तो हल्का भोजन लें, तेल मसाला कम हो, ज्यादातर कोशिश करें कि लिक्विड डाइट लें, और बुखार है तो हाइड्रेशन यानी पानी खूब पिए। पानी खूब पिएंगे तो डिहाइड्रेशन नहीं होगा, क्योंकि बुखार, तेज बुखार और बदन दर्द की वजह से लोग पानी अगर कम पिएंगे तो डिहाइड्रेशन होने की भी संभावना रहती है। तो तरल पदार्थ ज्यादा लें, न बहुत ज्यादा गर्म हो न बहुत ज्यादा ठंडा हो। और जैसे अन्न लेना है तो खिचड़ी जैसा एकदम मुलायम बना के लें
2: जी जी,
3: और उसको ठंडा कर लें, गर्म बहुत ना खाएं ना बहुत।
2: डॉक्टर साहब, चेचक का प्रकोप मुंह में भी, गले के अंदर भी हो जाला है और पेट
3: जी जी
2: में
3: उसके दाने पेट आंत वात तक भी पहुंच जाते हैं कभी कभी। ज्यादातर वो मुंह में ही रहते हैं, मुंह के नीचे उतरते कम है, मुंह और गले तक रहते हैं
2: जी जी।
3: बहुत ही ज्यादातर यही देखा गया कि मुंह में भी उसके दाने निकल आए गले तक, जिससे खाने और निकलने में परेशानी होती है। उसके नीचे दाने उसके होते नहीं है, ज्यादातर गले तक रहते हैं 90%। एक्चुअली क्या है कि वायरल डिजीज है और ये लंग का यानी फेफड़े का इन्फेक्शन है, तो बस वहीं तक ये लिमिटेड रहता है, उसके नीचे जाने की संभावना बहुत ही कम होती है। और इसके वायरस का नाम भी मैं आपको बता दूं बीच बीच में, नहीं तो हो सकता है मैं भूलूं, वेरिसेला जूस्टर नामक का एक वायरस होता है जिसकी वजह से ये फैलता है।
2: अच्छा। अच्छा, आपके होम्योपैथिक चिकित्सा में एकर चिकित्सा बा कि एलोपैथिक में चिकित्सा बा कि आयुर्वेदिक में बा?
3: देखिए, ये एक वायरल डिजीज, मैं पहले ही कह रहा हूँ, ये एक वायरल डिजीज है, और वायरल डिजीज वो उस पर भी सेल्फ लिमिटिंग टाइप का है। यानी ये आप दवा लें और चाहे ना लें, वो 5 से 7 दिन में ठीक हो जाएगा अपने आप। लेकिन दवाइयां लेने से जो तकलीफें हैं वो नहीं होंगी। जैसे बुखार आ रहा है तो आपने दवाइयां ली तो बुखार का प्रकोप कम हो जाएगा। दाने निकल रहे हैं वो खुजली करते हैं, बहुत खुजली करते हैं, इतना ज्यादा कि बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, जलन उसमें होती है। आप कुछ दवाइयां ऐसी लेंगे जिससे ये खुजली कम हो जाए, जलन कम हो जाए। हाँ, ज्यादातर लोगों में ये है कि चेचक हो जाने के बाद डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हैं कि माँ रुष्ट हो जाएंगी या माँ का प्रकोप है, तो ऐसा कुछ है नहीं। आप जो है दवाइयां ले सकते हैं, और ये बात ध्यान में रखें कि ये ज़्यादातर रोग को ठीक नहीं करता है, बस आपके सिम्टम्स को कम करता है जिससे
2: अच्छा,
3: आप इस ड्यूरेशन को आसानी से झेल सकें।
2: कौन कौन ऐसा दवाई आपके होम्योपैथिक चिकित्सा में बाई जोने को उपयोग अपन पंचभैया लोग
3: देखिए,
2: कर सकना?
3: होम्योपैथी बहुत ही कारगर है चिकन पॉक्स को क्योर करने में। मैं बता दूं, एक बार एक वाकया मेरे अभी याद आ गया जिसको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। एक बार BHU के पूरे कैंपस में चिकन पॉक्स स्टूडेंट्स में बहुत तेजी से फैल गया।
2: जी जी
3: पूरे जो है BHU को बंद करना पड़ गया था, सारे बच्चों की छुट्टियां करनी पड़ गई थी उसी समय। अभी तक BHU में होम्योपैथिक डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन उस समय के जो VC थे उनको रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने अलग से स्टूडेंट सेल में होम्योपैथिक डिपार्टमेंट खोला और 3 डॉक्टर का अपॉइंटमेंट किया।
2: जी
3: और उस समय शुरुआती दौर में बस यही हमारे लिए ये था कि हम लोग अपनी इफिकेसी को शो करें, और 3 डॉक्टर जो बैठे थे उन्होंने चिकन पॉक्स को बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीटमेंट किया और उसको रोक दिया, सीज किया। तो होम्योपैथिक में कुछ दवाइयां हैं, एक सबसे मुख्य दवा है जो वैरियोलिनम।
2: जी
3: वैरियोलिनम एक ऐसी दवा है जो अगर जिसको जो इन्फेक्टेड है, जिसको हो गया है, अगर उसको देंगे तो उसका ड्यूरेशन जो है सफरिंग का कम हो जाएगा, और अगर जिसको नहीं हुआ है अगर उसको हम दें तो एक प्रोटेक्टिव मेडिसिन का काम करेगा, उसको होगा नहीं, एक
2: अच्छा
3: प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन का काम करेगा। अगर हर 15 दिन में, अगर एक सीजन चल रहा है या क्षेत्र में फैला हुआ है चिकन पॉक्स, हर 15 दिन में वेरियोलिनम 200 की एक डोज दिया जाए तो उस व्यक्ति को चिकन पॉक्स होने की संभावना 90% तक कम हो जाती है।
2: अच्छा
3: होने के बाद दवाइयों की बात करें तो कुछ दवाइयां हैं जैसे रस्टॉक्स है, रस्टॉक्स इरप्टिव फीवर के लिए जाना जाता है हमारे यहाँ। तो अगर चिकन पॉक्स में रस्टॉक्स दिया जाता है तो आदमी को खुजली कम होगी, उसके दानों में जलन कम होगी और वहीं पे थोड़ा सा रुक जाता है दानों की संख्या।
2: अच्छा एक माने एकरे बदे रस्टॉक्स का भी प्रयोग लोग
3: प्रयोग
2: कर
3: किया
2: सका ना।
3: कह सकते।
2: अच्छा जैसे कभी कभी खुजली होला बहुत तेज जौने पंचभैया लोगन के हो जान माता चेचक का प्रकोप हो जाला, तो वो का करें वो समय?
3: देखिए उसके लिए सबसे बड़ा गांवों में देखेंगे आप कि लोग बहुत ही एक अच्छा उपाय करते हैं कि पानी में नीम की पत्ती खौलाकर उसे ठंडा कर लेते हैं और उससे जो है साफ करते हैं। एक बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है,
2: जी
3: बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है। हाँ आप सूदिंग इफेक्ट के लिए नारियल का तेल वगैरह भी लगा सकते हैं जिससे वो जो दाने हैं जब सूखते हैं तो उसके ऊपर जो स्कैब जम जाता है
2: जी जी
3: वो भी बहुत तेज खुजली करती है ड्राई होने की वजह से। तो उस समय आप नारियल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि जैसे इस समय बहुत गर्मी है तो नारियल का तेल भी बर्दाश्त नहीं होगा,
2: जी
3: तो
2: जी
3: बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि आप जो है नीम की पत्ती के पानी से धोएं उसको, और हाइजीन का विशेष ध्यान रखें। हाँ थोड़ी सी उसको न बहुत ज्यादा ठंड में रखना है न बहुत ज्यादा गर्म, पसीना कम हो तो स्प्रेड थोड़ी तकलीफ कम होगी,
2: जी
3: थोड़ा सा उसको पंखे वाली जगह रखें, हवा लगे उसको जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है, तो उसको खुजली कम होगी। और जो होम्योपैथिक में दवा हमने बताई है रस्टॉक्स, वो लेते रहें। थोड़ा एक चीज और ध्यान रखना जरूरी है कि कई बीमारियां हैं जिसको गांव में माता रोग कहते हैं, सब
2: जी
3: एक
2: जी
3: दूसरे से मिलते जुलते हैं। जैसे एक हर्पीज होता है जिसको गांव में एक लंगी माता कहती है, वो एक तरफ निकलता है,
2: जी जी
3: वो थोड़ा सा अलग हटके है। वैसे एक गलफुलनी माता होती है वो गाल में निकलता है जिसको मम्स बोलते हैं,
2: जी जी
3: छोटी माता भी बोलते हैं मीजल्स को, बड़ी माता जो कि स्मॉल पॉक्स होता था वो तो कम्प्लीटली इरेडिकेटेड हो गया, यानी इंडिया से पूरी तरह 1983 में ही खत्म कर लिया गया
2: जी
3: है।
2: जी
3: वो बहुत ही डेंजरस होती थी, जानलेवा भी होती थी, अब वो किसी को नहीं होता है। 1983 से भारत बिल्कुल फ्री है उससे।
2: अच्छा माने मुक्त तो हो गया है भारत। अच्छा डॉक्टर साहब चलत चलावत आपसे ई जानल चाहब कि जौन भी व्यवहारिक उपाय बा ओके कई का स्वच्छता रख का कैसे अपन पंच भाई लोग स्वस्थ रह सकन?
3: देखिए स्वस्थता का तो आज भी वही एक मूल मंत्र है, आप जो है तन मन से आप स्वस्थ रहिए, अपने मन को प्रसन्न रखिए और तन को स्वस्थ रखने के लिए योग करिए। योगा दिवस आ रहा है तो एक रेस्पिरेटरी डिसीज जैसे चिकन पॉक्स, तो आप रोज अनुलोम विलोम करिए, अपने
2: जी
3: फेफड़े
2: जी
3: को स्वस्थ रखिए, मजबूत आप रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे तो कोई रोग आपको अटैक ही नहीं कर पाएगा। तो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है स्वस्थ रहने का।
2: जी
3: अपने आप को एक्टिव रखिए तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे, नहीं तो हमारे चारों तरफ जो है वायरस और बैक्टीरिया हैं, अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर होगी कभी भी वो अटैक कर सकते हैं।
2: माने योग करें व्यायाम करें ऐसे आप स्वस्थ रह सकना। डॉक्टर साहब आज आप अपने कार्यक्रम में ना और अपने पंच भैया लोगन के इतनी अच्छी जानकारी दिलेन, ऐसे अपन पंच भाई लोग जरूर लाभ उठेंगे। एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद पंच भाई।
4: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर PM सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
5: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
6: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
7: हेलो,
4: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
6: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
4: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
6: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
4: ओनली ऑन AIR ओबरा।
8: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
9: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: तो नैना बहन,
1: हाँ बता सोई।
0: देखिए अभी हम लोग संदेश सुन ली हजा, और उसे पहले जो जानकारी ले तर लिया कि बदलत मौसम में चेचक कारण लक्षण और उपचार के बारे में, चेचक का एक बारे में डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता जो उनकी होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी रहला ना, उनसे मुनि भैया फरिया के बातचीत कर ला ना, और हम लोगन सुन ली और गुन ली। तो बस अमल करे की जरूरत बा। देखे सबसे बड़ी बात की अगर हम लोगन कहल जाला ना कि इलाज से बेहतर बचाओ, अगर ध्यान रख ले तो ऐसा बीमारी होबे ना करी। और साथ देखे खुशी के बात की प्रधानमंत्री अपन नरेंद्र मोदी जी जन हुआ वो देखा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 23वीं किस्त जारी कर दिले हुआ आज, और एक तहत 9,44,00,000 से अधिक भी जो पात्र किसान रनन हा उनके बैंक में, उनके खाते में 2000 का राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरित कर दिहल गल बा। तो ऐसे किसान भैया लोगन के चेहरा पर मोहरा बड़ा खुशहाली बा। और देखा हस्तांतरित राशि जौन बा की 18,880 करोड़ से भी अधिक जौन बा की हस्तांतरित राशि भैल बा। और अपने किसान भैया लोगन के अपने खाता में चेक भी कर सकेलन, और एक अधिक जानकारी खातिन के PM किसान पोर्टल पर जा करके विस्तृत जानकारी ले सकेले कि उनके खाता में पहुँचल बा पैसा कि नहीं। तो भाई देखे वो जाके अपन स्टेटस खुद चेक करें, अपने फोन जोन भी उनका रजिस्ट्रेशन फोन नंबर बा ओकरे माध्यम से सब पता चल जाई। और ये कार्यक्रम स्थल जोन एकर राशि भैल शुरुआत मतलब ट्रांसफर ये देखा तारकेश्वर हुगली जिला पश्चिम बंगाल से कैलन अपन मोदी जी। तो भाई खुशी के बात तो है ये बा एक तरह से, तो खुशी एक साथ हम लोगन अपने पंचायती में भी लेहल जाए। मुन्नालाल कोल उनके संगतिया लोगन के गाँव लेगो मन फिर से का कहते
1: चलो सुन लेवल से।

0: तो नैना बहिन
1: हाँ बता सब
0: देखा कितना बढ़िया मुन्ना लाल कोल उनके संगतिया लोगन के गावल मन फिर सुन लोगन के खाते शिक्षा के बेटी हो चाहे बेटा देखा अधिकार दोनों के बा तो दोनों के शिक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखल बहुत जरूरी बा और स्वास्थ्य के प्रति हम लोगन के सतर्क रहल चाहे अपने लिए हो चाहे बचवन के प्रति हो खासतौर पे जो बड़ बुजुर्ग होन देखा धूम्रपान जोन बा कि अपने शौक पदे करना लेकिन बचवा लोगन भी देखा देखी करना तो इससे हम लोगन के सतर्क रहल जरूरी बा कि खुद के स्वास्थ्य के अच्छा बनावे के खातिर ही धूम्रपान के छोड़े के जरूरत बा और बचवा लोगन के अच्छा अच्छा ज्ञान देवे के जरूरत बा। एक साथ आज के पंचेती समेटल जाए चलल जाए
1: सब पंचन के राम राम।

0: एफएम 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। शाम के 6:30 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

0: भैया बोला जय जवान जय किसान और जय विज्ञान।
1: ज्ञान।
0: सुने ना बहन,
1: हाँ बता सा बहन।
0: देखा आज हम लोगों ने अपने किसान वाड़ी बैठकी में शामिल हो गई लीजा, और देखें बड़ी खुशी के बाद बा, चेहरा पे मुस्कान दिखा था कि मतलब कुछ न कुछ खुशी के बात ई बा कि जौन अपन प्रधानमंत्री जी हमन
1: हाँ।
0: देखें अपन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत

0: 20वीं किस्त जारी कर दिया गया बा और एकरे तहत देखा 9,44,00,000 से भी अधिक पात्र किसान भैया लोगन के बैंक खाता में 2,000 का राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरित के माध्यम से ट्रांसफर कर दिया गया बा रैना बही। और 23वीं किस्त के विवरण के बारे में थोड़ा सा जानल जाए कि देखिये हस्तांतरित राशि जोन बा 18,880 करोड़ से भी अधिक बा और लाभार्थी की संख्या भी करोड़ों में बा। और अपन देखा एक कार्यक्रम स्थल के जोन एकर शुरुआत भयला आज तारकेश्वर हुगली जिला पश्चिम बंगाल से कैलन है। तो अपन किसान भैया लोगन देखा जोन ट्रांसफर राशि भल बना एके देखा अपने आधिकारिक वेबसाइट या फिर ऐप के माध्यम से देख सकेले कि राशि आपके खाता में पहुंचल बाकी नहीं। प्रधानमंत्री जी जो राशि पहुंचौले हुआ देखा खुशी के बात तो है ये बा। हम लोगन के आधिकारिक पीएम किसान पोर्टल पर जा करके हम लोगन एक बारे में विधिवत जानकारी प्राप्त कर सकेला जा। तो नैना बहिन देखे यही से देखा तनी तोहरे चेहरे पर खुशी के माहौल दिखात बार होके के भी चाहिए साथ ही साथ देखा हम लोगन के अपने जन भी स्वास्थ्य का बा ध्यान रखल बहुत जरूरी बा चाहे अपन खेत का माटी हो या फिर कोई चीज हो सबका स्वास्थ्य का ध्यान रखल जरूरी बा। देखे फिलहाल आज देखा शनिचर के दिन है और आज होला हेलो किसान वाड़ी फोन इन कार्यक्रम और आज देखा
1: सही हाँ। बात है देखा अपने कार्यक्रम में भी शामिल के लिए है जा कि असली और नकली रोगों की पहचान विशेषज्ञ जो है सोनी कुमार सिंह हम देखे एक ही भी हमने लोग शामिल के लिए है जा और देखा अपने कार्यक्रम में बजार भाव भी देखा पाती भी आयल बाबूलाल मौर्य से रावर्सगंज मंडी का एक भी सुनल जाये और मन मैसायन भी हुई मुन्नालाल कलोर संघाती का और देखा वगैरह साथ ही साथ अपन देखा कुछ और कार्यक्रम में जैसे खेत बचाओ अभियान बारे में भी केंद्रीय कृषि मंत्री जी अपन कुछ बात कहले मैं एक ही भी सुनल चाहिए
0: बहुत सारा चीज बा नैना बहिन। तो देखा आज अपन केंद्र सरकार के 12 वर्ष को उपलब्धि के अंतर्गत फार्म पर मशीनरी बैंक से लाभार्थी अपन विद्यापति जो उनकी प्रगतिशील किसान हवन उनकर देखा का अनुभव बा ओके हम लोग कहतु तो सुन लेल जाए।
1: चलो सुन लेवल जाए
2: मेरा नाम विद्यापति ग्राम गौरही पोस्ट सुकृत विकास खंड कर्मा जिला सोनभद्र मैं किसान हूँ। हम खेती बाड़ी जो तकनीकी करते हैं ये 12 वर्षों से जो और तकनीकी ढंग से जो योजनाएं चल रही हैं उसमें जैसे खेती में जैसे पाली हाउस है उसका नर्सरी उगाना और अच्छे तकनीकी खेती करते हैं कि जो कि उसका लाभ मिले कम परिश्रम में लाभ मिले और कम समय में और उसके साथ साथ जो कुछ 12 वर्षों के बीच में बहुत सारी योजनाएं सरकार की चलती रहीं उसका कुछ योजना का लाभ हमने प्राप्त किया। उस योजना का नाम है जैसे फार्म मशीनरी बैंक हुआ पॉली हाउस हुआ कुछ बीज अनुदान जैसे हुआ औद्यानिक मिशन योजना के अंतर्गत जैसे आपका टमाटर मिर्च टमाटर और लहसुन और आपका प्याज है उसके साथ साथ एक बुंदेलखंड योजना जो चलता है विंध्य उसमें बागवानी योजना के अंतर्गत है उसका भी लाभ लिया हूँ। विशेष जो कि फार्म मशीनरी बैंक इसको लेने के लिए मेन उद्देश्य यह है कि उसको हम ऑनलाइन सिस्टम आता है ऑनलाइन में उसमें जो कृषि विभाग के द्वारा इसका पंजीकरण होता है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए खतौनी बैंक का पासबुक आधार लगता और मोबाइल नंबर 24-25 और 25-26 में यह फार्म मशीनरी बैंक इसमें हमने ऑनलाइन आवेदन किया टोकन फिर निकाला टोकन में उसमें कई लोग भरते हैं टोकन निकालने में 5,000 रुपया का टोकन मनी शुल्क भी लगता है और समिति के सदस्य रहते हैं उनके बीच में लॉटरी निकलता है उस लॉटरी पर निकलने के बाद तो सिलेक्शन होता है सिलेक्शन जब हो जाता है तब प्राप्त हो जिसका क्लियर हो जाएगा तब उसको मैसेज हो जाता है कि आपका ये फार्मेसी या यंत्र जो भी अनुदान लेना थे आपका यंत्र कंफर्म हो गया है इस फार्मेसी बैंक में इसी प्रक्रिया के तहत हमारा चयन हुआ था चयन हुआ उसके बाद तुम आदेशित हुआ तो हमने बिल अपलोड किया। बिल अपलोड करने के बाद तो सत्यापन हुआ। सत्यापन होने के बाद एक सप्ताह का 15 दिन के बाद तो पैसा हमको 40% माने 10 लाख का सामान, जिसमें ट्रैक्टर था, रोटावेटर था और उसमें अब थ्रेसर है, गेहूं का थ्रेसर था। इतना बिल अपलोड करने के बाद करीब हम GST लेकर के 11 लाख का सामान खरीदे हैं, तो उसमें हमको 4 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ।
3: प्रिय किसान बहनों और भाइयों, ये धरती हमारी माँ है। ये खेत केवल अन्न और फल सब्जी नहीं देते, ये हमें जीवन देते हैं। लेकिन अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के और पेस्टिसाइड के असंतुलित उपयोग के कारण ये धरती माता बीमार हो रही, इसकी उर्वरा शक्ति लगातार कम होती जा रही है। और इसलिए हमारे विजनरी और समय के बहुत पहले और बहुत दूर तक की सोचने वाले प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है खेत बचाओ। 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान पूरे देश में चलेगा। इस अभियान के तहत आपके गाँव में कृषि वैज्ञानिक, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के विद्वान, KVK के लोग, कृषि विज्ञान केंद्रों के, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी, जन प्रतिनिधि, जन नेता और प्रगतिशील किसान गांव-गांव जाएंगे और हमारे खेत की आवश्यकता के हिसाब से संतुलित कितना खाद डालना चाहिए इसकी चर्चा करेंगे। नकली पेस्टिसाइड के बारे में बताएंगे, कैसे पहचाने, खाद्य तेल का कम उपयोग करें और अलग अलग योजनाओं के पात्र लाभार्थी भी चिन्हित किए जाएंगे। आप सबसे मेरी अपील है, इस अभियान में भाग लीजिए और वैज्ञानिक जो कहें उनकी सलाह मानकर खाद का संतुलित उपयोग कीजिए। धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की ओर बढ़िए। धरती कहे पुकार के कि अपनी माँ के साथ अन्याय मत करो। हम खेत बचाएं, तभी खेती बचेगी और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचेगा। धन्यवाद।
4: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
5: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
6: पुतला बोल रहे?
5: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
6: मतलब?
5: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
6: परम तो सभी डाले हैं।
5: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
6: सच है?
5: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
6: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
7: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: तो नैना बहिन,
7: हाँ बता सबे,
6: देखा संदेश सुन लीजा हम लोगन, और संदेश के पहले जो हम लोगन अपन सुनल गए कि जो अपन खेत बचाओ अभियान जो 1 से 30 जून तक मनावल जा रहा बा, केंद्रीय मंत्री जी के बात रहा सुनल गए गुनल।

0: रुपये कुंतल, गोल बैंगन 2500 से 3000 रुपये कुंतल, परवल 7000 से 8000 रुपये कुंतल, लौकी 200 से 500 रुपये कुंतल, करेला 1800 से 2000 रुपये कुंतल, भिंडी 500 से 700 रुपये कुंतल, बोड़ा 1000 से 1200 रुपये कुंतल, मूली 1800 से 2000 रुपये कुंतल, लहसुन 8000 से 9000 रुपये कुंतल, धनिया 8000 से 9000 रुपये कुंतल, हरी मिर्च 3500 से 4000 रुपये कुंतल, अदरक 10000 से 12000 रुपये कुंतल, सूरन 5000 से 5500 रुपये कुंतल, पालक 1800 से 2000 रुपये कुंतल, कच्चा आम 3000 से 3200 रुपये कुंतल, पका आम 3000 से 3200 रुपये कुंतल, गाजर 1800 से 2000 रुपये कुंतल, खीरा 3000 से 3200 रुपये कुंतल, चुकंदर 1500 से 1800 रुपये कुंतल, फूल गोभी जो है वो 1800 से 2000 रुपये प्रति सैकड़ा, पत्ता गोभी 2000 से 2200 रुपये प्रति सैकड़ा, नींबू जो रहा हो 200 से 250 रुपये प्रति सैकड़ा में रहा हो।
1: तो बाबूलाल मौर्य भैया के भी धन्यवाद बा। आप देखें हेलो किसान वाड़ी फोन इन कार्यक्रम में आज देखें असली और नकली उर्वरक का पहचान विषय पर विशेषज्ञ सोनी कुमार सिंह जो उनकी विषय वस्तु विशेषज्ञ हवन कृषि विभाग सोनभद्र के।
0: हाँ हाँ।
1: तो देखा अपन किसान भी वालों की का समस्या बा और का मतलब इस समस्या के बारे में कैसे समाधान पावत हुन तो चलो सुनल जाए।
0: चलो सुन लेवल जाए।
2: किसान भाई लोग देखें हम लोगन खेती बाड़ी से जुड़ल है और यदि हम लोगन खेती करत ही और खेती में अक्सर हम लोग रासायनिक दवा और रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करी ला, लेकिन रासायनिक उर्वरक के हम लोगन पहचान नहीं पाई कि कौन असली रासायनिक उर्वरक है कौन डुप्लीकेट यानी नकली रासायनिक उर्वरक है ओकर पहचान हम लोगन कैसे कई सकेला। आज देखें शनिवार का दिन है और आज अपने किसान वाणी कार्यक्रम में हम लोग लेकर आईला हेलो किसान और आज देखें हमारे साथे स्टूडियो में हम अश्विनी सिंह साहब जो उनकी विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विभाग सोनभद्र से आप हम और आज आपसे ही हम लोग जानब कि कैसे हम लोग नकली रासायनिक उर्वरक का पहचान कर सकेला और असली उर्वरक का है ओके कैसे जानी हम लोग ना ओकर उपयोग कैसे करी और एकरे साथे साथे रासायनिक उर्वरक के कम कई का प्राकृतिक खेती की तरफ कैसे हम लोग बढ़ी ए पर भी बातचीत हुई। सुनील सिंह साहब नमस्कार, आपका अपने किसान वाणी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। ये बताओ कि जवन अपन किसान भाई लोग खेती बाड़ी से जुड़ल बा उ जवन असली रासायनिक उर्वरक बा ओके कैसे जानाए और नकली और असली का पहचान कैसे करें।
3: बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसान भाइयों को हमारे प्रणाम बा। नकली और असली रासायनिक उर्वरक पहचानब बड़ा मुश्किल बा और एकर पहचान करे बदे कुछ जोन हो परीक्षण हम किसान भाइयन के एक जोन है कार्यक्रम के माध्यम से हम बताई। उससे पहले किसान भाई आप सब लोगों से एक निवेदन बा कि खेत में जोन असली और नकली रासायनिक उर्वरक बान इसे आपके जोन हो बहुत नुकसान बा। खासकर जो हमारा बहुत सारा दुकानदार आप लोगों के असली के नाम पर नकली उर्वरक दे देते हैं, आप लोगों के पहचान का विधि नहीं पता बा, उसे का होला कि दाम तो आपसे असली रासायनिक उर्वरक के लिए है लेकिन आपके नकली दे दी है, उसे आपके जो है खेत भी खराब हुई, आपका फसल भी खराब हुई और आपके जो है आर्थिक और जो है आपके उत्पादन में भी काफी कमी आई।
2: बिल्कुल सही बात करत हो, कहीं न कहीं अपने किसान भाई लोगन के नुकसान ज्यादा उठावे के पड़ जाला अगर नकली उर्वरक मिल जाला है। देखें अश्विनी सिंह साहब एक फोन भी आए गलबा हम लोगन के कार्यक्रम में। हाँ भैया हेलो।
4: हाँ भैया।
2: हाँ अपन। हाँ हाँ प्रणाम भैया, आप कहाँ से बोलत हो अपन नाम भी बताओ।
4: हमारा नाम राम सिंह भक्त, हमारे दो पाही है एक मुंगहरी और एक पटेहरा।
2: बिल्कुल राम सिंह भैया आपका बहुत बहुत स्वागत बा अपने हेलो किसान कार्यक्रम में। देखें आज हमारे साथे अश्विनी सिंह साहब आयल हुआ अपने स्टूडियो में जो उनकी विषय वस्तु विशेषज्ञ आप हुआ कृषि विभाग सोनभद्र का। आप प्रश्न कह सकाना के नकली और असली उर्वरक का पहचान हम लोग कैसे कह सकीला तो आप प्रश्न करें अपन।
4: हम से यह रिक्वेस्ट कि हम किसान के आर्थिक क्षति से भी हानि पहुंचत है और खेती से भी हानि पहुंचत है जो नकली उर्वरक आया जाता और उनके अगर मामूली हमारे के पास टेस्ट हो जाते चूना लगाओ थे तब वो गए सब था और ना ही एक पानी में डालत है तो गलत ही नहीं और लेकिन ओके फूकत है मुहे से तो ओकर भाप नहीं बन जाता जमन के मेन डाई कहा तो हम कैसे पहचान कर लिया कि एक निराकरण हो सके कि नकली उर्वरक है।
3: हाँ आपको प्रश्न जो है बहुत अच्छा बा। हम जो है एक एक जो हमारे महत्वपूर्ण रासायनिक उर्वरक बा जो में

0: विशेष रूप से यूरिया, डीएपी, एसएसपी, एमओपी और जिंक सल्फेट, ये सब का हम बारी बारी से आपके जो ना पहचान का तरीका बताती। आपके प्रमुख प्रश्न डीएपी से है, काश की डीएपी ही वर्तमान में सबसे महंगा जो ना हमारा रासायनिक उर्वरक बा। तो आप देखिए कि जब डीएपी आप लही हैं, तेकर जो पहचान आप देखिए हैं, तेकर दाना बहुत सख्त होला। आप देखें कि एकदम बिल्कुल हार्ड रॉक के रूप में रही, और ये अलग अलग कंपनी के, कोई के भूरा वाला, कोई काला वाला, कोई बादामी रंग का वाला, अलग रंग के आवाला। ये आपके जो आपकी जो नहीं आपके देखे के बा, और जौन आप एकर अब परीक्षण कैसे हुई कि असली एक नकली बा, तो एके परीक्षण करे के आपके सबसे अच्छा तरीका बा कि डीएपी के आप दाना जौन भी आप ले ली हैं, ओके आप जौन है कोनो चीज गरम करके, और फिर आप दो चार दाना आप ओकर रख दी हैं तवा पे या कोनो चीज पे। आप देखिए कि वो गरम होने के बाद वो दाना हल्का हल्का फूले लगी। अगर वो दाना फूला था तब आप जान जी हैं कि डीएपी है, असली डीएपी। अगर वो दाना आपको फूलत नहीं है, वैसा ही को सही है, तो आप जान जी है कि नकली डीएपी है। ये चीज आप घरे कर सकलन। अब जैसे दुकान पे आप पहुंचलन, दुकान पे ही आपके टेस्ट परीक्षण करे के बाद कि हम दुकान पे ही जाने की असली या नकली है, तो आपके बहुत सरल सा एक तरीका बा कि आप जो तम्बाकू खाए वाला चूना होला, आप वो चूना जैसे दो या चार दाना आप खाद के ले लन, और चूना जो ना ओके मिला जैसे लोग सुरती खाला वो तरीके से रगड़िए अपने हाथ पे या कहीं भी, तो आप देखिए कोमिन बहुत जो है एक तीक्ष्ण गंध आई। एक तरीका और आप देखिए कि जैसे आप वो जो डीएपी अपने हाथ पे ली हैं, तो अगर वो नाखून से आप ओके जो ना खुरची हैं, तो ओकर रंग जो ना आसानी से आपके उंगली पर न लगी, बहुत आसानी से उंगली पे आपके न लगी। अगर नकली उर्वरक रही तो जरूर कलर कर रही, जब कलर
1: कलर
0: जब
1: कर रहे हैं।
0: हाँ जब कलर कर रही, जब आप ओके नाखून से खुरची हैं, तो ओके जरूर कुछ ना कुछ अंश आपके नाखून में लग जाये। तो आप एक दुकान पे जो है दो विधि से आप जो है आसानी से पता कर सकलन कि असली या नकली है।
1: बिल्कुल राम सिंह भैया, आज अपने हेलो किसान कार्यक्रम में आप फोन कैलेन, आपको जो समस्या रहा ओकर समाधान भल, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई लोगन के ही तरीके का तमाम समस्या आवत रहा है। अच्छा ये बतावें कि अभी तो डीएपी का हम लोगन बात कैली, लेकिन अगर यूरिया नकली बा तो वो यूरिया के हम लोगन कैसे पहचान सकेला?
0: अब जो न हम बारी बारी से आपके या अपने समस्त श्रोतागण जो हलो किसान के बाद उनके हम बतावे चाहती कि सबसे पहला चीज यूरिया। आप देखें कि यूरिया अब पहले तो अलग अलग कंपनी के नाम से आता था, अब सभी जो खाद है वो सभी एक तरीके के बोरी में आता था।
1: जी
0: तो आप देखिए कि यूरिया के पहला देखे में ही जब आप यूरिया आप ली हैं, तो उसका दाना बिल्कुल सफेद और बिल्कुल गोला गोला सामान आकार के हुई,
1: जी
0: पहला नजर में ही आपके परीक्षण में आपके दिख जाए। अगर आपके परीक्षण करे कहे कि यूरिया हमारा असली या नकली है, तब आप वही दुकान पर रहें, कहीं कोनो छोटा सा ग्लास में पानी ले लें थोड़ा सा,
1: जी
0: और वही यूरिया खाद के जो है चार छह दाना, 10 दाना, 20 दाना वो पानी में मिला दें। पानी में आप जब मिला दी हैं, तो यूरिया पूरी तरीके से घुल जाए, बिल्कुल घुल जाए जैसे नमक घुल जाला।
1: जी
0: और घुलने के बाद ओकर घोल जो है ठंडा होला, आप उम्मीद जब हाथ डलिए तो आपके लगे कि आपके ठंडक महसूस होता।
1: जी
0: अगर ये तरीके से आपके दिखी तो आप मान ली है कि 100% आपके खाद असली है।
1: जी
0: अगर आप ये चीज मान ले कि दुकान पे नहीं कर पूलन, आप वो खाद के घरे लेके ईलन, घर पे कोई कह दिले कि भैया ये जो खाद लिया भी असली या नकली है, तो आपको परीक्षण कैसे करिए? तो एक परीक्षण तो आप वो तरीके से कर ली है। दूसरा परीक्षण ये है कि आप जो है अपने घर पे कोनो गैस पे कोनो तवा आप गरम कर ले हैं,
1: जी
0: वही पे जो ना आप ओकर चार चार चार 10 दाना आप यूरिया के जो आप बैग लाल हन आप ओके ओपे रख दी हैं। अब देखिए कि 2-4 मिनट बाद पूरी तरीके से वो जो ना खाद गल के उसी तवा पे खत्म हो जाए,
1: जी
0: कोई अवशेष उम्मीद न रही। अगर ईद दिखल तो आप मान ली है कि आपके 100% जो आपके खाद मिलल है वो बिल्कुल शुद्ध हुए है। एकरे बाद हम लोग डीएपी पे चर्चा कर लेवल गल। अगला खाद हमारा सिंगल सुपर फास्फेट,
1: जी
0: चूंकि वर्तमान समय में आप देखिए कि डीएपी और सिंगल सुपर फास्फेट ये दो ऐसा खाद है जो फास्फोरस बदे फास्फोरस के आपूर्ति करे बदे सबसे महत्वपूर्ण खाद है। सिंगल सुपर फास्फेट डीएपी जैसन ही हुई,
1: जी
0: बिल्कुल डीएपी जैसन हुई, डीएपी जैसन आकार, डीएपी जैसन कलर आपके मिली। अंतर इतना है कि सिंगल सुपर फास्फेट में आपके जो 16% फास्फोरस पावल जला और जो आपके डाई अमोनियम फास्फेट

0: में आपके 46% फास्फोरस पावल जला, डाइअमोनियम फास्फेट में आपके 18% नाइट्रोजन पावल जला, लेकिन सिंगल सुपर फास्फेट में आपके नाइट्रोजन छोड़ के आपके जो है सल्फर उमिन जो है कुछ मात्रा में पावल जला।
1: जी
0: अब एकर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, आप किसान भाई कृपया जो है बहुत ध्यान से आप एक सुनिए, कि सिंगल सुपर फास्फेट और डीएपी मंत्र का है
1: जी
0: परीक्षण के दृष्टि से। आप जब डीएपी के आप ओके तवा पे जब आप गर्म करी हैं तो वो आप जो ना ओकर दाना फूल जाई।
1: जी
0: अब सिंगल सुपर फास्फेट के जब आप ओके तवा पे गर्म करी हैं तो ओकर दाना जो है गर्म होने के बाद फूलत नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण पहचान है सिंगल
1: अंतर विभा
0: अंतर विभा
1: जी
0: आ अंतर विभा दोनों में, कि ये पहचान विभा कि डीएपी है कि हमारा सिंगल सुपर फास्फेट है
1: बिल्कुल डीएपी फूल जाई जो सिंगल सुपर फास्फेट बा
0: वो ना फूली।
1: ना फूली
0: हाँ, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण खाद हमने यहाँ जो हम किसान भाई जो हमारे तीनों मुख्य पोषक तत्व तो है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास,
1: जी
0: और पोटास है म्यूरेट ऑफ पोटास। म्यूरेट ऑफ पोटास आप देखिए तो एक लाल रंग के हल्का लाल रंग के वो जो है खाद होला,
1: जी
0: सफेद और लाल दोनों, जैसे लाल जैसे सफेद नमक में लाल मिर्च पाउडर आप डाल दें तो लाल और सफेद रंग का हुई, वही तरीके से आपके म्यूरेट ऑफ पोटास मिलला। एकर पहचान के सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जब कोनो दुकान पे जाइए आप ओके ग्लास ले ली है और म्यूरेट ऑफ पोटास डाल के ओके थोड़ा सा घोल दें, घोलने पर बाद आप देखिए कि ओकर हल्का हल्का जो लाल कलर है वो तैर के ऊपर आ जाए, तैर के ऊपर आ जाए तो आप मान के चलिए कि ये जो है आपके खाद बिल्कुल असली है। एक मुख्य जो है कि सेकेंडरी जो है हमारे एलिमेंट है वो जो है सल्फर और जिंक, ओकरे बदे हमारे एक तत्व आवला जिंक सल्फेट।
1: जी
0: जिंक सल्फेट के पहचाने के एक तरीका ये बा कि आप जिंक सल्फेट ले ली हैं और थोड़ा सा डीएपी ले ली हैं, डाई अमोनियम फास्फेट या फास्फोरस और जिंक ये दोनों जो ना एडवर्स इफेक्ट का, क्या फास्फोरस ही इस लोग कहला कि फास्फेटिक खाद में जिंक का खाद मिला के खेत में न फेंके चाहिए,
1: जी जी
0: खास कि आप एक जब फेंकी हैं तो जो ना एक थक्का बना ले, तो वह मिला एक अच्छी तरीका आप पहचानने के बाद कि आप ग्लास में पानी ले ली हैं और मैंने आप जिंक सल्फेट डाल दी है, थोड़ा सा जो है डीएपी डाल दी है, आप जब घोल बना ओके जो बिल्कुल घुलत जी हैं घुलत जी हैं तो वही चीज वही रिएक्शन आपके आपके ग्लास में भी दिखी जो उनके खेत में दिखला।
1: जी जी
0: यही समाज जो पूर्वज लोग हैं या पूर्व के वैज्ञानिक हैं आप सभी किसान भाई उनके एक सलाह देवलन कि जो ना जिंक सल्फेट और फास्फोरस या किसी भी फास्फेटिक खाद या जिंक वाली खाद की एक साथ मिला के
1: कभी न प्रयोग
0: कभी
1: करें
0: न
1: खेत में।
0: खेत में प्रयोग करे चाहिए।
1: देखें डॉक्टर साहब एक फोन भी आ गल बा। हेलो।
2: हेलो,
1: हाँ भैया आप कहाँ से बोलत हो, अपन नाम बतावा।
2: हम छक्का ब्लॉक के अंतर्गत रविथन गांव से बोलते, चौपन थाना के हल्के में पड़ला।
1: जी जी अपन नाम बतावा भैया।
2: हमारा रविथन गांव, हमारा नाम है भोला।
1: भोला भैया आपका अपने हेलो किसान कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। देखें आज हम लोगन के साथ अश्विनी सिंह साहब हवा, और नकली उर्वरक के कैसे हम लोगन पहचानी यही विषय पर बातचीत होता, तो आप अपन प्रश्न करें अश्विनी सिंह साहब से।
2: प्रश्न के बाद कि हमन खेते में डाली रहा था खाद, ऐसे उजड़े रह जाए और फसल भी पैदावार भी अच्छा नहीं हो, और धीरे धीरे खेत के मट्टी पर भी प्रभाव पड़ा था।
0: हाँ, आप बिल्कुल सही समय पे सही प्रश्न पूछ लेना। खेत के मिट्टी पे प्रभाव जौन पड़ा था वो हम लोग के जौन अंधाधुन रासायनिक उर्वरक के हम लोग प्रयोग कर चुकल है, तो प्रयोग कैले के बाद अब जौन खेत के क्षमता उतना नहीं रह गल कि हम कितनों रसायन के प्रयोग करें और जौन खेत के उत्पादन या हमारा उत्पादन बढ़े। एकरे बदे आपके दो तीन चीज करे को ही वही विषय पर हम लोग अभी चर्चा भी करे जाती। सबसे पहला और सबसे अच्छा समय चला था कि आपके जौन खेत बा जौने में आप खेत में जब रसायन डाला था तो आपको कहा था खेत पे वो जौन लाल लाल परत बन जाता या सफेद सफेद परत बन जाता,
2: जी
0: तो आप देखें कि इस समय जो है आपके यहाँ जो हरी खाद के आप अपने खेत में प्रयोग करें जैसे सनई ढैचा का,
2: जी
0: आप अपने खेत में जो है सनई ढैचा की बोए के सबसे अच्छा समय चला था। आज ही आप जो है ये कार्यक्रम सुनने के बाद आप कल ही बीज ला के अपने खेत में कर बुआई कर दें, आप जब बुआई कर दी हैं तो उसे जो है आपके खेत का ऑर्गेनिक कार्बन आपका सही रही और आपके जो है खेत में नाइट्रोजन की मात्रा भी जो है बढ़ जाए।
2: जी
0: दूसरी बात ओकरे बाद आप जोन कहा था कि एक समय अब आ गल है कि हम अपने खेत में अत्यधिक जोन अत्यधिक रासायनिक उर्वरक के प्रयोग के लिए ओकरे जगह पे हमने के प्राकृतिक खेती के करे के समय आ गल। प्राकृतिक खेती करे के मतलब बस इतना है कि आज से लगभग लगभग 30 या 35 साल पहले जैसे खेती होत रहल, उमेन कुछ नया नहीं है, बस इतना है कि जौन आज से 35 साल पहले खेती होत रहल वही तरीके से अब हम खेती करब, बस इतना चीज बा।
1: बिल्कुल भोला भैया, आज अपने हेलो किसान कार्यक्रम में आप फोन कैलन और जौन आपका प्रश्न रहल है, जौन समस्या रहल ओकर समाधान मिलल अश्विनी सिंह साहब से, एक रे दे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। अश्विनी सिंह साहब चलत चलावत अपने किसान भाई लोगन के एक संदेश दे दें।
0: सबसे पहले तो हम अपने किसान भाइयों से एक विशेष अपील करब कि सब किसान भाई जितना भी आप चाहे खाद खरीदत हो, चाहे बीज खरीदत हो, चाहे आप दवा खरीदत हो, आप जो कृषि विभाग द्वारा लाइसेंस देवल गल दुकान है आप वहीं से बीज खरीदें, खाद खरीदें, दवा खरीदें और ये सारा चीज खरीदने के बाद ओकर पक्के बिल अवश्य रखें।
1: बिल्कुल सही बात कहते हैं अश्विनी सिंह साहब, जौन अपन प्राचीन ज्ञान बा ओके आधुनिक विज्ञान से जोड़ने का जरूरत है, तब अपन माटी माई भी सुरक्षित रही है, और जब माटी माई सुरक्षित रही है तब सुरक्षित उत्पादन भी हम लोगन के मिली। आज आप अपने हेलो किसान कार्यक्रम में आईना और इतना बढ़िया जानकारी अपने किसान भाई लोगन के देलेन, जौन भी उनकर प्रश्न रहल है, समस्या रहल है, ओकर समाधान कैलेन, एकरे बदे आपके बहुत बहुत
3: बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों की तरफ से भी। नैना बहिन देखा इतना बढ़िया जानकारी मिलल और जानकारी सुन करके अब हम लोगों के पता चलल कि असली और नकली जन उर्वरक बा ओके कैसे पहचान करके हम लोगों का प्रयोग करल जाए और विश्वसनीय जन दुकान बा वहीं से हम लोगों खरीदल जाए। और देखें जौन भी पारंपरिक उर्वरक होला ओकरे अपेक्षा घुलनशील उर्वरक जौन बा की ज्यादा फायदेमंद होला और एकर हम लोगन के जरूर प्रयोग करे के चाहिए। कहें कि देखें हम लोगन का होला कि जैसे यूरिया का प्रयोग करेला तो कहीं कहीं दाना छिटा जाला, कहीं बाकी रह जाला, और जैसे स्प्रिंकलर या फिर ड्रिप सिंचाई के माध्यम से अगर घुलनशील उर्वरक का प्रयोग करेला हम लोगन तो देखें जड़ के साथ साथ पत्ता मतलब हर चीज पे एक समान जौन बा की उर्वरक पड़ेला और पैदावार बढ़िया होला और एक समान जौन बा की उत्पादन होला। तो अभी के साथ आज के अपन बैठकी समेटे के भी बखत हो रहा बा तो चलल जाए।
4: चलो चलो
3: भैया बोला जय जवान जय किसान जय विज्ञान।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।
1: अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम किसान वाणी। FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। शाम के 7 बज रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: पटियाला हाउस। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे शफकत अमानत अली को। इस गीत को लिखा था अन्विता दत्त गुप्तम ने और संगीत दिया था शंकर एहसान लॉय ने। श्रोताओं, हीट वेव के समय शरीर को ठंडा रखना बहुत जरूरी होता है। हमें दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए ताकि शरीर में पानी की कमी बिल्कुल भी न हो। बाहर निकलते समय सिर को ढक कर निकले। धूप में अधिक देर रहने से चक्कर, कमजोरी और लू लगने का खतरा बढ़ जाता है, इसीलिए इस मौसम में सावधानी बरतिए और स्वस्थ रहिए।
1: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
1: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।
4: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
5: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: कभी उसे नूर नूर कहता हूँ,
8: कभी मैं हूर हूर कहता हूँ।

सुरमा इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे शंकर महादेवन को। इस गीत को लिखा था गुलजार ने और संगीत दिया था शंकर एहसान लॉय ने। आकाशवाणी ओबरा से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत आइए आपको सुनवाते हैं श्रेया घोषाल की आवाज में। फिल्म का नाम है सिंघम। स्वानंद किरकिरे के बोल हैं और संगीत दिया है अजय अतुल ने।

सिंघम। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे अजय गोगवले और श्रेया घोषाल को। इस गीत को लिखा था स्वानंद किरकिरे ने और संगीत दिया था अजय अतुल ने। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। शाम के 7:15 हो रहे हैं। श्रोताओं, आइए आपको जानकारी देते आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम होगा राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती। और रात्रि 10 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। रात्रि 8 आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुनेंगे राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष विभाग डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु से बातचीत। कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। और सुगम संगीत, ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 8:30 पर। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का समय होगा रात्रि 9:15 पर। और सबरस, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:31 पर। श्रोताओं, ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाली शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। श्रोताओं, खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना सुनिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार सीमा, पत्नी प्रकाश, निवासी ग्राम तिलौली कला, नई बस्ती, थाना कर्मा, जनपद सोनभद्र, ये दिनांक 30 मार्च 2026 से लापता है। हुलिया इस प्रकार है, उम्र 30 वर्ष, लंबाई 5 फीट हुलिया, गोरा रंग, लंबा चेहरा, इकहरा बदन, पहनावा लाल रंग की साड़ी, काली ब्लाउज और काला चप्पल। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। श्रोताओं, एक और सूचना सुनिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार सुनीता देवी, पत्नी राजकुमार, निवासी ग्राम रणहोर, थाना अनपरा, जनपद सोनभद्र, ये दिनांक 3 फरवरी 2026 को अपने 2 साहिल उम्र 5 वर्ष और चांदनी उम्र 3 वर्ष के साथ लापता है। हुलिया इस प्रकार है, उम्र 30 वर्ष लगभग, लंबाई 5 फीट 2 इंच, हुलिया गोरा रंग, गोल चेहरा, इकहरा मजबूत जिस्म, काले लंबे बाल, पहनावा लाल रंग की साड़ी। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। सूचना समाप्त हुई। FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: TLI है ना?
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
4: आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार।

0: पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जारी की किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त। प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक किसान हुए लाभान्वित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। मुख्यमंत्री ने ललितपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज सहित 221 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, बुंदेलखंड में बनेगा प्रदेश का पहला फार्मा पार्क। नीट यूजी की पुनर्परीक्षा कल देश के 551 शहरों में होगी आयोजित। प्रदेश में अभ्यर्थियों को राज्य परिवहन निगम की बसों में किरायों में मिलेगी 50% की छूट। और प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण का कार्य पूरा। दूसरा चरण अगले वर्ष 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच होगा संपन्न। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मुक्ता शर्मा। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के हुगली में तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी की। इसके अंतर्गत 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से लगभग 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई। इनमें उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं, जिनके खातों में 4,352 करोड़ रुपए की राशि पहुंची है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देश भर के किसानों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया।
1: आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
0: प्रदेश भर में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी से इस कार्यक्रम में सहभागिता की। श्री योगी ने प्रदेश के किसानों की ओर से इस सौगात के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि अन्नदाता के परिश्रम, सम्मान और समृद्धि के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का सशक्त प्रतीक है। प्रदेश के किसानों ने खुशी व्यक्त करते हुए इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। जौनपुर के एक लाभार्थी ने कहा,
2: किसानों को बहुत फायदा मिलता है। बीज लेने के लिए, खाद लेने के लिए, जुताई देने के लिए काम आ जाता है। उसके लिए हम प्रधानमंत्री के आभारी हैं। जैसे छोटे मोटे किसान हैं, उनको फायदा हो जाता है, इससे किसानों को आसान हो जाता है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ललितपुर में 1,766 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित राजकीय मेडिकल कॉलेज सहित 221 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड विकास का एक मॉडल बन रहा है। उन्होंने कहा कि हर घर नल योजना बुंदेलखंड में साकार हो रही है। शुद्ध पेयजल लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा है।
3: अब मुझे अच्छा लगता है कि हमारी बहन और बेटियां, हमारी माताएं सिर में घड़ा लेकर के नहीं, हर घर नल की योजना साकार हो रही है। बुंदेलखंड के अंदर शुद्ध पेयजल उनके घर तक पहुंचाने का काम हो रहा है, तो बुंदेलखंड अब एक मॉडल बन रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी अगर हम कहीं बसाने जा रहे हैं, तो वह भी बुंदेलखंड में बसाने जा रहे हैं।
0: श्री योगी ने कहा कि ललितपुर में प्रदेश का पहला फार्मा पार्क विकसित किया जा रहा है।
3: आज ललितपुर बदल चुका है। अब ललितपुर के पास अपना मेडिकल कॉलेज भी है, अटल आवासीय विद्यालय भी है, और अभी 1,500 एकड़ क्षेत्रफल में हम उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क आपके ललितपुर जनपद में बनाने जा रहे हैं।
0: मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा कल भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,69,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। अभ्यर्थियों को इस बार परीक्षा में 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। इससे पहले 3 मई को हुई नीट की परीक्षा कथित पेपर लीक विवाद के कारण रद्द कर दी गई थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और नकलविहीन ढंग से कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। केंद्रों पर मजिस्ट्रेटों की तैनाती के साथ पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। प्रदेश में 59 जिलों में नीट की पुनर्परीक्षा होगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश रेलवे लखनऊ मंडल विशेष अनारक्षित स्पेशल रेलगाड़ियां चला रहा है। वहीं प्रवेश पत्र दिखाने पर अभ्यर्थियों को राज्य परिवहन निगम की बसों में किराए में 50% की छूट मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रदेश में भी योग के दिवस के अवसर पर सभी जनपदों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
4: प्रदेश में सभी जनपदों में योग दिवस के अवसर पर कल योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी में, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज और ब्रजेश पाठक लखनऊ में योग दिवस पे होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं लखनऊ स्थित राजन भवन में इस अवसर पर महिला योग सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के नेतृत्व में महिलाएं योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करेंगी। इसी तरह विभिन्न जनपदों में प्रदेश सरकार के मंत्री और जनप्रतिनिधि योग दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे। योग दिवस पर विद्यालयों में सामूहिक योगाभ्यास और योग से जुड़े जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां विद्यार्थियों को योग के शारीरिक और आध्यात्मिक लाभों के बारे में जानकारी दी जाएगी। समाचार कक्ष से सुषमा कुकरेती।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब शेष समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों और समावेशी विकास की यात्रा को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज झांसी में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुलामी की मानसिकता को लेकर कोई समाज स्वावलंबी नहीं हो सकता, आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। आत्मनिर्भरता के लिए गुलामी की मानसिकता को दूर कर अपनी विरासत के प्रति गौरवान्वित होना चाहिए। मेरठ की ग्राम पंचायत फफुंडा स्थित प्राथमिक विद्यालय में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री डॉ सोमेंद्र तोमर ने ग्रामीणों से संवाद करते हुए कहा कि आज प्रदेश विकास, निवेश और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है।
5: सरकार आपके द्वारा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा हमेशा प्रयास यही है कि सरकार अपने जो सम्मानित नागरिक है उनसे संवाद करके उन सुझावों के साथ हम लोग प्रदेश और देश के विकास में उनकी सहभागिता हो। आज भी हम लोगों ने यहाँ पर जो स्टॉल्स के माध्यम से जो जिले के अलग अलग विभाग है उनकी सबकी स्टॉल्स लगी और यहाँ पर जो उनके सुझाव है, यदि कोई पेंशन के लिए था तो उसका भी रजिस्ट्रेशन हुआ है। लेकिन हमारी स्वयं सहायता समूह, 32 स्वयं सहायता समूह इस गांव के अंदर है, उसकी जो मात्र शक्ति का योगदान हमारे इस गांव के लिए, इस मेरठ के लिए हो रहा है, उसका भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों की जानकारी दे रहे हैं।
6: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकान जनगणना का काम शत प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। पहले चरण में निर्धारित 22 मई से 20 जून 2026 तक घरों की गणना का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। राज्य के जनगणना कार्य निदेशालय के अनुसार प्रदेश के सभी 75 जिलों, 350 तहसीलों और 1 लाख से अधिक गांवों में मकान सूचीकरण के लिए 5 लाख से अधिक प्रगणकों और पर्यवेक्षकों ने सक्रिय भूमिका निभाई। जनगणना का दूसरा चरण 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 तक चलेगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की गणना होगी। इसी चरण में जाति गणना की भी की जाएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जारी की किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त। प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक किसान हुए लाभान्वित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। मुख्यमंत्री ने ललितपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज सहित 221 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, बुंदेलखंड में बनेगा प्रदेश का पहला फार्मा पार्क। नीट यूजी की पुनर्परीक्षा कल देश के 551 शहरों में होगी आयोजित। प्रदेश भर में अभ्यर्थियों को राज्य परिवहन निगम की बसों में किराए में मिलेगी 50% की छूट। और प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण का कार्य पूरा। दूसरा चरण अगले वर्ष 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच होगा संपन्न। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
7: APJ अब्दुल कलाम का कथन है, लक्ष्य के प्रति एकाग्र समर्पण लक्ष्य को पाने का एकमात्र साधन है।
8: FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का उभरा केंद्र है। शाम के 7:31 हो रहे हैं और प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम का पहला गीत आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म हीरोज में सोनू निगम की आवाज में।

0: हीरोज इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति को। इस गीत को लिखा था जलीज शिरफानी ने और संगीत था साजिद वाजिद का।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
3: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
4: हेलो,
2: फिर क्या फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
3: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
2: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
3: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
2: ओनली ऑन AIR ओबरा।
5: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
6: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: कार्यक्रम का अगला गीत आइए आपको सुनाते हैं अमित मिश्रा और नीति मोहन की आवाज में। फिल्म का नाम है लखनऊ सेंट्रल। अधीश वर्मा के बोल हैं और संगीत है रोचक कोहली का।

0: लखनऊ सेंट्रल। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे अमित मिश्रा और निधि मोहन को। आकाशवाणी ओबरा से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
4: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए आपको सुनाते हैं फिल्म ब्लड मनी से मुस्तफा जहीद की आवाज में। शब्द सुना सईद कादरी के हैं और संगीत है जीत गांगुली का।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए आपको सुनाते हैं अमाल मलिक और अरमान मलिक की आवाजों में। फिल्म का नाम है कपूर एंड सन्स। इस गीत को लिखा है अभिरुचि चांदनी और संगीत है अमाल मलिक का।

0: कपूर एंड सन्स इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे अमाल मलिक और अरमान मलिक को। इस गीत को लिखा था अभिरुचि चौधरी और संगीत दिया था और अमाल मलिक ने। और इसी के साथ कार्यक्रम सबरस अब समाप्त होता है।
1: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात,
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए,
1: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।

एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ पलों में आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुनेंगे राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष विभाग डॉ दया शंकर मिश्र दयालु से बातचीत।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष विभाग डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु से डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी की बातचीत सुनिए।
1: हमारी भारतीय

मेडिकल कॉलेज आयुर्वेद के हैं, 9 मेडिकल कॉलेज होम्योपैथ के हैं, 2 मेडिकल कॉलेज यूनानी के हैं और 2 नए मेडिकल कॉलेज हमारे उत्तर प्रदेश में नए मिले हमको, बल्कि आप कहिए 3 मिले। एक आयुर्वेद का नया मेडिकल कॉलेज अयोध्या में बन के तैयार है और एक बरेली में यूनानी का मेडिकल कॉलेज बन के तैयार है जो

0: गांव गांव में बने हुए उस पर भी योग शिविर लगाए जाएंगे। जैसे वेलनेस सेंटर की बात आपने कही कि गांव गांव तक पहुंच चुके हैं, तो ये अमृत सरोवरों पर ये है कि 21 तारीख को सब लोग योग करेंगे। इसकी क्या तैयारी शासन प्रशासन की
1: देखिए,
0: तरफ से भी अलग
1: अब
0: से है
1: तो
0: क्या?
1: पूरा देश इसमें जुड़ जाता है, संसार जुड़ जाता है, दुनिया के 177 देश योग करते हैं। विश्व योग दिवस के दिन की भी विशेषता है कि वो 365 दिनों का सबसे लंबा दिन होता है, योग दिवस का 21 जून। और 21 जून को सारा संसार आपको योग करता दिखाई देता है। तो क्या नदी, क्या तालाब, क्या पोखर, क्या सरोवर, क्या नदियों का किनारा, क्या पौराणिक स्थल, क्या धार्मिक स्थल, जितने भी ऐतिहासिक, काशी में अगर वो होता है तो भगवान गौतम बुद्ध की उपदेश स्थली, भगवान गौतम बुद्ध को स्वारिप्पा का जनक माना जाता है,
0: जी
1: जो देश के पर्वतीय अंचलों में कश्मीर से लेकर लाहौल स्पीति घाटी से होते हुए हिमाचल होते हुए पूर्वोत्तर राज्यों तक एक विधा प्रचलित है, इसको स्वारिप्पा कहते हैं। उत्तर प्रदेश को एक और सम्मान अभी हुआ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने काशी में तिब्बती विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय में स्वारिप्पा का बहुत ही एडवांस हॉस्पिटल उन्होंने अभी देश को, उत्तर प्रदेश को दिया है। तो हर विधाएं अब मिल के समाज को स्वस्थ और निरोग बनाए रखने के लिए, मन को, शरीर को, आत्मा को खुश बनाए रखने के लिए, स्वस्थ बनाए रखने के लिए, अब उसकी सबसे बड़ी ताकत योगा है। और योग कहीं भी किया जा सकता है। और ये जो नदियों का आह्वान है, पौराणिक स्थलों का आह्वान है, ऐतिहासिक स्थलों का आह्वान है, शहर के पार्कों में है, गांव के मंदिरों पर है, तो जहां व्यक्ति एकत्र हो सके, जहां उसको बैठना, जहां नेचर हो, जहां प्रकृति हो, शुद्ध सुबह की हवा मिले उसको, तब उसकी प्राणवायु जब उसको मिलेगी तो उसकी ऊर्जा बढ़ेगी और वो स्वस्थ मन से, अच्छे मन से योग करेगा। और एक दिन का योग नहीं, ये तो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है। जैसे सप्ताह व्यापी, इसके पहले हम लोग 1 महीने का शेड्यूल बनाते थे, 15 दिन का शेड्यूल बनाते थे। तो योग को अपने जीवन शैली में शामिल करना
0: शामिल करना
1: है,
0: है।
1: योग को अपनाना है। योग सिर्फ एक दिन करने से कोई व्यक्ति स्वस्थ निरोग नहीं होगा,
0: बिल्कुल
1: लेकिन जब आपने उसको अपने जीवन में अपना लिया तो निश्चित ही आपका मन, आपका शरीर, आपका तन, और कहते हैं ना कि आत्मा तक आपकी खुश होगी, पवित्र होगी, शुद्ध होगी, और एक अच्छे मन से, एक अच्छे स्वस्थ नागरिक के रूप में आप इस देश के हित में काम कर सकेंगे।
0: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। और मुझे लगता है कि ये जिन शब्दों का प्रयोग आपने किया है, इन शब्दों को सुनते हुए या प्रस्तुत करने की जो कला आपके पास है, इसी से मंत्रमुग्ध होकर के आदमी योग तो करेगा ही करेगा, आयुष्य भी जुड़ेगा। क्योंकि बॉटनी से पढ़ा हुआ छात्र अगर साहित्य और संस्कृति की भी बात बेहतर ढंग से रख सके, बेहतर ही नहीं बहुत अच्छे ढंग से, उसके लिए तो फिर सुनने को जी चाहता ही है। और सुनते रहने की बाध्यता हमारी यहीं समाप्त हो जाती है क्योंकि समय की सीमा में हम लोग बंधे रहते हैं। अब आकाशवाणी से तो आप जानते ही हैं, छोटेपन से ही सुनते रहे होंगे। फिर कभी मौका मिलेगा तो जरूर आपसे अपेक्षा होगी कि आप हमारे स्टूडियो इसी तरह से पधारेंगे और आयुष के तमाम जो इसके बिंदु हैं
1: ये
0: उन पर भी।
1: हजारों साल की विरासत है,
0: इसीलिए
1: देश के
0: तो
1: प्रधानमंत्री जी ने उसको विकास में उपयोग किया
0: अब
1: है।
0: काशी का जन हमारे बीच है तो बार बार तो अपेक्षा होगी ना कि हाँ हमारे साथ साथ जुड़ते रहें। बहुत अच्छा लगा वास्तव में। और आपकी वाणी के जो भी ये शब्द हमें प्रेरित कर सकते हैं वो बहुत प्रेरित कर रहे हैं। और लोगों से भी अपेक्षा अपने श्रोताओं से कि आप आयुष को अपनाएं, अपनी जीवन शैली को बेहतर से बेहतर
1: करें
0: बनाएं।
1: योग रहे निरोग का नारा देते हुए
0: बिल्कुल
1: अपनी
0: आपका
1: बात
0: ये
1: समाप्त
0: नारा
1: करिए।
0: पहले से भी चल रहा है, आपको
1: जी
0: द्वारा दिया जा रहा है तो और प्रभावी होगा। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ कि आपसे पुनः मुलाकात होगी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष विभाग डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु से डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी की बातचीत। ये विशेष कार्यक्रम अब संपन्न होता है।
3: FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है।
4: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात,
5: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
6: हेलो,
4: फिर क्या फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
5: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए,
4: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
5: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
4: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। रात्रि के 8:15 हो रहे हैं।

प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आइए आपको सुनाते हैं फिल्म प्रेम रोग से लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में। शब्द रचना संतोष आनंद के हैं और संगीत यह लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: कार्यक्रम का अगला गीत आइए आपको सुनाते हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में। फिल्म का नाम है प्यासा सावन। इस गीत को लिखा है संतोष आनंदनी और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.7 पर रात्रि के 8:30 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। तो चलिए कार्यक्रम का आगाज करते हैं और सबसे पहले सुनते हैं जगजीत सिंह को। शब्द रचना गुलजार के हैं।

0: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आकाशवाणी ओपरा से इस वक्त आप सुन रहे कार्यक्रम सुगम संगीत। अगली प्रस्तुति आइए आपको सुनाते हैं अनुराधा पौडवाल और चंदन दास की आवाजों में। शब्द रचना डॉक्टर बशीर पत्र के हैं।

अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और पंकज उधास को, और इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब समाप्त होता है। FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में यानी कि रात्रि के 8:45 पर आप सुनेंगे हिंदी समाचार और रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
2: यह मोर आंतरिक कामना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था।

0: आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
0: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9,00,00,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
1: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2,500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1,500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
3: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेइचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट

0: यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
1: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
3: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
2: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुँचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
4: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
2: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। यह फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों के कुछ ही घंटों बाद हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल। परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu says India has consistently emerged as voice of peace, dialogue and cooperation as it believes issues can only be resolved through mutual discussion and not war. Prime Minister Narendra Modi asserts tribal communities are emerging as active participants in India's development journey, launches development projects worth more than 47,000 crore rupees in Odisha. Prime Minister releases 23rd installment of PM Kisan Samman Nidhi scheme of over 18,000 crore rupees. Prime Minister to lead International Day of Yoga 2026 celebrations at Kolkata's historic Red Road tomorrow. NEET UG 2026 re-examination to take place tomorrow under strict vigil. Iran closes Strait of Hormuz over ceasefire violation. And in cricket, India clean sweep 3-match series against Afghanistan 3-0, defeating the visitors by 9 wickets in third ODI at Chennai. President Draupadi Murmu today lauded Prime Minister Narendra Modi's leadership, stating that he has significantly enhanced India's prestige and influence on the global stage through his visionary governance and constructive engagement with world leaders. Addressing a large public gathering at Rai Rangpur in Odisha's Mayurbhanj district, organized to mark the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi government, in the presence of Mr. Modi, the President said India has consistently emerged as a voice of peace, dialogue and cooperation under Prime Minister Modi's stewardship.
6: Since assuming the office, Prime Minister Narendra Modi has taken several steps in the national interest. This month, he set a record for the longest continuous tenure as an elected Prime Minister. On behalf of all citizens, I congratulate him on this historic achievement. I wish that he may continue to benefit the people of the country with his vision and lead the nation in realizing the resolve to transform India into Viksit Bharat by 2047.
5: Addressing the public gathering, Prime Minister Narendra Modi lauded Odisha's progress as the state completed 2 years under Chief Minister Mohan Charan Majhi, saying it is moving rapidly on the path of development and contributing significantly to the growth of eastern India. He said the centre's Purvodaya vision aims to drive India's growth through the rapid development of eastern India.
7: Odisha mein aarthik gatividhiyan, nivesh aur udyogon ko आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास।

0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक में हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पापा लाइए 3,000।
3: क्यों भाई?
2: मेरी पॉकेट मनी।
3: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
2: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
3: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
2: अपना मोबाइल लाओ,
3: ले ले।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।
6: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
7: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
8: हेलो,
6: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
7: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
6: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
7: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
6: ओनली ऑन AIR ओबरा।

आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत दिया था आरडी बर्मन ने। झील के उस पार इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। श्रोताओं, दोपहर के समय सूर्य की किरणें सबसे तेज होती हैं, तो इस समय बिना जरूरी काम के बाहर ना निकलें। यदि बाहर जाना बहुत जरूरी है तो पानी की बोतल साथ में रखें और बार बार पानी पीते रहें। अधिक देर तक धूप में रहने से शरीर का तापमान बढ़ जाता है और ऐसे में लू लग सकता है, तो सुरक्षित रहें, सावधान रहें।

कारवां इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले को। इस गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत था आर डी बर्मन का। इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब समाप्त होता है। FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। अगला प्रसारण अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी है। आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
1: साइंस, लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन।

नमस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के जून महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में

मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट और स्मृति शेष में नमन जानी मानी गायिका सुमन कल्याणपुर को सबसे पहले संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में 21 जून को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी सन 1982 में। 21 जून का ही दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इस दिन होता है समर सोल्स्टिस यानी ग्रीष्म संक्रांति, साल का एक सबसे लंबा दिन, ताकि आप संगीत की स्वर लहरियों का ज्यादा मजा ले सकें। संगीत सिर्फ एक कला नहीं, संगीत जीवन का सुकून है। संगीत न होता तो कितनी सूनी होती ये दुनिया। आज चित्र भारती के संपादकीय में हम विश्व संगीत दिवस पर लाए हैं एक खास पेशकश, ऐसे कलाकारों की बातें जो वैसे तो शास्त्रीय संगीत में सक्रिय रहे पर जब वो फिल्म संगीत के मैदान में आए तो उन्होंने अपनी और ज्यादा चमक बिखेरी और हमें दिए कुछ अनमोल गाने, यानी कुछ ऐसे गायक और संगीतकारों की बातें जो शास्त्रीय संगीत की दुनिया से आते हैं। शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत हमेशा दो अलग अलग ध्रुव रहे हैं। एक लंबे समय तक शास्त्रीय संगीत की दुनिया में फिल्म संगीत को कमतर माना जाता रहा और शास्त्रीय संगीत के कलाकारों ने फिल्म संगीत से बाकायदा दूरी बनाकर रखी। पर फिर ऐसा वक्त आया जब शास्त्रीय संगीत की दुनिया के दिग्गजों ने फिल्म संगीत की जमीन पर अपने कदम रख ही दिए। अगर शुरू से बात करें तो बेगम अख्तर जैसी दिग्गज गायिकाओं ने फिल्मों में काम भी किया और गाने भी गाए। सन 1930 के जमाने में उन्होंने एक दिन का बादशाह, नल दमयंती और जवानी का नशा जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1942 में उन्होंने महबूब खान की फिल्म रोटी में संगीतकार अनिल बिस्वास के

निर्देशन में गाना भी गाया। इसके अलावा सत्यजीत रे ने सन 1958 में एक फिल्म बनाई जलसा घर। इस फिल्म में उस्ताद विलायत खान साहब का संगीत था। ये फिल्म अपने लाजवाब संगीत के लिए जानी जाती है। बेगम अख्तर ने इस फिल्म में ये

ऐसे मौकों पर फिल्म संगीत अपनी अप्रतिम ऊंचाई तक पहुंच जाता है। शास्त्रीय संगीत के कई दिग्गजों ने फिल्म संगीत में अपना योगदान दिया है। सन 1952 में विजय भट्ट ने एक फिल्म बनाई बैजू बावरा। इस फिल्म के लिए संगीतकार नौशाद ने राजी किया मालवा घराने के संस्थापक उस्ताद अमीर खान साहब को। कितना सुखद था कि इस फिल्म का एक गाना पंडित डी वी पलुस्कर और उस्ताद अमीर खान साहब ने साथ में गाया था।

ये जिक्र जरूरी है कि उस्ताद आमिर खान साहब ने सिनेमा के लिए शायद सबसे पहले नौशाद के ही संगीत निर्देशन में गाया था। फिल्म थी सन 1954 में आई शबाब। दूसरी बार उन्होंने सिनेमा के लिए तब गाया जब वी शांताराम ने फिल्म बनाई झनक झनक पायल बाजे, साल 1955। सन 1956 में राजा नवाथी की फिल्म आई बसंत बहार। इस फिल्म में ऐसा मौका आया जब फिल्म की सिचुएशन के मुताबिक शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्ती पंडित भीमसेन जोशी को हराने की जिम्मेदारी पार्श्व गायक मन्ना डे को सौंपी गई। मन्ना डे तनाव में आ गए और चुपचाप पूना चले गए। उनकी पत्नी ने उन्हें समझाया कि आपका जो फर्ज है वो आपको निभाना होगा, ये तो सिर्फ फिल्मी गाना है, आपको ये गाना रिकॉर्ड करना ही होगा। और तब जाकर ये गाना रिकॉर्ड हुआ जो कालजयी बन गया।

अब आते हैं हिंदी सिनेमा की एक अजीम शान फिल्म की ओर। ये फिल्म थी के आसिफ की मुगले आजम। इस फिल्म में एक खास सिचुएशन ऐसी है जिसके लिए के आसिफ को चाहिए थी पटियाला घराने के दिग्गज गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज। किसी तरह उन्हें मनाया गया। कहते हैं कि उन्होंने के आसिफ से एक बड़ी रकम की मांग की थी जिसे आसिफ साहब ने फौरन मान लिया था और इस तरह से मुगले आजम में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज में दो गाने रिकॉर्ड हुए। एक गाना था ये और दूसरा गाना था

सन 1960 में आई फिल्म कोहिनूर। इस फिल्म में एक गाने में सितार बजाया था उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब ने। कहते हैं कि इस गाने में अभिनय के लिए दिलीप कुमार ने महीनों उस्ताद जी से सितार की तालीम ली थी। इसी तरह से फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें के इस गाने में तबला बजाया था बनारस के बेमिसाल तबला वादक गुदई महाराज यानी पंडित सामता प्रसाद जी ने। वी शांताराम ने सन 1964 में बनाई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में संगीत था रामलाल जी का, जो खुद एक सिद्ध शहनाई वादक थे। इस फिल्म का शीर्षक गीत गाया था जयपुर घराने की दिग्गज गायिका विदुषी किशोरी अमोनकर जी ने।

जानी मानी गायिका विदुषी बेगम परवीन सुल्ताना ने भी कई फिल्मी गाने गाए हैं। उनका सबसे मशहूर गाना है फिल्म कुदरत का वो गीत, जिसे आर डी बर्मन ने स्वरबद्ध किया था। इस गाने के गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी। उन्होंने इसके अलावा भी कई फिल्मों में गाया है। विदुषी परवीन सुल्ताना ने फिल्म गदर में ये गीत गाया। इस गाने में उनके साथ थे पटियाला घराने के जाने माने गायक पंडित अजय चक्रवर्ती। सन 1985 में अमोल पालेकर ने फिल्म अनकही बनाई। इस फिल्म का संगीत जयदेव ने दिया था। पंडित भीमसेन जोशी ने इस फिल्म में दो गाने गाए।

सन 1985 में फिल्म आई सुरसंगम, जिसके जरिए शास्त्रीय संगीत की दुनिया के अनमोल पंछी उतरे फिल्म संगीत के मैदान पर। पंडित राजन और पंडित साजन मिश्र, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

जाने बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और जाने माने संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा ने ऐसे तो कई फिल्मी गानों में अपने अपने साजों का कमाल दिखाया है पर आगे चलकर उन्होंने जोड़ी बनाई शिव हरि की जोड़ी और कई फिल्मों में संगीत दिया ऐसी ही

जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे नीचा नगर, पाथेर पांचाली, अपराजितो वगैरह। पर उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा में क्या कमाल के गाने बनाए थे।

आपने देखा कि शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्तियों ने फिल्म संगीत का हाथ कभी-कभी पकड़ा है। जब शास्त्रीय संगीत की बड़ी हस्तियां फिल्मी गानों से जुड़ती हैं, तो फिल्म संगीत और ज्यादा निखर जाता है। ये था विश्व संगीत दिवस के मौके पर चित्र भारती का संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में। और अब मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। मुंबई में 15 जून से 21 जून तक आयोजित किया जा रहा है 19वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म समारोह का आयोजन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय करता है। ये एक ऐसा फिल्म समारोह है जिसमें डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्में दिखलाई जाती हैं। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डॉक्यूमेंट्री फिल्म समारोह है। आपको बता दें कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आरंभ सन 1990 में हुआ था। ये फिल्म समारोह हर दूसरे बरस आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र को गोल्डन कॉन्च पुरस्कार दिया जाता है और 10 लाख रुपए नगद मिलते हैं। इस समारोह में इस बरस कुल मिलाकर 55 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतियोगिता श्रेणी के सभी पुरस्कारों का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जूरी के द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता फिल्मों के अलावा AIFF जूरी रेट्रोस्पेक्टिव, बेस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स, MIFF प्रिज्म, कंट्री फोकस डॉक्यूमेंट्री और रीस्टोर्ड क्लासिक्स जैसे कई विशेष पैकेज इस फिल्म समारोह का हिस्सा हैं। इस फिल्म समारोह के दौरान पैनल चर्चा, एक खुला मंच, सेमिनार और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। ये फिल्म निर्माताओं और फिल्म प्रेमियों के लिए एक अनूठा मंच है जहां आकर वो अपने विविध दृष्टिकोण साझा कर सकते हैं और आगे बढ़ने के अवसरों का पता लगा सकते हैं। इस फिल्म समारोह में एक सेक्शन है प्रिज्म, जिसमें भारत और दुनिया भर की चोटी की शानदार डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाएंगी। इस फिल्म समारोह में वेव्स डॉक बाजार का भी आयोजन किया जा रहा है। ये एक ऐसा मंच है जो फिल्म निर्माण की यात्रा को पोषित करेगा और गति प्रदान करेगा। इसमें है एक व्यूइंग रूम जहां रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव को एक समूह के सामने अपनी डॉक्यूमेंट्री, लघु फिल्म या एनिमेशन फिल्म प्रदर्शित करनी होगी। इस तरह से ये जगह वितरण सौदे हासिल करने, सह निर्माताओं को आकर्षित करने और फिल्म महोत्सव स्क्रीनिंग के लिए पैसे जुटाने का एक लॉन्च पैड बनेगा। इसके अलावा एक इमर्सिव मार्केट भी है जो पहली बार शामिल किया जा रहा है। इसमें इमर्सिव कंटेंट क्रिएटर्स, प्रोड्यूसर्स और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के लिए एक मिलन स्थल होगा जहां आकर वो आपस में कोलैबोरेट कर पाएंगे। VR, AR, XR और इंटरएक्टिव अनुभवों पर केंद्रित ये मार्केट नई परियोजनाओं को प्रदर्शित करने और सहयोग को बढ़ावा देने का काम करेगा। इस बार के फिल्म समारोह में कई मास्टर क्लासेस भी आयोजित की जाएंगी, जैसे फास्ट फिल्म क्या माइक्रो ड्रामा सिनेमा का फास्ट फैशन है, या फिर विचार से रूपरेखा तक एक दृश्य की संरचना। ये थी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। और अब स्मृति शेष में आज हम नमन कर रहे हैं जानी मानी पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर को। 31 मई को सुमन कल्याणपुर हमारे बीच नहीं रही।

0: जानते हैं कि सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को भवानीपुर बंगाल में हुआ था। ये जगह अब बांग्लादेश में है। पांच बहनों में सबसे बड़ी सुमन की परवरिश मुंबई में हुई। ये वो जमाना था जब लड़कियों को बाहर खेलने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में उनकी दिलचस्पी गायन में हो गई।
1: 1953 में जब मैं आर्ट स्कूल में थी, मुझे किसी फिल्म के लिए गाने का मौका मिला, मगर केवल गाने ही रिकॉर्ड हो पाए, फिल्म नहीं बनी। उसके बाद एक मराठी फिल्म में गाना गाया, उसका नाम था शुक्राची चांदनी। लेकिन बात यह है कि उस फिल्म की चांदनी भी स्टूडियो के सेट पर भी उतरी नहीं, वो भी

नहीं बन पाया। फिर उसके बाद शेख मुख्तार की फिल्म बनी मंगू, जिसका संगीत मोहम्मद शफी साहब ने दिया है। इस फिल्म के लिए मेरा गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ये देख कर के लता दीदी स्वयं वहां आई हैं और बहुत देर तक मुझसे बात करती रही, बिल्कुल सगी बहन की तरह।

0: इसके बाद उन्हें कुछ और गाने मिले जैसे मियां बीवी राजी
1: छोड़ो छोड़ो मेरी बहिया सावरे छोड़ो छोड़ो मेरी बहिया
0: बात एक रात की

राजकुमार। सुमन कल्याणपुर के जीवन का सबसे बड़ा दुख ये रहा कि उनकी आवाज लता मंगेशकर से मिलती जुलती थी, तभी तो उनके गानों को लता मंगेशकर के गाने समझ लिया जाता था।

0: पहले सुमन कल्याणपुर विविध भारती के स्टूडियो में आई थी और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम पेश किया था।
1: कई वर्षों के बाद आज फिर से मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। आप हमें सुरक्षित जीवन प्रदान करते हैं, देश की आन बान के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने में पीछे नहीं हटते, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि हम आपके लिए कुछ नहीं सोचते। हम कलाकार अपनी कला से आपका मनोरंजन करते हैं, अपने गीतों से आपके हर क्षण में सहभागी बनते हैं। आप युद्ध में हो या शांति में, सुख में हो या दुख में, परिवार के साथ हो या अकेले, भीड़भाड़ वाले शहर में हो या सीमा के एकांत मोर्चे पर, हर जगह हर पल हम अपनी कला से अपने गीतों के जरिए आपके आसपास ही रहते हैं। आप सुन पाएं या ना सुन पाएं, मगर यकीन मानिए हम आपको ही आवाज देते रहते हैं।

मुझे बचपन से ही गाने का बड़ा शौक था। मेरे पिताजी और माताजी को भी संगीत का शौक था और इसीलिए हम सब बहन भाई संगीत में रुचि रखते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो उस जमाने में कुछ लोकप्रिय गीत गाया करती थी। उस जमाने के गायिकाओं में से नूरजहां जी और लता दीदी के गीत मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। जिन गीतों ने मुझे बहुत आकर्षित किया वो गीत एक से बढ़कर एक मधुर हैं और ऐसे कई गीत हैं जो मुझे बहुत ही पसंद हैं। जब भी कोई नया गीत हमें मिल जाता तो मैं और मेरी सहेली शारदा बल से हमारे छत पर बैठकर अक्सर वो गीत गाया करते थे। उनमें से कुछ गीतों की शुरुआत मैं आपको गाकर बताती हूँ। नूरजहां जी का ये गाना मुझे बहुत पसंद है।

0: मुझे याद है लता दीदी एक बार हमारे पड़ोस में आई थी। तब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मैं बार बार इधर से उधर उधर से इधर आ जा रही थी, बस लता दीदी को देखने के लिए, कुछ बोलने के लिए। मगर बोलना तो क्या, उनको देख भी ना पाई। खैर, धीरे धीरे समय बीत गया, मैं भी बड़ी हो गई।
1: एक समय ऐसा आया जब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच रॉयल्टी को लेकर मनमुटाव हो गया था। ऐसे में लता जी ने रफी साहब के साथ गाना बंद कर दिया था। इस पूरे दौर में सुमन कल्याणपुर ने मोहम्मद रफी के साथ कई युगल गीत गाए। फिल्म दिल ने फिर याद किया।

सुमन जी के गीतों में शामिल हैं कुछ भोजपुरी गाने भी। सुमन कल्याणपुर चली गई लेकिन उनकी आवाज हमेशा कायम रहेगी और हमारे मन की वादियों में यादों के फूल खिलाती रहेगी।

ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का इस महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती मुंबई में किया गया।

0: नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर विवेक करमहे का शास्त्रीय गायन।
1: नमस्कार, इन टुडेज नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी आर गोइंग टू ब्रॉडकास्ट अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय डॉक्टर विवेक करमहे।
0: सुरों के प्रति अगाध समर्पण और रागों की शुद्धता जब किसी साधक के कंठ से प्रस्फुटित होती है तो संगीत का एक नया अध्याय जन्म लेता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के आकाशदीप पर ऐसा ही एक दैदिप्यमान नाम है डॉक्टर विवेक करमहे। 15 से अधिक वर्षों के अनवरत रियाज और देश विदेश के प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियों से आपने शास्त्रीय संगीत जगत में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है।
1: When profound dedication of musical notes and the purity of ragas spring forth from the voice of a devotee practitioner, a new chapter in music is born. One such radiant name shining on the firmament of Indian classical music is Dr. Vivek Karmahe. With over 15 years of relentless practices and spellbinding performances on prestigious stages in India and abroad, he has left an indelible mark on the world of classical music.
0: स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता तथा संगीत में डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित डॉक्टर विवेक ने पद्मश्री पंडित उल्हास कशालकर, विदुषी गिरिजा देवी, श्री ओंकार दादरकर और श्रीमती कुमुदिनी मुंदकुर जैसे महान संगीत मनीषियों के सानिध्य में इस कला की सूक्ष्मताओं को आत्मसात किया है। आकाशवाणी के ए ग्रेड प्राप्त कलाकार डॉक्टर विवेक जब तानसेन समारोह और पंडित कृष्णराव शंकर पंडित समारोह जैसे ऐतिहासिक मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं तो श्रोता भाव विभोर हो उठते हैं। भूटान, नेपाल, श्रीलंका से लेकर दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात तक भारतीय संस्कृति का परचम लहराने वाले डॉक्टर विवेक आज के दौर में शास्त्रीय गायन की एक प्रखर और प्रेरक आवाज है।
1: A gold medalist at both the undergraduate and postgraduate levels and honored with a doctorate in music, Dr. Vivek assimilated a subtle nuances of this art under tutelage of great musical maestros such as Padma Shri Pandit Ulhas Kashalkar, Vidushi Girija Devi, Shri Onkar Dadarkar and Srimati Kumudini Mundukur. An A-grade artist of All India Radio, when Dr. Vivek showcases his art of historic stages like the Tansen Samaroh and Pandit Krishnarao Shankar Pandit Samaroh, the listeners are left utterly spellbound. Proudly flying the flag of Indian culture from Bhutan, Nepal and Sri Lanka to South Africa, Mauritius and United Arab Emirates. Dr. Vivek is a brilliant and inspiring voice of classical vocal music in today's era.
0: Dr. Vivek Karmahe apni gayan ki shuruaat raag shri se kar rahe hain. Vilambit rashna tilwada taal mein nibaddh hai jiske bol hain vaari jaun re tum pe. Drut rashna teen taal mein hai jiske bol hain chalo re mai ram siya darshan. आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं रविंद्र किल्लेदार और तबले पर निशांत शर्मा।
1: डॉक्टर विवेक करमहे इज कमेंसिंग हिज रिसाइटल विद राग श्री। द विलंबित कंपोजिशन इज सेट टू तिलवाड़ा ताल विद द लिरिक्स वारी जाऊं रे तुम पे। द द्रुत कंपोजिशन इज इन तीन ताल विद द लिरिक्स चलो रे माई राम सिया दर्शन। Accompanying him on the harmonium is Ravindra Killedar and on tabla is Nishant Sharma.

0: राग श्री में अभी आपने सुना डॉक्टर विवेक करमहे का गायन। डॉक्टर विवेक करमहे अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग बागेश्री। विलंबित रचना एक ताल में है जिसके बोल हैं कौन गत भई। द्रुत रचना भी एक ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं बेग बेग बेग बेग आओ।
1: You were just listening to Dr. Vivek Karmahe's rendition in Rag Shri. Dr. Vivek Karmahe is now going to present Rag Bageshri. The Vilambit composition is in Ektal with the lyrics Kaun Gat Bhai. The Drut composition is also set to Ektal with the lyrics Beg Beg Beg Beg Aao.

0: डॉक्टर विवेक करमहे का गायन राग बागेश्री। डॉक्टर विवेक करमहे अपने गायन का समापन राग सोहिनी से कर रहे हैं। मध्य लय तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है देख देख मन ललचाई, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है रंग न डारो श्याम जी।
1: That was Dr. Vivek Karmahe's vocal rendition in Raag Bageshri. Dr. Vivek Karmahe is concluding his recital with Raag Sohini. The Madhyalay composition set to Teen Taal has the lyrics Dekh Dekh Man Lal Chai. And the Drut composition set to Teen Taal has the lyrics Rang Na Daro Shyam Ji.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर बाद समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रूपये जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसान को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्वभर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मनवथ तालुका में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का एक हिस्सा गिरने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र

0: और सिक्किम में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले दो दिनों तक असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। रात्रि के 11:05 हो रहे हैं। संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल प्रातः 5:50 पर अपने कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।

का ओबरा केंद्र है। रात्रि के 11:05 हो रहे हैं। संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल प्रातः 5:50 पर अपने कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।